ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 मई 2026 सुबह के 5:53 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: 6:05 पर लेकर आएंगी कार्यक्रम सुप्रभात, 7 बजे हिंदी में समाचार, 7:05 से लेकर 9 बजे तक सुनिएगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। सुबह 9 बजे प्रस्तुत करेंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने। 10 बजे हिंदी में समाचार, 10:05 पर वेस्टर्न म्यूजिक का लुफ्त उठाते हुए सुनिएगा कार्यक्रम मैचलेस म्यूजिक आर। 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर बॉलीवुड की अपडेट्स देते हुए पेश करेंगे कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स। 12 बजे हिंदी में समाचार और 12:05 पर सुनना ना भूलिएगा वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम प्ले इट कूल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी, वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा

0: और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहले कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 एफएम पर और मैं हूं आपकी अपनी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल। ये है आपका अपना मॉर्निंग मोटिवेशनल शो और आज का मॉर्निंग मोटिवेशनल मंत्र है, जीतने के लिए जिद्दी होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में जिद ही वो चिंगारी बन जाती है जो हार को जीत में बदल देती है। तो अगर आप भी अपने सपनों के पीछे लगे हैं तो थोड़ा सा जिद्दी बनिए, क्योंकि वही आपको आपकी मंजिल तक लेकर के जाएंगे। यह है सुप्रभात मॉर्निंग मोटिवेशनल शो सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके अलावा आप हमें सुन रहे हैं देश और दुनिया में हमारी ऐप न्यूज़ ऑन एयर और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों

0: से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: आप सुन रहे हैं सुप्रभात। और दोस्तों, जिद्दी होने का मतलब गुस्सैल होना तो बिल्कुल भी नहीं है। जिद्दी होने का मतलब है मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए। जब आप अपने सपने के लिए अड़ जाते हैं ना, तो रास्ते खुद बनना शुरू हो जाते हैं। तो आज खुद से कहिए, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। आप सुन रहे हैं सुप्रभात और मैं हूं कोमल।

0: रहा है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: आप सुन रहे हैं सुप्रभात, और सुप्रभात में आज हम बात कर रहे हैं कि जीतने के लिए जो है वो जिद्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

आप सुन रहे हैं सुप्रभात। और दोस्तों, कभी कभी हम एक बार कोशिश करते हैं, फेल हो जाते हैं और बोल देते हैं, यार ये सब मेरे बस का नहीं। अरे यार, कभी कभी एक बार में तो चाय भी ठीक नहीं बनती है। तो ये तो जिंदगी है दोस्तों, थोड़ा सा ट्राई, थोड़ा सा रीट्राई और ढेर सारी जिद चाहिए। तो अगली बार जब भी कुछ मुश्किल लगे तो बस ये सोचना, अब तो करके दिखाना है। यह है सुप्रभात मॉर्निंग मोटिवेशनल शो और आपके साथ है आज कोमल। और दोस्तों, हम इस कार्यक्रम में हमेशा बातचीत करते हैं कि किस तरीके से आपके दिन को मोटिवेट करके एक खूबसूरत दिन बना दिया जाए, ताकि आप जिंदगी की हर जंग में जीत जाएं।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सुरों की शाम होगी यादगार, आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराध्य।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे। कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को

0: डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो
2: और प्रोग्राम चल रहा है सुप्रभात। तो दोस्तों, अगर आपका सपना बड़ा है तो जिद भी बड़ी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आधे मन से की गई कोशिश आधे रास्ते में ही रुक जाती है, लेकिन जिद्दी लोग सीधे मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो आज बस एक फैसला कीजिए कि मैं जिद्दी बनूंगा अपने सपनों के लिए। मैं हूं आपके साथ कोमल और आप सुन रहे हैं सुप्रभात, आपका अपना मॉर्निंग मोटिवेशनल शो आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और आइए अब सुनते हैं हमारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण।
1: कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुनते चले आ रहे हैं। शौनक जी सूत जी से विनती कर रहे हैं कि वो श्री सुखदेव गोस्वामी जी और

महाराज परीक्षित जी के बीच में जो बातचीत हुई उसका वर्णन करें, क्योंकि शौनक जी ने ये बात समझ ली कि भगवान की चर्चा, भगवान की कथाओं का पान करना, भगवान की कथाओं का श्रवण करना, बस यही जीवन का सार है। भगवान के नामों का गान करना, और उन्होंने इसीलिए कहा भी था कि उसी व्यक्ति की आयु सफल है इस जगत में जो भगवान की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं या गुणगान कर रहे हैं या फिर भगवान के नामों का संकीर्तन कर रहे हैं। बाकी सब की जो आयु है उसको तो सूर्यदेव छीन लेते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि क्या वृक्ष नहीं जीते, क्या लोहार की धौंकनी सांस नहीं लेती, गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते। जिनके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी वो नर पशु, कुकुर, ग्राम सूकर, ऊंट और गधे से भी गया बीता है। ये शौनक जी सूत जी को कह रहे हैं, क्योंकि उनकी उत्कंठा है कृष्ण कथा को सुनने की। तो वो कह रहे हैं 19वें श्लोक में, श्वविद वराहोष्ट्र खरहे संस्तुतः पुरुषः पशुः नायत कर्णपथोपि तो जातु नाम गदा ग्रजः। देखिए ये ना सुनने में तो बड़ा ही कर्कश लगता है, लगता है अरे ये कैसे कह दिया। हम अगर नहीं सुनना चाहें भगवान की कथा तो ये हमारी मर्जी, हमें शास्त्र ऐसे कैसे कह सकते हैं। लेकिन देखिए शास्त्र जो है ना माता के समान है, माता के समान। माँ माँ जिस प्रकार से बच्चे का कभी अहित नहीं होने देती, कल्याण ही चाहती है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े बच्चे के कल्याण के लिए, है ना। माँ बच्चे को प्यार भी करती है और माँ बच्चे को किसी गलत काम के लिए सजा भी देती है, डांटती भी है, फटकारती भी है। उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि वो अपना बड़प्पन सिद्ध करे, उसका उद्देश्य ये होता है कि बच्चा जीवन में कभी भी गलत राह पे ना चले, कभी भी उसे दुखों का सामना ना करना पड़े, वो सुखी रहे। ये हर माँ चाहती है अपने बच्चे से कि बच्चे तुम सुखी रहो। ऐसे ही हमारे शास्त्र हमारी माता हैं, और ये शास्त्र पिता के बारे में बताते हैं कि हमारे पिता कौन हैं। शास्त्र कहते हैं कि श्री कृष्ण ही तुम्हारे पिता हैं, है ना। इसीलिए 19वें श्लोक में इतनी बड़ी बात कह दी है, शास्त्र ने डांटा है हमें क्योंकि हम भगवान की कथाओं के प्रति बिल्कुल उदासीन हैं, हम भगवान की कथाओं को कुछ नहीं समझते। और तो और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भगवान की कथाओं को काल्पनिक कह देते हैं, माइथोलॉजिकल डिस्क्रिप्शंस ऐसे कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मिथ नहीं है, सत्य अगर है तो यही है, है ना। तो शास्त्र की नज़र से अगर हम दुनिया को देखेंगे तो देखेंगे कि शास्त्र बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। शास्त्र की नज़र से अगर हम अपने आप को देखेंगे तो देख पाएंगे। शास्त्र की नज़र से ही देखना होगा भगवान को, शास्त्र की नज़र से ही देखना होगा जीवन के उद्देश्य को। मनमाने ढंग से अगर हम कोई भी काम करेंगे तो उसका जो नतीजा है, परिणाम है, वो बहुत भयंकर है। तो इसलिए शास्त्र तो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि शास्त्र भगवान की सांसों से ही प्रकट हुए हैं, इसलिए शास्त्र वाणी ही सबसे बड़ी वाणी है। तो हमारे शास्त्र कह रहे हैं, और उसमें भी ऋषि कह रहे हैं कि देखिए जो कृष्ण भजन विहीन लोग हैं, जो भगवान का भजन नहीं करते, तो वो नराकार पशु हैं। नराकार पशु अर्थात जैसे पशु खाता है, पीता है, सोता है, भोग करता है, बच्चे पैदा करता है और फिर मर जाता है, ऐसे ही वो नराकार पशु आकार नर का है, लेकिन चूंकि वो भगवान की तरफ नहीं मुड़ते, वो अपने कल्याण के बारे में कुछ नहीं सोचते,

जब अपना ही कल्याण नहीं कर सकते तो अपने आश्रित लोगों का यानी बच्चों का कल्याण कैसे करेंगे? तो सामाजिक अव्यवस्था हो जाती है, क्योंकि हम सुनते चले आए हैं कि श्री कृष्ण कथा से ही चित्त की शुद्धि होती है, मन का मैल कट जाता है, एक जीव दूसरे जीव से प्रेम करने लगता है, ईर्ष्या द्वेष हट जाते हैं कृष्ण कथा से ही। और कोई चारा नहीं है, है ना, और कोई उपाय नहीं है, भगवान से जुड़ना होगा। इसीलिए शास्त्र बहुत कर्कश स्वर में हमें डांट रहे हैं, कटु स्वर में डांट रहे हैं कि अगर हमारे कानों में कृष्ण कथा नहीं पड़ी, कृष्ण कथा को सुनने में हमारी कोई रुचि नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, तो हमारी स्थिति कुकुर, ग्राम्य शूकर, ऊंट और गधे की तरह ही है, है ना। यानी हमारी स्तुति अगर कोई करेगा, हमारी प्रशंसा करेगा, तो कोई बहुत बड़ा भक्त हमारी प्रशंसा नहीं करेगा, शास्त्र हमारी प्रशंसा नहीं करेंगे, भगवान हमारी तरफ नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम भोगी हैं। तो जो ये चार जानवर हैं, कुकुर, शुकर, ऊष्ट और गर्दभ, ये चारों के चारों ये सोचते हैं कि अरे हमारे चारों का धर्म ये मनुष्य अकेला ही आचरण कर रहा है, हम अगर चाहें तो एक दूसरे का धर्म ग्रहण ही नहीं कर सकते हैं। यानी अगर कुकुर चाहे कि वो शूकर का धर्म ग्रहण कर ले, या शूकर चाहे कि वो कुकुर का धर्म ग्रहण कर ले, या ऊष्ट का यानी ऊंट जैसे कटीले झाड़ को खाता है, कांटे को खाता है, अगर शूकर चाहे मैं भी कांटा खा लूं तो खा नहीं सकता, कुकुर चाहे मैं भी खा लूं तो नहीं हो सकता, गर्दभ चाहे मैं भी खा लूं तो नहीं हो सकता। और गर्दभ जैसे यानी गधा जब गधी के पास जाता है तो लात खाता है, तो वो लात सिर्फ गधा ही खाता है, है ना। तो इस तरह से अगर ऊंट चाहे कि मुझे भी ऐसी लात पड़े तो वहां वो धर्म नहीं होता, शुकर के साथ नहीं होता, कुकुर के साथ नहीं होता। कुकुर में बहुत गुस्सा होता है, वो किसी को भी देखता है तो भौंकने लगता है, किसी को भी, वो दूसरे कुत्ते को तो देख भी नहीं सकता, वो भौंकता है कि अरे मेरे इलाके में कैसे घुसा है, बहुत क्रोधी होता है। लेकिन शुकर अगर चाहे मैं इतना क्रोधी हो जाऊं तो नहीं हो सकता, ऊष्ट यानी ऊंट अगर चाहे कि मैं हो जाऊं तो वो भी नहीं हो सकता, गधा चाहे मैं हो जाऊं तो वो भी नहीं हो सकता। यानी क्रोध का जो धर्म है वो कुकुर का है, और जो बहुत ही भयानक चीजों को खाने की बात है वो शूकर है, शूकर खाता है, ऊंट जो है कटीले चीजें खाता है, कांटों से भरी चीजें, और गर्दभ जो है भार वहन करता रहता है, ढेर भार उसके पीठ पर लाद दिया जाता है और वो चलता रहता है बेचारा। तो मनुष्य जो है, जो भगवत भजन विहीन है, उनकी हालत कैसी है? वो क्रोधी होते हैं, उनके स्वार्थ में अगर कहीं कोई बाधा डाल दे तो वो क्या नहीं कर गुजरते, वो रिश्ता नहीं देखते, वो कुछ नहीं देखते, वो बस अपना स्वार्थ देखते हैं, है ना, क्रोधी होते हैं और कुछ भी खा रहे होते हैं, किसी के भी हाथ का खाते हैं, कुछ भी, पेट भरने के लिए कुछ भी। क्या नहीं खा रहा है आज का इंसान? वो लोग जो प्रसाद भोजी नहीं है, जो भगवान को भोग लगा के नहीं पाते हैं कुछ भी, तो वो कुछ भी तो पा रहे होते हैं बाहर जा करके, जो भी मिल जाए। इसी तरह ऊंट, इसी तरह ऊंट की क्या अवस्था होती है? वो भी बहुत बोझ उठाता है, लेकिन वो कांटे की चीजें खाता है, कटीली चीजें खाता है। तो यहाँ बताया कि देखिए, ये जो मनुष्य है ना, इसने हम चारों के धर्म का आचरण अकेले ही कर लिया, हम चाहें भी तो एक दूसरे का धर्म ग्रहण नहीं कर सकते, हम तो पशु हैं, और पशु होकर भी हम दूसरे पशु का कोई धर्म ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। पर ये व्यक्ति तो शास्त्र में जो धर्म बताया गया है, शास्त्र में धर्म क्या बताया गया है मनुष्य के लिए, मनुष्य का धर्म है भगवान से प्रेम करना, और दूसरा कोई धर्म नहीं है। रिलीजन को हम धर्म नहीं कहते, धर्म है जो हमारा स्वरूप का धर्म है, जैसे चीनी का धर्म है मिठास,

जल का धर्म है तरलता, ऐसे ही मनुष्य का धर्म है भगवान का दास्य। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, वो भगवान का नित्य दास है। जब तक वो उस स्तर तक नहीं उठ जाएगा, वो कभी भी सुख शांति नहीं प्राप्त कर सकता, हमेशा किसी ना किसी कामना से, रोग से ग्रस्त रहेगा। कामना ही अपने आप में बहुत बड़ा रोग है, क्योंकि यही संसार रूपी बंधन भवसागर में डाल देती है कामनाएं। तो ये जो पशु हैं सोचते हैं कि अरे भाई, शास्त्रों में बताया गया है मनुष्य के लिए धर्म, लेकिन देखो अपने धर्म का तो उल्लंघन कर देता है ये मनुष्य, भगवान की तरफ नहीं मुड़ रहा, भगवान की कथा नहीं सुन रहा, और बड़ी आसक्ति के साथ हमारे धर्म को इसने ग्रहण किया हुआ है। अरे हम तो पशु हैं, अपने कर्म के कारण हम इस शरीर में गिर गए, तो हमें इस शरीर से संबंधित धर्म निभाना पड़ रहा है। और इसी तरह से ये व्यक्ति, ये तो नराकार पशु है। अरे इसे पता है कि अगर ये हमारे धर्म को निभाएगा तो इसे नरक जाना पड़ेगा, तो भी हमारा धर्म कितनी आसक्ति के साथ आचरण कर रहा है, और हम तो बहुत मूर्ख हैं, तो हमें तो यही धर्म पालन करना पड़ रहा है। तो ये जो कुकुर है ये क्रोधी होता है, बिना मतलब क्रोध करता है। जो सूकर है वो विष्ठा खाता है, मल खाता है, और जो ऊंट है वो बहुत भार उठाता है अपने पीठ पर, और गधा जो है वो गधे की लात खाता है। तो ये जो नराकार पशु है, इसके अंदर सब कुछ है, ये सब कुछ खाता है, ये क्रोधी है, ये जीवन भर भागता रहता है, विभिन्न प्रकार की जिम्मेवारियों को निभाता रहता है, इतना भार वहन करता है अपने कंधों पर, और संसार की लात खाता है, संबंधियों की लात खाता है। तो ये जो चारों चीज़ें हैं ये सब समाप्त हो जाए, अगर वो भगवान का भजन करे, भगवान की कथाओं का श्रवण करे। इसलिए बोला कि देखो, जो भगवान की कथाओं को अपने कानों के रास्ते से अपने हृदय में ले जाता है, उसके हृदय में भगवान आविर्भूत हो जाते हैं, और तब उस व्यक्ति के समस्त रोग, यानी ये जो क्रोध है, ये जो उल्टा सीधा खाना है, ये जो भागते रहना है, ये जो संसार की लात खाना है, ये सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। और भी बहुत सारे रोग हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये छह रोग तो हमारे अंदर जब हम पैदा हुए तभी से हैं, तो ये नष्ट नहीं होते अपने बल से। अगर कोई कहे कि वो भजन तो नहीं करता वो, पर बहुत अच्छा है, तो शास्त्र कहते हैं कि अगर किसी के अंदर बहुत अच्छाइयाँ हों भी पर वो भजन नहीं करता, तो उन अच्छाइयों से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना उस व्यक्ति को ना किसी अन्य व्यक्ति को, क्योंकि वो भी माया में फंसा हुआ है, माया में ही घिरा हुआ है, और जो उसके संसर्ग में आएगा वो भी माइक बातें सुनेगा। आगे के कुछ एक श्लोकों में यही कह रहे हैं शौनक जी। देखिए बहुत समझदार हैं शौनक जी, और हमारे लिए ही ये सब बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं 20वें श्लोक में, बिले बरो त्रु क्रम विक्रमान ये नाशणवतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत न चोप गायत्युरुगाय गाथा। शौनक जी कह रहे हैं कि हे सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान है। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वो मेंढक की जीभ के समान टर टर करने वाली है, उसका तो ना रहना ही अच्छा है। और जो सिर कभी भगवान के चरणों में झुकता नहीं, वो रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझा मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के ही हाथ हैं। 21वां श्लोक, भारा परम पट किरीट जुष्ट मप्युत्त मांग न नमेन मुकुंदम शावव करो न कुरुता सपर्याम हरेर लसत कांचन कंकणौ वा।

0: सूत जी से इस पर चर्चा करेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।
1: आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9350530528, 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278889। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com।
0: कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा और हम चर्चा कर रहे हैं कि जो मनुष्य भगवान की कथा कभी नहीं सुनता उसके कान बिल के समान हैं और जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती वो मेंढक की जीभ के समान टर टर करने वाली है, उसका तो ना रहना ही अच्छा है। देखिए शास्त्र जो है ना उनकी कठोर वाणी को यही सोचना चाहिए कि ये तो हमारा हितोपदेश कर रही है, यानी ये हमारे कल्याण के लिए कह रही है। और मनुष्य जीवन दुर्लभ है, ये बात तो सुखदेव गोस्वामी जी बता ही चुके हैं। दुर्लभम मानुषम जन्म, अतिशय दुर्लभ है। देवता लोग भी मनुष्य जन्म की इच्छा करते हैं लेकिन पाते नहीं है, वो भी भारतवर्ष में, ये तो और भी मुश्किल है। तो भगवान की कृपा से ही हमें यह मनुष्य जन्म मिला, भगवान की कथाओं को सुनने के लिए, उनके नामों का संकीर्तन करने के लिए, उन्हें पाने के लिए, उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए, भक्त संग करने के लिए। बस यही एक उद्देश्य है मनुष्य जन्म का, बाकी कोई उद्देश्य नहीं है कि रोज पेट भरें, आज इतना अच्छा खाएं, आज बाहर जाकर खाएं, आज वो मूवी देख लें, आज ये देख लें, आज वो देख लें। ऐसे तो पूरा समय ही निकल जाता है, पूरा समय, पूरा दिन निकल जाता है और वो दिन हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, वो दिन फिर से नहीं आने वाला हमारे जीवन में। तो ये कितना कितना कह लीजिए बहुत ही डरावना सच है। तो अगर भगवान की कथा कोई नहीं सुनता तो शास्त्र कहते हैं भाई उसके कान बिल के समान है, यानी कि असत वार्ता सुनता है, यहां वहां की बात सुनता है। भगवान की कथा नहीं सुनता तो क्या ये है कि उसने कानों में उंगली दे दिया? नहीं, उसने अपने कान बंद नहीं किए, वो और कुछ सुन लेता है, सब कुछ सुनता है, इधर उधर की बातें सुनता है। जैसे कि एक बिल में एक सांप रहता है, विषैला सांप, ऐसे ही इस कान में विषैली बातें जाती हैं जो हमारे भव बंधन को और मजबूत कर देती हैं। और जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, भगवान के नामों का गायन नहीं करती, वो मेंढक की जीभ के समान टर टर करने वाली है, उसका तो ना रहना ही अच्छा है, ऐसा कह रहे हैं शौनक जी। क्यों कह रहे हैं ऐसा? सुनने में तो बड़ा ही क्रूर लगता है, अच्छा नहीं लगता अगर कोई व्यक्ति सुने कि ये क्या बात है। अगर हम भगवान की कथा नहीं सुन रहे हैं तो हमारे कानों को सांप का बिल बोल दिया और हमारी जुबान को मेंढक की जुबान बोल दी, आखिर क्यों? तो इसका उत्तर यही है कि देखिए हमारे कानों में अगर कृष्ण कथा नहीं जा रही तो यहाँ वहाँ की बकवास जा रही है, यानी असत बातें जा रही है, असत वार्ता रूपी सर्प का आवास स्थल हमारे कान बन गए हैं। और जब हम भगवान के नामों का कीर्तन नहीं करते, उनकी गाथा का गान नहीं करते तो वो मेंढक की जीभ के समान हमारी जीभ बन गई है। क्यों? क्योंकि निरर्थक मिथ्यावाणी अब ये जीभ बोलती है, ये असती स्त्री की तरह हो गई है हमारी जीभ, कि हमारे सारे पुण्य सब नष्ट कर देती है ये जीभ। कृष्ण नाम का कीर्तन नहीं करती, निरर्थक शब्दों का उच्चारण करती है और हमने जो भी कभी किसी जन्म में पुण्य कमाया होगा वो धीरे धीरे पुण्य राशि समाप्त हो जाती है, बह जाती है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो इसलिए सारे अंग हमारे बेकार हो जाते हैं क्योंकि हम भगवान की तरफ नहीं मुड़ते, उन अंगों को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। जैसे कि 21वें श्लोक में भी कहा, यदि कोई रेशम के वस्त्र की यानी रेशमी पगड़ी पहने या मुकुट के द्वारा भी अपने सिर को शोभित करे तो भी यदि वो सिर भगवान के चरणों में नहीं झुकता।

तब वो केवल संसार सिंधु के अतल जल में उस व्यक्ति को और डुबो देगा, यानी वो बड़े ही जल्दी बड़े ही शीघ्र उस व्यक्ति को संसार सिंधु के अतल जल में डुबोने के लिए भार मात्र है। जैसे कि अगर कोई अपने गले में ढेर भार बांध ले, सिर पे भार ले ले और वो डूबना चाहे तो तुरंत डूब जाएगा क्योंकि ढेर भार उसने बांध लिया है। ऐसे ही जो मस्तक रेशमी पगड़ियों से तो सजा है या मुकुटों के द्वारा सजा है, परंतु भगवान के चरणों में वो झुकता नहीं है तो वो सिर्फ भार मात्र ही है। ऐसे ही हमारे जो हाथ हैं उनमें हमने सोने के कंगन पहन लिए हैं, हीरे के कंगन पहन लिए हैं और बड़े चमक रहे हैं वो कंगन, लेकिन अगर वो हाथ भगवान की सेवा कार्य में नियुक्त नहीं होते तो उन दोनों हाथों को शास्त्र कह रहे हैं कि वो एक शव के हाथ जैसे हैं, मृतक के हाथ जैसे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो व्यक्ति अपने पितरों को या देवताओं को अपने उन हाथों से जल या पिंड भी प्रदान करेगा तो उसे अशुद्ध मान करके वो उसे ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि उन हाथों ने कभी भगवान की सेवा ही नहीं की। तो देखिए, ये जो बात है सुनने में बड़ी ही कठोर लगती है, लेकिन है बड़ी काम की बात। ये तो वही जानता है जो भगवान का भजन करता है, और वो जानता है कि पहले जब मैं भजन नहीं करता था तो मेरी क्या अवस्था थी, अब जब मैं भजन करता हूँ, कृष्ण कथा सुनता हूँ, तो अब मेरी क्या अवस्था है। हृदय के समस्त विषय रूपी कंटक कांटे दूर हो गए हैं, है ना। बार बार वो भगवान के आगे आभार व्यक्त करता है, प्रभु आप मेरे जीवन में आए, आपने मुझे अपनाया, मैं आपके चरणों को प्राप्त कर पाया, आपने मेरे पर कितनी कृपा की है। बार बार कहता है, हरि हे हैनो दुष्ट कर्म नाई, जहां आमी कोरी नाई, सहस्र सहस्र बार हरि। हे प्रभु, ऐसा कोई दुष्ट काम नहीं है जो मैंने किया नहीं, हजारों बार मैंने अनेक दुष्ट कार्य किए हैं। सही सब कर्म फल, पेय अवसर बल, अमाए पिशी छे यंत्रों परी। जैसे गन्ने को पीसा जाता है ना यंत्र के अंदर, मशीन के अंदर, ऐसे ही मेरे समस्त कर्म फल अवसर पाकर के मुझे बारंबार कष्ट देते हैं, जैसे कि गन्ने को पीसा जाता है ऐसे मुझे पीस रहे हैं। गति ना ही देखी यार, कांदी हरि अनिवार, तुम्हार अग्रेते एबे आमी। लेकिन चूंकि भगवान के भक्तों का संग हो गया तो पता चला, ये पता चल गया कि आपके अलावा मेरी और कोई गति नहीं है, आप ही मेरी एकमात्र गति हैं, आप ही के चरण मेरे एकमात्र उपाय हैं, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है, आपके चरण ही मैं सार कर चुका हूं, इसलिए मैं बार बार रोता हूं, बार बार अब मैं आपके चरणों में पड़ा हुआ हूं, आपके आगे आ गया हूं। जा तुमार होय मने, दंड देव अकिंचने, तुम्ही मोर दंड धर स्वामी। हे प्रभु, अब मैंने अपने आप को आपके चरणों में पूरी तरह समर्पित कर दिया है, अब मैंने जो भी पाप किए, मैंने आपका कभी भजन नहीं किया था और कितनों को सताया था, तो प्रभु आपका जो मन हो वैसा दंड मुझे दे दीजिए, मैं आपके प्रदत्त दंड को सहने के लिए तैयार हूं। प्रभु, दंड देकर आप संतुष्ट हो तो संतुष्ट हो जाइए, क्योंकि आप ही मेरे दंड धर स्वामी हैं, क्योंकि मैंने आप ही को अंगीकार किया है, आप ही के चरणों की शरण ली है, आप मुझे जो दंड देंगे मैं खुशी खुशी सहूंगा। क्लेश भोग भाग्य जतो, भोग मोर हो ततो, किंतु एक मम निवेदन। प्रभु, मेरे भाग्य में जितने दुख हों, क्लेश हों, सब मैं भोगने को तैयार हूं। मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि मैंने तो आपके चरणों की शरण ली, अब आप मुझे सुख दीजिए, भूल जाइए मैंने क्या किया, भूल जाइए मेरे पापों को, माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहूंगा। आप दंड दीजिए मुझे, मैंने पाप किया आप दंड दीजिए, पर मैं आप ही का हूं, और जितने दुख मुझे भोग कराने हैं लोगों के द्वारा, मान अपमान

जो कराना है कराइए, ना मान ना अपमान किसी में मैं ना रहूं, जो कराना है कराइए, सारे क्लेश सारे दुख मैं भोग करूं, लेकिन एक मेरा निवेदन आपको सुनना ही पड़ेगा प्रभु। जे जे दशा भोगी आमी अमा के न छाड़ो स्वामी, भक्ति विनोदे रो प्राण धन। बस यही निवेदन है प्रभु कि मैं चाहे जिस दशा में ही क्यों ना रहूं, आप मुझे कभी छोड़ना मत, कभी इतने उद्विग्न ना हो जाना, आप इतने दुखी मत हो जाना मुझसे कि मुझे ही छोड़ दें। आप मेरा हाथ पकड़े रहना, चाहे मुझे कितने ही क्लेश क्यों ना भोग करने हो, मैं सब सह लूंगा खुशी खुशी। हृदय में ये तसल्ली रहेगी, ये सांत्वना रहेगी कि आप तो मेरे साथ हैं, आप मुझे मत छोड़ना, क्योंकि आप मेरे प्राण धन हैं। प्राण धन के बिना भला कोई जीवित रह सकता है? नहीं ना। तो बस इसी तरह से भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करके जीवन बिताना चाहिए, और भगवान से भगवान की खुशी को ही मांगना चाहिए, अपनी खुशी को नहीं। यही शौनक जी कहीं ना कहीं हमें शिक्षा दे रहे हैं, और इसी पर चर्चा जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण, और इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए प्रेम धारा को, कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा अपनाने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। दोनों नेताओं ने उग्रवाद, कट्टरता, आतंकवाद का वित्त पोषण और धन शोधन का

0: मुकाबला करने के लिए अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आतंकी गतिविधियों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग रोकने तथा आतंकियों की भर्ती से निपटने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री गैबार्ड ने कहा कि वे 30 जून से अपने पद से हट जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सुश्री गैबार्ड की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रशासन को उनकी कमी महसूस होगी। सुश्री गैबार्ड के बाद राष्ट्रीय खुफिया प्रधान उपनिदेशक आरुण लुकास कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। मंत्रालय ने कहा कि जिम्मेदारी के साथ उपयोग और जनता का सहयोग ईंधन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगा। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में राज्यपाल संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सके। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: एक गाना था हाई मिर्ची, हाय हाय मिर्ची। अब ये मिर्ची जो है ना, ये कभी कभी गर्मी में के अंदर क्या होता है, कभी कभी जब आप गर्मियों के अंदर जब आप कुछ काम करते हैं, आप ऐसे इधर उधर कहीं निकल कर जाते हैं तो प्रोग्राम में तो आपको लगता है ना, फिर उसके बाद वो इधर ऐसे ऐसे ऐसे होता रहता है। तो ये हाई गर्मी और हाई गर्मी, ये उसको आप ऐसे लगा सकते हैं। आकाशवाणी रेनबो पर गर्मी के ज़बरदस्त दिनों के अंदर मई के महीने का आखिरी से पहले वाला, यानी कि इसको सेकंड लास्ट कह सकते हैं, शनिवार आ चुका है। शनिवार पर ये प्रोग्राम आकाशवाणी रेनबो पर लेकर हाजिर आपका दोस्त मनीष आजाद रेडियो वाला। तो दूसरे से पहले तो हो जाओ आप भी तैयार, यानी कि आपके साथ साथ हम भी तैयार गर्मी में इस ठंडी का एहसास देने के लिए। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का सफर, इसको लेकर हाजिर आपका दोस्त मनीष आजाद रेडियो वाला। तो बस शुरुआत करते हैं हमारे साथ, तो हो जाओ तैयार, भगाते हैं इस गर्मी को, ठंड ठंडक को बुलाते हैं हम अपने गीतों के माध्यम से। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वड़कम, सत श्री अकाल, केम छो, सब कुछ अपने हिसाब से। तो टांटिंग टिंग डांस

Santi. मैं अगर सात क्या, अगर मैं दस जन्म भी ले लूंगा ना, तब तक वो जो दीदी लास्ट में बोल कर गई है मन मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। कमाल है, मैं मतलब क्या कब सीखूंगा मैं। फिलहाल आइए आइए जी, आइए 23 मई का इतिहास लेके जाइए जी। अब क्या रहेगा कुछ खास आज के दिन, वो आपको कैसे हम बताएंगे कि कौन सी वो एयरलाइन थी जो आज ही के दिन बनी थी, कहाँ पर आज जो कहते हैं ना पशु चिकित्सक, जो चिकित्सक का उनका जो ऑफिस वाला था वो कहाँ पर बना था, को कैसे पता चलेगा, कौन सी वो पहली महिला थी जो चोटी पर, एवरेस्ट वाली चोटी पर वो वहाँ पर चढ़ी थी। आकाशवाणी का जो हमारा ये 90 साल पूरे होने वाले, इसकी हम एक श्रृंखला इस समय हम चला रहे हैं, कौन सा एपिसोड होगा, उसमें आज क्या होगी, क्या बात होगी, क्या बात जानने को मिलेगी, क्या कुछ शुरुआत है, ये तो आपको सुनने के बाद पता चलेगा। सेहत की बात का ध्यान रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ

सबसे बड़ा आजकल चिंता का विषय है, डिजिटल फ्रॉड जैसा कुछ भी नहीं होता। इसके बारे में भी आपको बताएंगे और महान लोगों के बारे में भी बताएंगे जो व्यक्ति इस धरती पर आए, बहुत जबरदस्त काम करके गए लोगों के लिए, समाज के लिए, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो बस आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आकाशवाणी रेनबो आपके लिए लगातार 24 घंटे लेकर आता आपके लिए अच्छी अच्छी खबरें, अच्छे अच्छे आरजेस के साथ में। तो सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का सफर, आपका दोस्त आपके साथ मनीष आजाद, रेडियो वाला हिट तो मतलब हिट, असी तो सुपर हिट और तुसी तो उससे भी ऊपर ऊपर सुपर हिट। जब तक ये टोटो टोटो करता तब तक मैं आपको बता दूं कि आपके मैसेजेस भी आने शुरू हो चुके हैं, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सुनते रहिए, पड़ोसियों को भी बता दीजिए कि प्रोग्राम शुरू हो लिया है।

नमस्कार श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी एट 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। तो श्रोताओ, आज बात होगी 3 अक्टूबर 1957 को आकाशवाणी ने मुंबई से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती सेवा की शुरुआत की। भारतीय श्रोताओं का मनोरंजन और सुगम संगीत का एक स्वदेशी मंच प्रदान करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया था। उद्घाटन के दिन विविध भारती पर प्रसारित होने वाला पहला गीत मन्ना डे द्वारा गाया गया नाच रे मयूरा था। फिल्म संगीत के साथ साथ हवा महल, संगीत सरिता, भूले बिसरे गीत, जयमाला और छाया गीत जैसे अत्यंत लोकप्रिय कार्यक्रम प्रसारित होते थे। लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन और सुनील दत्त जैसी सिनेमा जगत की महान हस्तियों ने भी अपनी आवाज और उपस्थिति से इस सेवा की गरिमा को बढ़ाया। विविध भारती ने हिंदी फिल्म संगीत के माध्यम से पूरे देश को भाषाई और सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरोया। तो श्रोताओ, रेडियो की इस यात्रा को और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे यानी निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: घर के काम के साथ साथ अगर आप ध्यान लगा के थोड़ा सा सुनते भी रहेंगे तो बड़े काम काम की बातें आपको सुनाई देंगी। हालांकि हाथ में आपके अगर समय चाय का प्याला है, वैसे तो कहीं कहीं किसी के हाथ में झाड़ू भी हो सकती है। अरे भाई लगाने के लिए, मतलब आप थोड़ा सा कैसे इसको इधर उधर लेके चले जाते हो, बाकी आप समझदार है। लेकिन हाँ भाई, वीकेंड का है तो शनिवार है, ज़्यादातर आप सोने की सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा आराम कर ले, आराम कर ले। चलो आराम कर लेंगे तो ये काम की बात जो है ना ये निकल जाएगी, क्योंकि आज 23 मई का इतिहास क्या कहता है ये हम आपको बताएंगे कि 23 मई के दिन आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ था इतिहास के पन्नों पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 23 जो मई का दिन है, आज की तारीख में आप में से कितने सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा रोल निभाते होंगे, तो शायद आज उनका हैप्पी वाला बर्थडे हो सकता है, शायद आज उनकी कोई मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, नई गाड़ी गिफ्ट में किसी को मिली हो, किसी को गिफ्ट के अंदर मम्मी ने उड़ते उड़ते चप्पल या जूता या झाड़ू फेंक कर भी दी हो, ये भी आपको याद रखने वाले कुछ होता है। कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स आते हैं, कुछ आज कुछ लोगों के एग्ज़ाम्स होंगे, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं साहब। तो इसलिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि आज का इतिहास क्या कहता है। तो हम आपको लेके चलते हैं आज के इतिहास की तरफ। 1889 की हम बात कर लेते हैं साहब, जब आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी ने 1889 में पहली बार अमेरिका में पशु चिकित्सा स्कूल जो था वो स्थापित किया था। एयरलाइन की बात हम कर रहे थे कि तो हम आपको बताते हैं कि बेल्जियम ने 23 मई 1923 को सेवना एयरलाइंस बनाया था। आगे चलो हम बात करते हैं 1949 की, जब पश्चिम जर्मनी जो संविधान को अंगीकार करने के बाद 1949 23 मई में औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया था। यानी कि 1977 के अंदर क्या हुआ था कि बेनिन ने संविधान को अंगीकार किया 23 मई। 1984 की वो ऐतिहासिक 23 मई की तारीख जब बछेंद्री पाल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 23 मई 1994 हम आपको लेके चलते हैं 23 मई 1994 में जब रोमन हर्जोग जर्मनी के राष्ट्रपति चुने गए। आगे आइए हम आपको लेके चलते हैं आगे 2010 की हम बात कर रहे हैं 2010 की हम बात कर रहे हैं 23 मई की, जब कांस फिल्म समारोह में अभिजात पोंग विरासेतकुल निर्देशित थाईलैंड की फिल्म अंकल बॉनमी हु केन रिकॉल हिज पॉस्ट लाइव्स को सबसे बड़े पुरस्कार पामडा ऑर से 2010 में सम्मानित किया गया। हम बात करते हैं 2016 की, जब 2016 के अंदर क्या हुआ, 2016 के अंदर भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान यानी कि इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से पूरी तरह भारत में बने स्पेस शटल RLV-TD को 2016 में लॉन्च किया था 23 मई को। इतिहास के पन्नों से इतना ही कुछ निकला है साहब, इतिहास के पन्नों की बारी और भी अगर आपको लगातार देते रहेंगे तो आप हमारे साथ बने रहिए आकाशवाणी रेनबो पर, सुनते रहिए गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का सफर रेडियो पर। जो इस तरफ से आवाज आ रही है वो मेरी है, यानी कि आपके साथ मनीष आजाद रेडियो वाला, रेडियो के उस तरफ जो बैठे आप, आपके सबसे अच्छे साथी, सुनने का और दूसरे दोस्तों को भी बताने का। क्या कभी कोई ऐसा करता है, मैसेज करके बताना जरा कि अगर आपने किसी को ये बताया कि हाँ जी प्रोग्राम शुरू हो चुका है, मनीष भाई आ चुके हैं रेडियो पर,
1: भाई हमें भी तो पता चले। क्यों भाई, हमें कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा आप ऐसी आदत से कैसे काम करते हैं।
0: शंकर महादेवन और के साथ में आप देखेंगे जो उनका संगीत, कैसा वाला संगीत है, टों टों टों। और साथ में कौन है, शंकर एहसान लॉय का संगीत और अलिसा मेंडोसा। कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, उफ तेरी अदा। रंग

अगर आप पहले जमाने की कुछ फिल्में देखेंगे तो पहले जमाने के अंदर आपको राजा महाराजा दिखाए जाते थे। राजा महाराजा जो होते थे सच में उनका मतलब वो जो एक रहन सहन का तरीका होगा तो सोचिए कि अपने आप में कितना वो कमाल का होगा। अगर आपको कोई महारानी कहकर पुकारे, है ना, कभी कभी आप घर में कहीं कहीं महारानी क्या है, महाराज हो क्या कहीं के, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो सच में ऐसा ही, अगर कोई सच में अगर कोई महारानी हो तो कैसा रहेगा। आज हम जिनकी बात कर रहे हैं, आज उनकी जयंती है और 23 मई आज ही के दिन 1919 यानी कि 1919 को इस धरती पर आए, आज ही के दिन वो जन्मी, महारानी गायत्री देवी जी की हम बात कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो इन्होंने पहली बार 12 साल की उम्र के अंदर उस समय बगेरे का शिकार उन्होंने उस समय किया था। गायत्री देवी जी जयपुर की महारानी बनी रही 1939 से लेकर 1970 तक। आप कितना लंबा समय अगर आप देखेंगे तो उन्होंने एक वो महारानी वाला जो एक ओहदा है उन्होंने उस पर वो काम किया। कहते हैं कि गायत्री देवी जी दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में से वो एक थी। और उस जमाने की हम बात कर रहे हैं जब कहते थे कि महिला को आगे नहीं आना चाहिए, लेकिन उस समय कहते कि इन्होंने अपने आप को ना तो रोका, घुड़सवारी का इनको बहुत ज़्यादा शौक रहा इनको, और लड़कों जैसे कपड़े पहनने का, लंबे लंबे बूट पहनने का इनको शुरू से ही इनको शौक रहा। उस समय कहते हैं कि जो महिला के ऊपर उस दौरान में अत्याचार अगर होते थे तो वो उनको बड़ा ही गुस्सा आता था उसके ऊपर। तो इसी चक्कर में बालिकाओं की शिक्षा के लिए 1943 के अंदर जयपुर में पहला पब्लिक स्कूल महारानी गायत्री देवी बनाया गया और इनका मत था कि भाई सभी महिलाओं को पढ़ना चाहिए और उन्हें भी आगे आना चाहिए। हालांकि कहते हैं कि उनको रसोई से भी बहुत ही प्रेम था कि वो कहते थे कि जब भी कुछ अच्छा बनाने के होते थे जयपुर के राजमहल की रसोई से उन्हें इसलिए काफ़ी लगाव था क्योंकि वहाँ पर रसोई के अंदर जो कहते हैं वो असली स्वाद आता था। वो कहते हैं कि जब हम बनाते हैं तो स्वाद आपके अपनेपन के कारण होता था। दक्षिण भारत का जो स्वाद था वो उनको उनके खाने के अंदर बहुत कुछ अच्छे से उनको मिला। तो आज इनकी जयंती है, आकाशवाणी की पूरी टीम की तरफ से उनको शत शत हम नमन करते हैं।

0: Just to...
1: आप भी बिल्कुल चिल रह सकते हैं अगर आपके बच्चे ज्यादा मोबाइल ना यूज करें, लेकिन वो चिल रहने कहां देते हैं क्योंकि उनके हाथ में तो 24 घंटे मोबाइल मोबाइल रहता है। आज हम भारत की अगर हम बात करते हैं, जहां पर 140 करोड़ लोगों की जनता रहती है, थोड़ा सा बढ़ गया होगा आंकड़ा, लेकिन हम इतना भाई अगर हम इसमें आधा भी कर दें अगर, तो यानी कि अगर 65 भी करते हैं, 70 भी करते हैं, जितना मान लो चलो आप अपने हिसाब से, इतना हम आंकड़ा कर लेते हैं। हम तो परिवार की बात करते हैं, परिवार के अंदर 4-5-6 लोग होते हैं भाई। सब लोगों को ये कहना हर घर के अंदर कि भाई मनीष भाई जो बच्चे हैं ना, ये मोबाइल का पीछा छोड़ते ही नहीं हैं, मोबाइल का पीछा छोड़ते ही नहीं हैं। तो बच्चों, अगर आप तक हमारी आवाज़ इस समय जा रही है, परिवार वालों, अगर आपको भी अगर ये हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो हम आपको बता दें कि सोशल जो मीडिया की जो लत है ना, इस लत से बच्चे क्या हो रहे हैं, वो नशे की तरफ वो बढ़ रहे हैं। शोधकर्ताओं ने जुए की आदत लगने की आशंका भी जताई है। एडिनबर्ग एजेंसी जो है, वहाँ से उन्होंने एक शोध किया है। शोध करने के बाद वो देखा है कि जिस तरह से बच्चे लगातार ये सोशल जो जितने मीडिया की साइट्स हैं, इस पर जैसे जैसे वो समय बिता रहे हैं, क्योंकि 2 घंटे से ज़्यादा समय बिताने से शराब पीने की जो संभावना है वो 2 गुनी हो जाती है, ऐसा माना गया है। अगर हम 14 लाख बच्चों पर ये अध्ययन किया गया, इसके बाद पाया गया कि 10 से लेकर 17 साल के किशोरों के अंदर ये जो अध्ययन किया गया, इसके अंदर देखा गया कि 28% लोग जो हैं

0: अगर 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं तो वो नशीली दवाओं के उपयोग की तरफ बढ़ जाते हैं, चिंता का विषय है। अगर इसके साथ साथ में देखते हैं कि अगर यही 48% लोग जो हैं अगर 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल लगातार वन स्टॉप जिसको हम कहते हैं बैठने को अगर यूज करते हैं तो शराब की तरफ बढ़ते हैं। अगर 73% लोगों का ये मानना है कि अगर वो 2 घंटे से ज़्यादा लगातार गेम खेलना या किसी भी सोशल साइट्स पे लगातार लगे रहते हैं तो शारीरिक हमला जिस पे कई सारी ऐसी बीमारियां जो हैं अंदर ही अंदर वो पनपने लग जाती हैं। और इसके साथ साथ ऐसा 85% लोगों ने माना है कि अगर आप 2 घंटे से ज़्यादा लगातार मोबाइल यूज़ करते हैं तो आप तंबाकू जैसे सेवन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो देखिए कि लगातार जो इतना मोबाइल यूज करने से कितने सारे घातक परिणाम बच्चों के साथ में आ रहे हैं। होता क्या है, हम मोबाइल के अंदर सीमित रह जाते हैं, बाहर की दुनिया से बिल्कुल अपरिचित, अज्ञान जिसे कहते हैं, बाहर क्या हो रहा कोई अब खेल हम खेलते नहीं है, क्योंकि बाहर जो पहले कितने गेम्स हुआ करते थे, स्पोर्ट्स के अंदर एक्टिविटी कम हो गई है, शरीर से जितना पसीना निकलना चाहिए जितनी एक्टिविटी वो अंदर वो मांगता है कुछ नहीं होता है, इस वजह से फिर हम चिल रह नहीं पाते हैं और फिर क्या होता है सब दिक्कतें और सारी की सारी बीमारियां हम अपने आप दावत देते हैं। दूर रखने के आपके पास तरीके है ना, ये आपको सब जानना पड़ेगा। गीत के उस पार बड़ी काम की बात होगी, वो कौन सी काम की बात है आपके लिए, किसके साथ आप आज अपना हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे,
1: कृपया ध्यान दें।
0: इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं ध्यान देने वाली बात यह कि सुनते रहिए, ध्यान लगाते रहिए, काम की बात हम आपको देते रहेंगे। आपके मैसेज आ रहे हैं, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुरों की शाम होगी यादगार, आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम अरा

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदकर।

0: इस संवाद तक
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं, इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
4: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
5: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
4: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
6: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है,
7: ठीक है।
6: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
5: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
4: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
8: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
4: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
5: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
4: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
5: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
4: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
5: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
4: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
5: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: तमरे वास्ते लेके आए हैं।
1: अब एक सबसे बड़े काम की बात, आप देखेंगे कि किसी, अगर हम छोटे जानवर की बात करें तो मतलब वो भी जो धीरे धीरे धीरे धीरे चलता है, बचपन में हमने कहानी सुनी होगी आपने खरगोश की और कछुए की कहानी, है ना। तो आज है विश्व कछुआ दिवस, हैप्पी वर्ल्ड टर्टल डे। अगर आप देखेंगे अब इसको तो सबसे बड़ी खास बात है कि सबसे अधिक वर्षों तक जीवित रहने वाला जो कछुआ है, जिसको नाम क्या है, हनाको कछुआ, कितने साल, 226 साल तक वो जीवित रहा। कितना, 226 साल। हम कहते हैं कि कितना लंबा जो सफर है। इसलिए विश्व भर के अंदर कछुओं की जो घटती संख्या को देखते हुए लोगों के संरक्षण के प्रति जागरूकता को पैदा करने के लिए ये वाला जो दिवस है मनाया जाता है 23 मई के लिए। कछुआ ही एक ऐसा जानवर है जिसे कई सारे लोग शुभ में मानते हैं, उनकी कई प्रजातियों को घर पर भी रखा जाता है। यही कारण है कि बाजारों में वो बहुत ही ज़्यादा महंगे महंगे भाव, जो उनके भाव लगते हैं उसमें इनकी बिक्री भी होती है। कहा जाता है कि एक समय था कि लॉकडाउन से कछुओं को बहुत ही ज़्यादा उनको राहत मिली, क्योंकि कछुए जो कैसे देखे वो देखने बंद हो गए थे, लेकिन जो कछुओं की जो समुद्री प्रजाति थी वो लॉकडाउन में आराम से समुद्र किनारे वो रह पा रहे थे, क्योंकि गर्मियों में उस दौरान में कोई भी आना जाना सबका बंद था, तो आराम से। अब इसी कारण में भीड़ ज़्यादा हो गई, तो अब वो बाहर की तरफ नज़र नहीं आते हैं और वो स्वतंत्र जो अपना जीवन है वो नहीं जी पाते हैं। कहा जाता है कि सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है, लगभग 200 मिलियन पुरानी है ये, जहाँ पर चिड़िया, सांप, छिपकली और पहले से धरती पर ये अस्तित्व आ चुके थे। इनके साथ साथ में कहा है कि कछुआ ही पृथ्वी पर सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहने वाला जीव माना जाता है। रेंगने वाले यानी कि सरीसृप जीवों की श्रेणी में आने वाले जीव की जो उम्र लगभग 150 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। सबसे अधिक वर्षों तक जीवित रहने वाला ये एकमात्र ही ऐसा जानवर है। तो सोच के देखिए कि कितना इम्पोर्टेंट हो गया है ना। छोटे छोटे कभी आप देखेंगे तो कभी आप बाजारों वगैरह कहीं जाते होंगे तो शायद वो छोटे छोटे उसके अंदर वो दिखाते हैं, कहीं आपको ऐसे जो कछुआ जिसको हम कहते हैं बहुत शुभ होता है, कहीं वो ऐसे वो चांदी के बर्तन में रखा हुआ देते हैं, कहीं सारे मंदिरों के अंदर उसको वो दिखाते हैं। तो इसलिए आज विश्व कछुआ दिवस भी है। साथ ही साथ में आज आप अपना हैप्पी वाला बर्थडे किन के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुगंधा मिश्रा का आपने नाम सुना, सिंगर भी रही हैं, लता मंगेशकर की आवाज़ के अंदर वो उनको अपने उनकी जो वो कॉपी करते हैं, उनके गाते हैं, बहुत कॉमेडियन हैं। सबसे पहली बार जब उनको देखा गया था वो कपिल के शो के अंदर पहली बार ऐसे ऑडियंस के रूप में वो आई थी। साथ साथ में समीर कोचर, आज इनका हैप्पी वाला बर्थडे भी है। अब इस बर्थडे के अंदर आप देखेंगे तो वो समीर कोचर को आपने कई सारे स्टेज के अंदर, कई सारे मंचों पर एंकर भी करते हुए आपने उनको देखा होगा। तो आज हैप्पी वाला बर्थडे इन दोनों के साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा आपके घर के अंदर आपके दोस्तों में किस किस का आज हैप्पी वाला बर्थडे जो जन्मदिन है वो है, किसको क्या क्या मिलेगा ये आपको पता ही है। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का सफर ये 8 बजे के बाद वाला शुरू होगा। उस तरफ से कोमल आपके साथ में होंगे, गला साफ।

0: से बम फटे, एटम बम।
1: ये कमाल है अमित त्रिवेदी का, जो वो आपके जो शब्द हैं उनके साथ किस तरह से संगीत को जोड़ते हैं। सुनिए।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: अगर हर हार के बाद भी आपका हौसला जिंदा है, अगर हर मुश्किल के बाद भी आपकी कोशिश जारी है, तो यकीन मानिए सफलता आपकी तरफ बढ़ रही है, क्योंकि असली जीत वही है जहां इंसान हारने के बाद भी अपने सपनों से हार नहीं मानता। तो इस नई सुबह में अपने सपनों को फिर से आवाज दीजिए, अपने इरादों को फिर से मजबूत कीजिए और चल पड़िए एक नई उम्मीद के साथ। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर मॉर्निंग मैगजीन शो और मैं हूं आपकी अपनी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल, और साथ है आकाशवाणी रेनबो का, आकाशवाणी रेनबो 102.6 एफएम पर, जहां हर सुबह मिलती है जोश, मुस्कुराहट और जिंदगी को बेहतर बनाने वाली बातें।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो
2: और प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। और दोस्तों आज है सैटरडे मॉर्निंग। सैटरडे मॉर्निंग वैसे तो बहुत रिलैक्सिंग होती है, लेकिन ये जो दिल्ली की गर्मी है ना, ये जो मौसम है, ये इसको बिल्कुल भी रिलैक्सिंग नहीं रहने देने वाला है, क्योंकि आज यानी 23 मई को जो है वो राजधानी और राजधानी के आसपास जो है तापमान करीब 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 29 डिग्री तक रहने का जो है अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तेज़ धूप और भीषण लू को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑलरेडी हीट वेव का अलर्ट जो है वो जारी कर ही दिया है। तो अगर सूरज की बात करें तो सुबह 5:26 पर वो निकल आए और शाम को 7:09 तक वो हमारे साथ रहने वाले हैं, यानी कि आज का दिन भी काफ़ी लंबा रहने वाला है, करीब 13:45 का। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, बिना ज़रूरत धूप में निकलने से बचें, और ख़ास तौर से आपके घर में अगर कोई बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं तो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि धूप आज फुल ऑन एटीट्यूड में है बॉस। तो पानी की बोतल हमेशा साथ रखिए, गर्मी से लड़ना है आसान, पानी छांव और सावधानी रहे साथ। तो मुन्नी हो या मुन्ना, बाहर निकलने से पहले आज ज़रूर हमारी बात सुनना कि धूप से बच के रहें,

0: आर यू।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी

0: app now and watch for free.
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुं सुदर्शन।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

और अपनी आकाशवाणी पर ही आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और मैं हूं आपके साथ कोमल, आपका मॉर्निंग मैगजीन शो लेकर के, जिसमें हम आपको बताते हैं कि दिल्ली एनसीआर में क्या कुछ खास हो रहा है, क्या आप कर सकते हैं, कहां आप बच सकते हैं। तो अगर आपके पास है कोई ट्रैफिक की इन्फॉर्मेशन, आप जहां से जा रहे हैं वहां ट्रैफिक जाम है या स्मूथ है या किसी और कारण से वहां पर कोई व्यवधान है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर।

तो दोस्तों ये तो पूछ रही थी सुनिधि चौहान खाकी फिल्म से कि कैसा जादू डाला रे, लेकिन अगर आप भी जादू डाल सकते हैं, आपके अंदर कोई टैलेंट छुपा हुआ है, कोई हुनर है, तो अगर आपकी आवाज़, आपका डांस, आपकी एक्टिंग या आपकी कला डिजर्व करती है बड़ा मंच, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि दिल्ली सरकार लेकर के आई है हौसलों की उड़ान टैलेंट 2026-27। और इसमें 16 से 35 साल तक के युवा इस मेगा टैलेंट हंट में बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन के साथ हिस्सा ले सकते हैं। चाहे डांस हो, चाहे सिंगिंग हो, अभिनय हो, फाइन आर्ट्स हो, डिजिटल आर्ट्स हो, वाद्य संगीत हो और रंग मंच, ये 7 शानदार कैटेगरी हैं जहां पर आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। ये सुनहरा मौका आपको मिल रहा है, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करने का समय मिल रहा है 29 मार्च तक का। तो बस देर मत कीजिए, अपने हुनर को पहचान दीजिए, अपने सपनों को उड़ान दीजिए, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता। अगर आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो dillytalenthunt.com पर जाएं और बन जाएं दिल्ली के अगले स्टार, क्योंकि दोस्तों टैलेंट छुपाने के लिए नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए होता है। हुनर है तो मंच मिलेगा, बस हौसलों की उड़ान भरनी होगी।

और कसम से वाह क्या मौसम हुआ है। बिल्कुल अब मैं स्टूडियो की खिड़की से अगर बाहर देखूं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बता रही थी कि दिल्ली में प्रचंड गर्मी होने वाली है, लेकिन अगर स्टूडियो की खिड़की से बाहर देखूं तो मौसम क्या अय्या रे अय्या, कितने अच्छे बादल छा गए हैं और इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब देखकर ही इतनी ठंडक सी महसूस हो रही है, लग रहा है कि गर्मी जैसे दूर भाग गई है। लेकिन चलिए प्रोग्राम करते हैं और उसके बाद इस मौसम का मज़ा भी लेंगे अगर ये मौसम बना रहा तो। आपको बताते हैं कि CBSE के स्टूडेंट्स 12वीं के जो भी हैं, जो अपनी आंसर शीट की स्कैन कॉपी देखने वाले हैं, उनके लिए एक राहत भरी खबर है, जैसे कि मौसम एकदम से राहत लेकर के आया है, क्योंकि अब आंसर शीट्स की स्कैन कॉपी पाने के लिए जो अप्लाई करने की डेट थी वो एक दिन और बढ़ा दी गई है। पिछले कई दिनों से ऑनलाइन आवेदन करने में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो बोर्ड ने ये फैसला लिया है कि ये जो एक दिन की तारीख है ये आगे बढ़ा दी जाए। जी हाँ, यानी तारीख पे तारीख आगे बढ़ चुकी है। पहले लिंक जो है 19 मई को ओपन हुआ था, लेकिन कई स्टूडेंट्स को अप्लाई करने में बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन अब यही स्टूडेंट्स जो हैं वो 24 मई यानी कल संडे तक जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी आंसर शीट की स्कैन कॉपी देखना चाहते हैं तो ये एक्स्ट्रा मौका बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। रिजल्ट के बाद अब जवाबों को भी करीब से देखने का आपका मौका मिल रहा है, तो थोड़ा सा समय और मिला है तो अपने अगले कदम की तैयारी भी पक्की कर लीजिए। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR और मैं हूँ आपके साथ

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: की शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराधना।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे। कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य

0: आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

और आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और जिसमें हम बात करते हैं मॉर्निंग मैगजीन शो की तरह, जिसमें आप क्या क्या कर सकते हैं पूरा दिन भर। तो चलिए, जो स्टूडेंट्स 12वीं पास कर चुके हैं और एडमिशन की तलाश में अपने मौके ढूंढ रहे हैं, तो उन्हें बता दें कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी यानी आईपीयू ने कई नेशनल लेवल टेस्ट और मेरिट बेस कोर्सेज में आवेदन की जो तारीख है वो आगे बढ़ा दी है। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो 30 मई तक जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पहले जहां लास्ट डेट 15 मई थी, वहीं अब स्टूडेंट्स को मौका मिला है, एक्स्ट्रा टाइम मिला है और अपने फ्यूचर को सही दिशा देने का एक और मौका मिला है। यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि फॉर्म भरते वक्त अपने पसंदीदा कोर्स और उसके प्रोग्राम कोड को बहुत ध्यान से आपको चुनना है, क्योंकि अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए वेबसाइट पर अलग लिंक दिए गए हैं। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से अच्छे से पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो ये मौका बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि सही फैसला आज और कल का शानदार करियर आपका बन सकता है। और लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हम तो यही कहना चाहेंगे। डेडलाइन बड़ी है, सपनों की रफ्तार रुकनी नहीं चाहिए, करियर का सही मोड़ शायद बस एक आवेदन दूर है।

गरम मसाला। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और टाइम बाय द रेनबो क्लॉक इज 8:54 और प्रोग्राम इससे पहले ख़त्म हो जाए आपको बता दें एक और जानकारी। जी हाँ, करीब 13 साल बाद राजधानी में फिर से राशन कार्ड बनवाने के लिए जो एप्लीकेशंस हैं वो अब आप भर सकते हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं और जांच के बाद ही ज़रूरतमंद परिवारों को राशन कार्ड जो है वो जारी किए जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि अब पूरी प्रक्रिया जो है वो डिजिटल और पारदर्शी होगी। नए राशन कार्ड और परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं edistrict.delhi.gov.nic.in पर या नज़दीकी जन सुविधा केंद्र आप जा सकते हैं। सरकार के मुताबिक जो है ऑडिट में अपात्र लोगों के नाम हटने के बाद से ये जगह अब खाली हो चुकी है। तो यानी कि आवेदन के लिए परिवार के सभी सदस्यों का जो आपको आधार कार्ड है, आय प्रमाण पत्र है और निवास प्रमाण पत्र है वो आपको ज़रूरी वहाँ पर जमा करना होगा। इसके बाद अच्छी खासी जांच होगी और मंजूरी मिलने पर ही आपको राशन कार्ड जारी किया जाएगा। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशंस आप अपनी भर सकते हैं ऑनलाइन या फिर जन सुविधा केंद्र भी आप जा सकते हैं, क्योंकि अब सुविधाएं होंगी स्मार्ट और सिस्टम होगा पूरी तरह से पारदर्शी। ज़रूरतमंदों तक हर हक पहुंचे, यही असली विकास की पहचान है दोस्तों। और अब कोमल के जाने का समय हो गया है, फिर आपसे किसी दिन मुलाकात होगी रेनबो की तरंगों पर। फिलहाल कोमल को दीजिए इजाजत, क्योंकि मनीष आ रहे हैं स्टूडियो में दिल के धराने गाने नए पुराने लेकर आप सभी के लिए। नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: ओ जी किथे किथे किथे मैं क्या जी किथे चलियो।
3: आप तो प्रोग्राम शुरू हो चुका है दिल के तराने गाने नए पुराने, जहां पर बैक टू बैक म्यूजिक आपको देगा एक बिल्कुल अच्छा वाला सुकून,
2: जैसे थोड़ा थोड़ा सा हमें भी इस समय स्टूडियो से झांक कर लग रहा है कि मौसम भी थोड़ा सा दे सकता है सुकून। लेकिन मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हम सोच रहे हैं थोड़ा सा बारिश हो जाए। लेकिन ये सैटरडे का दिन है तो तब तक सैटरडे में सैटरडे की बातें ना हो जाएं, कैसा रहेगा। दिल के तराने गाने नए पुराने, रेडियो के इस तरफ मेरी आवाज, रेडियो के उस तरफ आप लोग, डांस करने के लिए तैयार। इंदीप बख्शी
3: कोशिश रहेगी कि आपके जो पैर हैं वो थिरकने पर डिंग डिंग डिंग डिंग करेंगे और हम उनको ऐसे ही चलाते रहेंगे।

तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: भैया राम राम। ए मैं कहूँ राम राम जी, कैसे चल रही है? गांव में सब ठीक ठाक हैं? हाँ जी, तो किधर को चल लिए सैर करने को बाबू जी?
1: देखो जी, उम्मीद ही जता सकते हैं कि आपको
2: काशीपुर के एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी
1: नहीं मानेगा। उम्मीद ही मतलब हम जता रहे हैं कि आपको जो प्रोग्राम है ये अच्छा लग रहा होगा और जो गीत हैं वो आपको अच्छे लग रहे होंगे। आपका जो पैर है अपने आप ही वो थिरक भी रहा होगा। जो तड़का है ना हमारा वहाँ से भी रेट्रो वाला, ये बड़ा कमाल का होता है। लट में है तेरे कितने जादू, नैनों में कितने, हमें क्या लेना इन बातों से? सिर्फ इतना कि प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का सफर, दिल के तराने, गाने नए पुराने, आकाशवाणी रेनबो पर, रेडियो पर आवाज़ यहाँ से जो आ रही है मेरी है, मनीष आज़ाद रेडियो वाला। आप उस तरफ बैठे हैं, आप सबसे प्यारे, सबसे अच्छे हैं, क्योंकि आपके मैसेजेस इस बात का सबूत हैं। अब भाई साहब, सबूत एक और है। आजकल जैसे जैसे आप समाचार पत्रों के अंदर लोगों के मुंह से, अरे इतना हो गया भाई साहब टेम्परेचर, इतना चिल्लाया गया भाई, कल तो इतना था भाई, मैं कल जैसी बाहर निकला भाई साहब ऐसे चेहरे पर लू लग रही है, हाथ जल गए मेरे तो पूरे, ये वाली जो बातें आप सुनते होंगे ना, सच में इस तरह

जो बातें इनसे आपको तापमान का पता तो चलता ही है, साथ साथ में ये एहसास भी होता है कि गर्मी कितनी है। तो इस समय जो टेम्परेचर है, मैक्सिमम की बात करें क्योंकि अभी सुबह सुबह वाली है, 41 डिग्री है। कम वाले की बात करें 29 है। जैसे ये 30-31 पहुंच जाएगा, झुलसने वाली एकदम से, जो पसीना आपको रुकेगा नहीं। इस समय तो सब जगह आपके घरों में भी बातें हो रही होंगी, एसी भी चल रहा है लेकिन देखो पसीना सूख नहीं रहा, मतलब ऐसा हो रहा कि गर्मी ने तो हद कर दी भाई, हैं? जरा सी देर को बाहर चले जाओ ऐसे जल जाते हैं पैर, कपड़ा रख दो 5 मिनट के अंदर सूख जाता है। भाई ये सही बात है बिल्कुल, इस समय क्योंकि जो गर्मी है बिल्कुल अपने पीक पर है। और दूसरी बात, अभी तो भाई साहब ये जून आया नहीं है, ये जब जून आएगा तब क्या होएगा आपको पता चलेगी। ठीक है, ध्यान रखिए, बेवजह घर से ना निकलें ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत ज़रूरी है, निकलना है, जाना ही है, काम है, न ऐसा हो जाएगा नहीं तो, साथ में पानी की बोतल लेके चलिए आप, चेहरे को ढककर रखिए आप, मास्क इस समय अगर लगा लेंगे या कोई कपड़ा भी अगर डाल लेंगे चेहरे पर, सूती हल्का कपड़ा, हल्के कपड़ों का इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़े से ढीले ढीले खुले खुले से, इस समय फैशन नहीं, आपको अपनी सुरक्षा और अपनी स्वास्थ्य और अपनी त्वचा का ध्यान रखना है, क्योंकि कई सारे लोगों की जो स्किन है बहुत सेंसिटिव होती है। आपने भी देखा होगा, आपने बच्चे, हाय मेरी तो जरा सी स्किन ऐसी, जरा सी धूप में जाते, हाय जल सी जाती हूँ मैं तो, हाय मेरे तो डैडी ऐसा हो गया, हाय मेरे तो पापा मेरे तो ऐसा हो गया, अरे मैं अंकल क्या बताऊँ, है ना? ऐसा होता होगा आपको, सब जगह पर ऐसा है। आपके बच्चे सच में आपसे भी ज़्यादा बहुत प्यारे हैं, अच्छे हैं, अपना ध्यान आप नहीं रख सकते, उनका तो रख सकते हैं। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही निकले, नहीं तो ममता शर्मा जावेद अली ले गई।

0: के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: आप जैसे ही घर से निकलते हैं अपने दो पहिया पे चार पहिया पे, जैसे ही आप जाते हैं तो आपको सड़क पर ट्रैफिक तो आपको मिलता होगा। आपके मन में अक्सर ये बातें आती है, जब चले जाओ ये ट्रैफिक जाम ही जाम रहता है, कहीं भी चले जाओ ट्रैफिक जाम। आप ये मन मन में ऐसा बोलते हैं। इसी दौरान आप जब चलते जाते हैं, चलते चलते आपको लगता है कि दो लोग ट्रैफिक की वजह से ही, मतलब वो आपस में कुछ कुछ हिंदी की कविताएं एक दूसरे को सुना रहे हैं, आप उसको देखकर आगे निकल जाते हैं। जबकि ये जो हादसा है, ये जो बातें हैं, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि हम घर से समय से 5 मिनट पहले नहीं निकलते हैं। ये अक्सर अगर मैं, मतलब इसको मैंने भी अपने साथ ऐसे देखा हुआ है कि जब अगर आप 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट पहले अगर घर से निकल जाते हैं, अब बड़े सुकून से आप गाड़ी चलाते हैं, सुकून से आप अपने ऑफिस पहुंचते हैं या जो भी आपका डेस्टिनेशन है वहां तक आप पहुंचते हैं। लेकिन जो आप 5 मिनट ऊपर अगर जाते हैं या 10 मिनट ऊपर निकल जाते हैं, तो आपकी वही जो जल्दबाजी है वो आपको बहुत परेशान करती है। आप गाड़ी कभी इधर काट, कभी स्टीयरिंग इधर काट, कभी हैंडल इधर घुमाओ, कभी हैंडल इधर घुमाओ। उस वजह से क्या होता है, उस जल्दबाजी के चक्कर में कभी गाड़ी दूसरी गाड़ी से वो लगेगी, क्योंकि आप ब्रेक भी नहीं लगा रहे हैं, आप सोच रहे मैं निकल भी जाऊंगा, सामने वाला सोचता है वो भी निकल जाएगा, क्योंकि जो हालात आपके साथ हैं दूसरे के साथ भी तो हो सकते हैं ना। भगवान जी ने सभी को दिमाग एक जैसा दिया नहीं है, तो इसलिए जब नहीं दिया तो सब अपने आप से निकलते हैं। फिर आप सामने जब आप चलते हैं तो रोड पर उस समय आप तू हट जाते मैं दिख नहीं रहा, क्या भाई क्या सामने से आ रहा, इस तरह की बातें करते हैं, है ना। अगर आप इस समय क्रॉट पेस के अंदर हैं और अगर आप इस समय क्रॉट पेस के अंदर बाराखंबा रोड से आप निकलकर आप टूवर्ड्स आप जाते हैं जनपद की तरफ, जनपद से आप जैसे जाएंगे गुरुद्वारा बंगला साहिब की तरफ से, उसे निकल के जब आप बाबा खड़क सिंह मार्ग पर जाते हैं, तो जाने वाला रास्ता तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप वहां से आ रहे हैं वापस टूवर्ड्स इनर सर्कल की तरफ, तो आपको गुरुद्वारे के सामने जो है, जो होटल ललित की तरफ जो रास्ता जाता है, वहाँ पर आपको थोड़ी सी देर के लिए आपको हल्का हल्का सा ट्रैफिक मिलेगा। जैसे ही आप वहाँ से आगे आ जाते हैं, जो इनर सर्कल की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ पर आपको हल्का सा ट्रैफिक का आपको सामना करना पड़ सकता है। आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए अनलक्की हल्का सा कह सकते हैं। आप इस समय ITO की जो रेड लाइट है उस पर आपको इस समय थोड़ी देर का विलंब होगा, बस मुश्किल से जो रेड लाइट है, मतलब उसको ट्रैफिक जो है वो चला रहे हैं वहाँ पर, वो मैनुअली चल रहा है, तो इसलिए जिस चक्कर में थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक लंबा लंबा लंबा बढ़ते हुए थोड़ा सा पड़ा। हाँ, इस समय सुप्रीम कोर्ट की जो रेड लाइट है वहाँ से अगर आप सिकंदर रोड की तरफ भी अगर आप मुड़ना चाहते हैं, तो भी आपको हल्का सा ट्रैफिक का सामना आपको इस समय करना पड़ सकता है। अगर आप इस समय पहाड़गंज की तरफ हैं, पहाड़गंज की तरफ से आप RK आश्रम की तरफ जा रहे हैं, और जहाँ से आप सीताराम जो दीवानचंद की तरफ हम बढ़ते हैं, जब झंडेवाला थोड़ा सा लंबा, यानी कि पचकोइया रोड सीधा आगे तक स्ट्रेच करेंगे, तो ये यहाँ पर आपको बिल्कुल लाल लाल नज़र आ रहा है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर चलना है। अगर आप इसका अल्टरनेट रूट लेना चाहते हैं, हालांकि थोड़ा सा मेरे हिसाब से 2.5 किलोमीटर के आसपास लंबा पड़ेगा, आप RK आश्रम से उस तरफ ना जाके आप इस तरफ को आ जाइए जो पेशवा रोड आता है, पेशवा रोड की तरफ से आप मंदिर लेन होते हुए फिर वहाँ से वंदे मातरम जो मार्ग है, फिर वहाँ से आप लेफ्ट ले लेंगे, करोलबाग आ जाएगा आपको, झंडेवाला आपको जाने का जो रास्ता है, आर्य समाज रोड वो भी बिल्कुल ठीक है, तो आप यहाँ भी बच सकते हैं। मैंने आपको अल्टरनेट रूट भी उसका बता दिया है। हाँ, इस समय आप अगर लिबर्टी सिनेमा वाली जो रोड है, जिसको हम न्यू रोहतक रोड बोलते हैं, वहाँ पर इस समय थोड़ी सी देर का लंबा वाला हल्का सा ट्रैफिक वहाँ पर जाम, ऐसा नहीं रुका हुआ है लेकिन धीरे धीरे वो चल रहा है। कहाँ तक चल रहा है, ये आपको दिल्ली सराय रोहिल्ले का जो सराय रोहिल्ला का, हाँ जी, ये पुल जो दिखा रहा है ये जखीरा वाला पुल दिखा रहा है, थानसिंह नगर जहाँ पर शुरू हो जाता है, ये वहाँ पर आपको थोड़ी सी देर का आपको ट्रैफिक का जाम सामना करना पड़ सकता है। ओ भाई साहब, इस समय रेलवे कॉलोनी के ऊपर ही क्या लाल लाल थोड़ा लंबा लंबा लंबा लग रहा है। कहाँ तक जा रहा है ये, डॉक्टर KV हेडगेवार मार्ग से शुरू हो रहा है ये, आगे चलते चलते जो CNG का पंप है वहाँ से आगे चल के रेलवे कॉलोनी का जो ब्रिज है ये यहाँ पर आपको लेके जा रहा है आगे मोनेस्ट्री मार्केट में, यानी कि रिंग रोड की तरफ से आपको हल्का सा ट्रैफिक का सामना उस तरफ आपको करना पड़ेगा। बाकी मॉडल टाउन बिल्कुल चकाचक नज़र आ रहा है, ये आदर्श नगर चकाचक है, आज़ादपुर ठीक है, शालीमार बाग ठीक है, प्रशांत विहार ठीक है। ओ हल्का सा ये अगर आप इस समय रोहिणी वेस्ट की तरफ हैं जहाँ से आप रिठाला निकलते हैं, तो रोहिणी वेस्ट की तरफ से जो सीधे हाथ की तरफ वो मुड़ते हैं, यहाँ पर जो चौराहे पर रेड लाइट पर जो ये मॉल है, यहाँ पर सामने की तरफ से ट्रैफिक जो है इस समय आपको दिख रहा है, रुका नहीं है लेकिन धीरे धीरे आप चल जाएंगे। तो अगर आप इस समय कहीं आसपास हैं तो थोड़ा बच के निकल सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। फिर बस मेरी तो छोटी सी बात होती है, एक हल्की सी एक इतनी सी रिक्वेस्ट, 5 मिनट घर से पहले निकल जाइए, बस सब ठीक ठीक हो जाएगा। ये ट्रैफिक भी आपको ना सच में बहुत कुछ लगेगा ही नहीं। लेकिन हम आदत से मजबूर नहीं निकलेंगे ना, निकलोगे?

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
2: पता का चाय गजब का स्वाद।
3: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
5: मेरा तो घर जाने का टाइम हो गया, घर जाके मैं चाय पीऊंगा।
6: लेकिन इससे पहले मैं यहां से निकलूं, शालू आ चुकी हैं प्रोग्राम लेकर, मैचलेस म्यूजिक आर, इसके बाद गोपाल आएंगे प्रोग्राम लेकर बॉलीवुड ट्रेल्स, उसके बाद में प्रियंका वर्मा आपके साथ होंगी, प्रोग्राम होगा आशियाना, दीपांशी अरोड़ा आपके साथ में होंगी प्रोग्राम सिटी लाइट लेकर, उसके बाद में आप देखेंगे तो प्रणव सक्सेना आपके साथ होंगे मैसेज मसाला मिक्स, सुहासिनी आपके साथ में, वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम होगा सैटरडे सिजलर्स, इसके बाद नविता कुमारी आपकी याद आती रहे, मैं यहां से जाती रहे, सी यू टाटा बाय बाय करके हम आती रहे। ओके, जाते जाते आपके साथ हम ये कहते हैं कि प्रोग्राम आपके मैसेजेज हो, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपको मैसेजेस हमें भेजने के लिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सैटरडे। सैटरडे
7: ओथे थे गुरूर नावा है, एथे थे मनीष आजाद,
6: रेडियो वाला, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रूपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की ये पहली भारत यात्रा है। यात्रा अमेरिका और भारत के आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार ये वृद्धि दर्ज की गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रूपए प्रति लीटर हो गया है। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। तमिलनाडु के तिरुप्पुर स्थित एक

शीर्ष न्यायालय ने भारत में अवैध रूप से रह रहे 25 बांग्लादेशी मजदूरों को 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके पास अवैध दस्तावेज में ये मजदूर तिरुपुर जिले के पल्लाडम के एक कपड़ा कंपनी में काम कर रहे थे। जांच के दौरान उनके पास बांग्लादेशी नागरिकता दर्शाने वाले पहचान पत्र भी पाए गए हैं। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और विशेष न्यायालय में सुनवाई के बाद कल ये फैसला सुनाया गया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार दिया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में भी कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतरोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: So the time by the studio clock is 24 minutes past 10. Just to let you know where exactly you are. You of course with Akashwani Rainbow.

मणि का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव चयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। साथ ही व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी तथा हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग बढ़ेगा। अमरीकी राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि विदेश मंत्री आज ही नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। भारत रवाना होने से पहले श्री रूबियो ने मायामी में मीडिया से बात करते हुए भारत को एक महान सहयोगी और साझेदार देश बताया। भारतीय सेना की अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार दिया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल के कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। यह रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैठक में बैंक ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी, बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री

ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर हो गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: की वाणी आकाशवाणी
1: दिल्ली एनसीआर की आबोहवा में तैरती ध्वनि तरंगे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ और देश भर में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर आप हमें सुन रहे हैं। डीटीएच के माध्यम से हम आप तक पहुंचते हैं और साथ ही साथ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू कहीं भी कभी भी आप हमें सुन सकते हैं। घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में दोस्तों इस घड़ी वक्त हुआ है 11:05 यानी कि वो समय सैटरडे का जब हम आपसे मुखातिब होते हैं और करते हैं बॉलीवुड की बात। बॉलीवुड ट्रेल्स में क्या कुछ खास चल रहा है माया नगरी में वो हम आपको बताएंगे और ये बताने के लिए आज स्टूडियो में मैं हूं आपके साथ आपका मित्र आपका बंधु आपका सखा आपका दोस्त रेडियो का किशन का नहीं आज गोपाल आप सभी को पहली बार नमस्कार जी और शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन ट्रैक के साथ और उसके उस पार आपको बताएंगे कि किस तरह से मोहनलाल जी का जलवा भी बाकी है। क्या कुछ खास हुआ कैंस में जहां आज समापन होगा फिल्म फेस्टिवल का और भी बहुत कुछ अगर आप जानना चाहते हैं सीक्रेट्स ऑफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब तो बस बने रहिए बैठे रहिए टिके रहिए चिपके रहिए अदरवाइज आप कहेंगे तौबा तौबा।

बिल्कुल जी, हुस्न तेरा तौबा तौबा। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, पूरा कैन्स फिल्म फेस्टिवल कह रहा है, जहां पर रेड कारपेट पे जैसे ही ऐश्वर्या रॉय उतरी, उनका अलग ही जलवा जो है वो देखने को मिला। ब्लू गाउन में जिस तरह से उन्होंने अपना जो परिचय दिया, भारतीयता का परिचय दिया, वो अपने आप में पूरी दुनिया ने सराहा। दोस्तों, स्पेशली आराध्या जो उनकी बेटी, उनके साथ ही उन्होंने खास तौर से अप्रिशिएट किया माँ के इस खास अंदाज को। दोस्तों, और कांस फिल्म फेस्टिवल की जब हम बात करते हैं तो खास तौर से हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, जहां पर भारतीय फिल्मों का जलवा अलग से देखने को मिलता है। दोस्तों, इस बार की अगर हम बात करें दोस्तों, तो फ्रांस में ही हो रहा है 79th एडिशन ये है कांस फिल्म फेस्टिवल का, और आज इसका समापन है 23 मई जो है आज के दिन। ये नाउ गेटिंग इन टू द कंक्लूसिव मोड, और अलग अलग सितारे अलग अलग तरह से वहाँ पर अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज करा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के फिल्म फेस्टिवल्स में, ना सिर्फ हम अपनी पावर ऑफ क्रिएटिविटी दिखाते हैं, साथ ही साथ दिखाते हैं कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर बॉलीवुड जो है वो लगातार उभर रहा है। और सिर्फ बॉलीवुड, अब मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज टॉलीवुड और जितने भी अलग अलग तरह के फर्टेंडीज हैं बॉलीवुड के अलग अलग रीजन्स के अंदर इंडिया में, वो अपने आप में एक नई इंडस्ट्री के तौर पर लगातार उभरती जा रही है। पहले 2 या 3 इंडस्ट्रीज को इस तरह से देखा जाता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अलग अलग जो रीजनल सिनेमा है, चाहे वो असम का सिनेमा हो, चाहे वो बंगाल का सिनेमा हो, चाहे वो साउथ का सिनेमा हो, चाहे वो बिहार का सिनेमा हो, वो लगातार विश्व पटल पर अपनी पहचान जो है वो बनाता जा रहा है। और दैट्स द ब्यूटी, दैट्स द पावर ऑफ द डाइवर्सिटी दैट वी आर हैविंग इन इंडिया। दोस्तों, बहरहाल हमारी तरफ से ऐश्वर्या जी को बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी भारतीयता का नेतृत्व वहां पर करने के लिए। और जब मैं ऐश्वर्या के बारे में सोचता हूं ना दोस्तों, तो ये ट्रैक सबसे पहले मेरे जहन में आता है, गुरु फिल्म का ये ट्रैक, तेरे बिना, ए आर रहमान साहब का कंपोज किया हुआ ये ट्रैक। हम डेडिकेट करते हैं कांस को, ऐश्वर्या रॉय को, और उन सभी को जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है कांस फिल्म फेस्टिवल में। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स, ये है आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन रेनबो, और मैं हूं आपके साथ आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सखा, आपका दोस्त आरजे गोपाल। प्रणाम, स्वीकार कीजिए पार्थ।

कांस फिल्म फेस्टिवल में भले ही जो गुरु इम्पैक्ट है वो ऐश्वर्या राय जी ने दिखाया हो, लेकिन बॉलीवुड स्क्रीन की फिलहाल अगर बात करें, बॉक्स ऑफिस की अगर फिलहाल हम बात करें दोस्तों, तो वहां पे जलवा मोहनलाल जी का बाकी है। इज द रियल गुरु ऑफ बॉलीवुड आई शुड से, टॉलीवुड आई शुड से, ऑल द डिफरेंट बॉलीवुड जो रीजनली अवेलेबल है उन सब के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रेरणा है मोहनलाल जी। और उससे पहले मैं बात दृश्यम 3 की करूँ, बता दूँ आपको कि घड़ी बदलती घड़ी में इस घड़ी वक्त हुआ है 11:17, यानी आपकी हमारी भाषा में सैटरडे सुबह के 11:15 हो चुके हैं दोस्तों। आप मेरे साथ सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स, जहां पर बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस की हर खबर लेकर पहुंचते हैं हम। और जहां तक बात आज इस कुर्सी पर काबिज इस शख्सियत की है, तो मैं हूं आपके साथ आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सगा, आपका दोस्त, रेडियो का किशन का नहीं आरजे गोपाल, प्रणाम स्वीकार कीजिए पार्थ। और साथ ही साथ ये खबर भी कि दृश्यम ने बेहद ही बम्पर तरीके से ओपनिंग की, अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज हुई ये फिल्म, कहीं ना कहीं मोहनलाल जी जो है उनके जलवे पर मैं कहूँगा पूरी तरह से टिकी हुई एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी। और धमाकेदार शुरुआत इस फिल्म की हुई, लेकिन दूसरे दिन की कलेक्शन में इस समय थोड़ी सी गिरावट नज़र आ रही है। इस गिरावट के बावजूद ये जो कलेक्शन है ये डबल डिजिट्स करोड़ में है दोस्तों, लगभग 12 करोड़ की कमाई इस समय हो चुकी है 11:15 सुबह के बज रहे। और अगर हम बात करें एट द सेम पॉइंट इन टाइम जो दूसरी फिल्म इस हफ्ते रिलीज हुई चांद मेरा दिल, बहुत बढ़िया नहीं उसका रिस्पॉन्स रहा है टू बिगिन विद। अनन्या पांडे इस फिल्म में है दोस्तों, और कहीं ना कहीं लक्ष्य की जो रोमांटिक जोड़ी है अनन्या के साथ उसे यहाँ पर पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन नॉट अ ग्रेट स्टार्ट। लुक फॉरवर्ड की ये फिल्म धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ेगी, और जो युवा हमारे दर्शक हैं, जेंजीज हैं, उन्हें

0: ये रोमांस पसंद आएगा 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी भी बहुत सारी खबरें हमारे पास बाकी और साथ ही साथ क्रिकेट जगत की खबरें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टम्प रहेगा हमारा एक विशेष कार्यक्रम आपके लिए, बस आप कहीं जाइएगा नहीं, रेडियो किससे बिल्कुल भी घुमाएगा नहीं। जहाँ तक मेरी बात है तो एक बहुत ही प्यारा वाला गाना आपके लिए लेकर आ रहा हूँ सोनू निगम साहब की आवाज़ में, फिल्म है संघर्ष, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार तो करना ही होगा। एक बहुत ही प्यारा वाला ये ट्रैक आपके लिए क्यों किया है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। और जब मैं बोलता हूँ ना छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, आई मीन इट, सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड में वापस लौटूंगा। एक मिनट कीजिए मेरा इंतजार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जी हाँ, और इसी के साथ हमारे 60 सेकंड्स बोले तो एक मिनट पूरा हुआ कमर्शियल ब्रेक का, और सोनू निगम साहब आपके लिए गा रहे हैं बेहद ही खूबसूरत ट्रैक फ्रॉम द फिल्म संघर्ष, सिर्फ और सिर्फ 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, सिर्फ और सिर्फ शो कॉल्ड बॉलीवुड ट्रेल्स पर, और सिर्फ आपके दोस्त आरजे गोपाल के साथ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन रेनबो। मैं हूं आपके साथ आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सखा, आपका दोस्त, रेडियो का किशन का नया आरजे गोपाल। प्यारी पनाते नमस्कार आप सभी को जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और आप सुन रहे हैं मेरे साथ शो कॉल्ड बॉलीवुड ट्रेल, जहां पर हर बॉलीवुड की खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। एक बहुत ही छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लूंगा मैं यहां पर, और उसके बाद वापस लौटेंगे और करेंगे कुछ खास बात जून में रिलीज होने वाली मूवीज की। बस आप कहीं जाइएगा नहीं, रेडियो से बिल्कुल भी घुमाएगा नहीं, क्योंकि आई एम बैक जस्ट इन 30 सेकेंड्स।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बिल्कुल जी, 102.6 मेगाहर्ट्ज़, ये जो सेंसस प्रणाली चल रही है, प्रक्रिया चल रही है दोस्तों, अपना जो कंट्रीब्यूशन है इसमें बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हालांकि बात हम करते हैं बॉलीवुड के बैक ऑन द पॉइंट आने से। जून में दोस्तों अक्षय और अजय देवगन मार रहे हैं एंट्री, वेलकम और धमाल दो मूवीज के साथ। सीक्वल्स हैं दोनों के दोनों दोस्तों। और अगर देखें ना तो अक्षय और अजय जी का जो वर्किंग स्टाइल है मोटा मोटा एक जैसा है दोस्तों। साल भर में 3 से 4 फिल्में रिलीज करते हैं, कॉमेडी एक्शन दोनों तरह के जॉनर में धूम मचाते हैं और एक बार फिर से जून में एक दूसरे से भिड़ते हुए दिखेंगे। हालांकि जो डेट्स हैं वो क्लैश नहीं हो रही है यहां पर, ये अच्छी चीज है दोस्तों। और अगर हम बात करें दोस्तों कि इन दोनों सीक्वल्स की जो मूवीज आ रही हैं धमाल और वेलकम, इसमें इस दोनों फ्रेंचाइजीज में से किसने ज्यादा बेहतरीन कमाई की है पास में, तो बहुत ही काटे की टक्कर दोनों के बीच में रही। इट्स ऑलमोस्ट लाइक नेक टू नेक। हालांकि एक के 3 सीक्वल्स आ चुके हैं और दूसरे का 4 सीक्वल्स आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जैक्ट कंपैरिजन कई बार थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम देखें नेक टू नेक तो ऑलमोस्ट एवरेज कलेक्शन पर मूवी सेम ही नजर आती है दोनों ही स्टार्स की इन फ्रेंचाइजीज की। 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर अब एक बेहतरीन वाला गाना आपके लिए निधि मोहन की आवाज में पद्मावत से, सिर्फ और सिर्फ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर नैनो वाले ने बेहतरीन म्यूजिक, बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट्स यहां पर दोस्तों, और बेहतरीन आवाज। इसके बाद हम बात करेंगे क्रिकेट के जगत की, कहीं जाएगा नहीं, रेडियो से बिल्कुल भी घुमाएगा नहीं।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी रेनबो। आप सुन रहे हैं हमारे साथ बॉलीवुड ट्रेल्स, जहां पर क्रिकेट जगत की खबरें जो हैं वो हमने आप तक पहुंचाई स्टम्प्ड, जो हमारा विशेष प्रोग्राम है उसके माध्यम से। और वापस लौट चुके हैं, वापस बॉलीवुड की बातें करने के लिए। दोस्तों, एक छोटा सा सवाल आपको दिए जा रहा हूं यहां पर, क्योंकि बहुत ही प्यारा वाला गाना जो है वो मैंने यहां पे क्यों किया हुआ है वो बजाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मुझे सिर्फ इतना बताना है बॉलीवुड सरताज बनने के लिए कि जो कांस फेस्टिवल है वो किस राष्ट्र से, किस देश से संबंधित है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही फटाफट आंसर आप मुझे दे सकते हैं। मुझ तक पहुंचना बहुत ही आसान है, 9868107070। और जहां तक बात ट्रैक की है, तो अरिजीत सिंह साहब गा रहे हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा वाला गाना फ्रॉम द फिल्म एनिमल। दोस्तों, और इस सतरंगी स्टेशन पर इस सतरंगी गाने को सुनते हैं, और उसके इस ट्रैक के उस पार मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही खूबसूरत इंस्पायरिंग बॉलीवुड स्टार की स्टोरी, कि किस तरह मेहनत जो है वो जिंदगी में आपको कहीं से कहीं भी लेके जा सकती है। दिस इज सतरंगा फ्रॉम द फिल्म एनिमल।

102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स रेडियो के किशन कन्हैया आरजे गोपाल के साथ। जी हाँ दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं वापस घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में। इस घड़ी वक्त हुआ है 11:52 यानी कि 12:45 जो है वो आपकी हमारी भाषा में सरड़े के हो चुके हैं सुबह के। और हम बात कर रहे थे बॉलीवुड सरताज बनने की कि आखिर कौन सा वो देश है जहां पर कैंस जो है वो आयोजित किया जाता है। 79th एडिशन दोस्तों इस साल हुआ है इसका, आज आखिरी दिन है और बहुत सारे जो रिस्पॉन्सेज है वो हमारे पास पहुंचना शुरू हो चुके हैं। लेकिन मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी जो कहीं ना कहीं हम सभी को इंस्पायर करती है। अगर हम चाहें जिंदगी में तो कुछ भी दोस्तों कर सकते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब की। अपनी शानदार एक्टिंग और दमदार किरदारों के लिए पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं दोस्तों। लेकिन पता है जिंदगी का ये सफर, सफलता की जो सीढ़ियां हैं, इतनी आसानी से उन्होंने नहीं चढ़ी है। एक समय ऐसा था जब फिल्मों में आने से पहले उन्होंने वडोदरा की एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में केमिस्ट की नौकरी की थी दोस्तों। और नौकरी करते हुए भी उनके दिल में अभिनय के प्रति उनका जो जुनून था उन्हें बॉलीवुड तक ले आया। छोटे शहर से निकलकर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग जगह बनाना नवाजुद्दीन साहब के लिए एक आसान काम नहीं था। लेकिन हार नहीं मानी दोस्तों उन्होंने। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक छोटे से कस्बे बुढ़ाना में वो जन्म उनका हुआ और वहां से होते हुए उन्होंने वडोदरा के रास्ते मुंबई का जो सफर है दोस्तों वो तय किया। अगर हम देखें तो मुंबई आने के बाद भी इतना आसान नहीं था उनके लिए। उन्होंने नौकरी छोड़ी और एनएसडी में एडमिशन लिया और उस समय इतना मुश्किल होता था खर्च चलाना कि

0: इन्हें एक वॉचमैन की नौकरी भी करनी पड़ी मुंबई में दोस्तों। सफर संघर्षमय था, कठिन था, लेकिन जब आपको अपनी मंजिल साफ दिखती है ना, तो जिंदगी में सब कुछ आप हल कर सकते हैं। आई थिंक वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी दोस्तों। और यहाँ पर हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी फील्ड में आप काम करना चाहते हो, आप जिंदगी में जो करना चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं, ज़रूरी है तो सबसे पहले विश्वास कि आप कर सकते हैं, और उसके बाद उसे पूरा करने के लिए पूरी शिद्दत से जुट जाइए। क्योंकि कहा है ना देवदास में कि अगर आप किसी भी चीज़ को चाहो शिद्दत से तो पूरी कायनात जो है वो जुट जाती है आपको उससे मिलाने में, और यही हमारी कोशिश भी होनी चाहिए। हम अब कोश आपको बता दें कि हमारे बॉलीवुड सरताज कौन है, हमने डायल इन करने की कोशिश की लेकिन आई थिंक ही और शी इज़ बिजी एट द मोमेंट, बट आई वेरी क्विकली गो थ्रू ऑल द ईमेल्स दैट आई हैव रिसीव्ड माय डियर फ्रेंड्स। थाईलैंड कोई मुझे कह रहा है, कोई मुझे गोवा कह रहा है, बट सही जवाब है फ्रांस। निधि प्रयागराज, इन्होंने हमें सही जवाब भेजा है। प्रबल दास गुप्ता जी हैं फ्रांस से, इन्होंने भी हमें सही जवाब भेजा है। कांस फ्रांस में होता है। सुधा दिल्ली से कह रही हैं बिल्कुल सही जवाब है इनका, फ्रांस जवाब दिया है। शैलेंद्र वर्मा साहब ने ये भी हमें दिल्ली से मैसेज लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच। प्रवीण चौहान जी खारगोन मध्य प्रदेश से इन्होंने हमें मैसेज लिखा है, तो थैंक यू वेरी मच आप सभी के सही जवाब के लिए दोस्तों। और अब समय है मुझे आपसे अभी के लिए बाय बाय कहने का, लेकिन आप बंदा जो आपकी खिदमत में हाजिर रहेगा दोस्तों। और अगर अपनी पसंद का कोई भी ट्रैक सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल मुझ तक पहुंचिए 9868107070 पर, लेकिन एक से दो के बीच, क्योंकि मैं लेके आऊँगा मेरा वाला सॉन्ग जहां पर आपकी पसंद के ट्रैक्स हम बजाएंगे। बहरहाल आपके लिए जुबैन गर्ग साहब की आवाज़ में ये बेहतरीन ट्रैक सिर्फ और सिर्फ 102.6 MHz पर। बने रहिए, बैठे रहिए, टिके रहिए, चिपके रहिए और सुनते रहिए दिल से दिल तक। मुझे लगता है छोटा सा कमर्शियल ब्रेक तो यहाँ पर बनता है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: ये रोजगार मेला पूरे देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। पूरे देश से चुने गए ये नए उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। श्री चौधरी ने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। जालंधर स्थित प्रवर्तन निदेशालय ने इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग मिडिल सोसाइटी के सचिव अजय सहगल को फर्जी सहमति पत्र जमा करके धोखाधड़ी से भूमि उपयोग परिवर्तन प्राप्त करने से संबंधित धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया है। ये जांच पंजाब पुलिस ने किसानों की शिकायतों के आधार पर FIR दर्ज की थी। विभाग की जांच में पता चला कि आरोपियों ने 15 भूस्वामियों की 30.5 एकड़ भूमि के संबंध में फर्जी सहमति पत्र तैयार किए थे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित है। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज CNG की कीमत में 1 रुपये तक की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: Okay, even if someone is unsteady, there's no reason for that to worry because a little bit of being unsteady here and there, not being too all right all the time, being a little defocused, being a little also is part of life. And it's in those moments of being not feeling all that great, you need that pep up. And music can be a wonderful pep up, especially when it's heating up all around you. The weather's not really in sync with what you want it to be. That's one time that Akashvani Rainbow, in many other ways also, but especially during these times, comes to you, comes to your aid as your on-the-air pal. And we, together on the airwaves, play it cool, don't we? That's exactly what we're doing here on this edition. But before we continue doing that, maybe a little message, a little break, and then back to playing it cool.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला साझेदार बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बेंच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों में मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: दिल्ली एनसीआर की आबोहवा में तैरती धनी तरंगे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज और देश भर में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर आप हमें सुन रहे हैं। डीटीएच के माध्यम से भी हम आप तक पहुंचते हैं और साथ ही साथ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू कहीं भी कभी भी आप हमें सुन सकते हैं। घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में दोस्तों इस घड़ी वक्त हुआ है 1:05 यानी कि सरड़े दोपहर का वो समय जब हम आपसे मुखातिब होते हैं करने आप ही की बात सुनाने आप ही के गीत आप ही के अंदाज में आप ही की फरमाइश पर शो कॉल्ड मेरा वाला सॉन्ग से। जी हाँ दोस्तों मैं हूँ आपके साथ आपका मित्र आपका बंधु आपका सखा आपका दोस्त बोले तो दिल्ली दसौड़ा रंगला मुंडा अजय गोपाल जी लेकर आपके लिए मेरा वाला सॉन्ग जहां पर आपकी फरमाइश के गीत एकदम लाइव मैं बजाने वाला हूं। एक बार फिर से आप सभी को प्रणाम नमस्कार सत श्री अकाल अ गुड आफ्टरनून शुभ अपराह्न वेलकम एंड सो ऑन आई मीन टू से ग्रीटिंग्स ऑफ द डे और तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यही मस्त नगमे सुनाता रहूं 2 बजे तक ये मस्त नगमे आप तक पहुंचते रहेंगे आप ही की फरमाइश पर और आपकी फरमाइश मुझ तक ऐसे पहुंचेगी बहुत ही आसान है। बहुत सारे लोग जानते हैं इसलिए ऑलरेडी मैसेजेस आना शुरू हो चुके लेकिन अगर आप नहीं जानते तो भी मैं आपको बता दूँ व्हाट्सएप नंबर है मेरा पर्सनल शेयर कर रहा हूँ आपके साथ 9868107070 और ये पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पूरा पर्सनल रहेगा मेरे साथ 1 से लेकर 2 बजे तक दोस्तों। और आप अपनी रिक्वेस्ट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप है वो इस समय खुला हुआ है और मैं आपके मैसेजेस का इंतज़ार कर रहा हूँ। और अगर आपने आज तक कभी भी रेडियो पर ट्राई नहीं किया तो रेडियो करोमियो करता है वादा जितना सोचोगे मुझको उससे पाओगे ज़्यादा 102.6 पर शुरुआत करते हैं नॉडी 90s के इस बेहतरीन ट्रैक से आपके लिए तुम बिन ये फिल्म दोस्तों। और इसके साथ साथ रिक्वेस्ट वही कि अगर आपने आज तक कभी भी रेडियो पर ट्राई नहीं किया तो आज ट्राई कीजिए 9868107070 सुन रहिए सुनाते रहिए स्टेशन ऑफ द नेशन बजाते रहिए। और जहाँ तक बात जिस ट्रैक की मैं कर रहा हूँ दोस्तों आई पर्सनली लव दिस सॉन्ग बिकॉज इतना खूबसूरत ये गीत और ना सिर्फ गीत पूरी की पूरी मूवी अगर हम कहें दोस्तों तो एक अलग ही अंदाज इस फिल्म का था। प्रियांशु चटर्जी स्पेशली आई शुड मेंशन ओवर हियर हैड अ वंडरफुल परफॉर्मेंस एंड अपीयरेंस इन दिस मूवी।

102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में दूसरे से घड़ी वक्त हुआ 1:12 यानी कि सरडे दोपहर की हम बात करें तो 1:15 होने को है और आपकी जो रिक्वेस्ट है वो हमारे पास पहुंचना शुरू हो चुकी है। वो मेरे मैसेज जो शो शुरू होने से पहले मेरे पास आना शुरू हो चुके थे इनफैक्ट, लेकिन स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन मैसेज से जो हमारे पास आया है ईशा का पुणे से, और ये कह रही है कि ये अभी फ़िलहाल ट्रैवल कर रही है अलीबाग की तरफ और ट्रैफिक को एंजॉय कर रहे हैं हमारे शो के साथ और सुनना चाहती है सिर्फ तुम का गाना। सिर्फ तुम की बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे पास और भी पहुंची है दोस्तों, तो आई जस्ट वुड लाइक टू सी इफ आई कैन हैव सम मोर रिक्वेस्ट ताकि मैं इस ट्रैक को बहुत ही कॉन्फिडेंटली बजा सकूँ। हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रैक्स बजाएं दोस्तों जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनना चाहते हैं। मे बी यू नो इट्स कमिंग फ्रॉम वन और टू पीपल बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ चॉइस ऑफ द मासेस। ये वाला जो हमारे पास मैसेज है ये राधेश्याम जी का है कासगंज से। भगवती जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हैं। सुनीता शर्मा हमारे साथ शालीमार बाग से इस समय कनेक्टेड है और ये वाला जो मैसेज हमारे पास आया है कैन यू प्लेज अ सॉन्ग छल ऑफ गुरदास मान। अभिषेक हमें मैसेज लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग दिस मैसेज सर, लेकिन आई एम रियली सॉरी आई एम नॉट हैविंग दिस ट्रैक एट दिस मोमेंट। मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कंप्यूटर को खंगालने की, लेकिन अगर आपकी कोई और रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे ज़रूर भेजिएगा। अजय राजपूत साहब मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं और ये सुनना चाहते हैं कुछ कुछ होता है फिल्म का ट्रैक, तो चलिए देखते हैं। अगर कुछ और लोग मुझे मैसेजेस भेजते हैं इस ट्रैक को सुनना चाहते हैं तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि ये ट्रैक मैं बजाऊं सर। और ये किशोर कुमार साहब हमारे साथ लखनऊ से हैं, पुष्पेंद्र कुमार राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हुए, साथ ही साथ कंचन हमारे साथ सोनिया विहार दिल्ली से दोस्तों जुड़ी हैं और ये कच्चे धागे का ट्रैक सुनना चाहती है। वंस अगेन मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग नॉडी 90s की दुनिया से बाहर निकल के नहीं आ पाए बिकॉज उस दौर की म्यूजिक का हमेशा मुझे ऐसा लगता है अपना एक अलग चार्म था। तो चलिए यहाँ पर मुझे कुछ और मैसेजेस नज़र आए हैं जो कह रहे हैं कि भाई ये जो ट्रैक है तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे जब तक

मोहब्बत करेंगे। इसके बाद जो ट्रैक अब बजना चाहिए, जिसकी चाहत लोगों को हो रही है, वो है सिर्फ तुम का ये ट्रैक कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। और इसी के साथ मैं उन सभी फैंस की रिक्वेस्ट भी एंटरटेन यहाँ पर कर रहा हूँ जो कुमार सानू साहब की आवाज़ में कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये ट्रैक आप सभी के लिए। मेरा वाला सॉन्ग सुन रहे हैं आप, दिल्ली दसौड़ा रंगीला मुंडा अजय गोपाल आपके साथ इस समय एकदम लाइव है। और अगर आप कोई भी गाना आपकी पसंद का सुनना चाहते हैं तो मैं सिर्फ एक व्हाट्सएप दूर हूँ, मेरा नंबर है 9868107070, बोले तो 9868107070। वंस अगेन एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक विद अ गुड आफ्टरनून मैसेज। हैव अ वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल टाइम विद अस।

102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमारे साथ सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग, जहां पर आप ही की पसंद के ट्रैक्स हम बजा रहे हैं एकदम लाइव। इस समय स्टूडियो में मैं हूं आपके साथ, आपका मित्र, आपका बंधु, आपका दोस्त, जिसे सारा का सारा शहर रेडियो केरोमियो के नाम से जानता है दोस्तों। और यहां पर बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास पहुँच रहे हैं। आरव सोनिया विहार से कॉन्टीन्यूसली रिक्वेस्टिंग कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ मेरा वाला सॉन्ग ज़रूर बजाइए। कच्चे धागे फिल्म का एक ट्रैक सुनना चाहते हैं। कच्चे धागे फिल्म से अगर आप भी कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। इफ़ आई रियली गेट रिक्वेस्ट जो मेरे पास रिपीटेटिव पहुँच रही है तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं उन्हें बजाऊँ। दोस्तों मुकेश पटना से हमें मैसेज लिख रहे हैं, किसी की मुस्कुराहटों पर गाना सुनना चाहते हैं मुकेश जी का। बहुत सारे पुराने गीतों की जो रिक्वेस्ट है वो भी मेरे पास पहुँच रही है। और दोस्तों इन्हीं में एक रिक्वेस्ट हमारे पास पहुंची है अब्बासी परिवार के दोस्तों, और ये सुनना चाहते हैं धुरंधर मूवी का गाना। प्रबलीन कौर और बबली हरिद्वार से जुड़े हैं और ये भी धुरंधर फिल्म का कोई गाना हमारे साथ सुनना चाहते हैं। कच्चे धागे की एक रिक्वेस्ट और मेरे पास पहुंची है पूनम दिल्ली से, ये रिक्वेस्ट आई है दोस्तों। राजा बाबू का गाना सुनना चाहते हैं बहुत सारे लोग, और मैं प्रेम की दीवानी हूँ ये रिक्वेस्ट हमारे पास उदित ने भेजी है दिल्ली से। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे पास है दोस्तों, मैंने आपको कुछ रिक्वेस्ट यहाँ पर बताई। कुछ कुछ होता है, फिल्म का कोई ट्रैक आप सुनना चाहते हैं, धुरंधर मूवी का कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं, या फिर कच्चे धागे फिल्म का कोई ट्रैक आप सुनना चाहते हैं, मुझे बताइए। मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूं क्योंकि मैं जा रहा हूं एक बहुत ही छोटे से कमर्शियल ब्रेक पर। जी हाँ, सिर्फ 1 मिनट 10 सेकंड्स, बोले तो 70 सेकंड्स का एक छोटा सा ब्रेक मैं यहां पे ले रहा हूं, और ये 70 सेकंड्स मैं आपको दे रहा हूं ये चूज करने के लिए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, धुरंधर, कच्चे धागे, या फिर कुछ कुछ होता है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य

0: सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं हमारे साथ मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ दल्ले दा सोना रंगीला मुंडा अजय गोपाल जी। घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में इस घड़ी वक्त हुआ है 1:25 यानी कि सरल दोपहर की आपकी हमारी भाषा में 1:30 को है। लगभग आधा सफ़र हम तय कर चुके हैं और सफ़र अभी भी बहुत बाकी है। बहुत सारे रिक्वेस्ट मेरे पास पहुँच रहे हैं। धुरंधर फिल्म का ट्रैक सुनना चाहती हैं मीरा, जिन्होंने हमें सिलचर आसाम से मैसेज लिखा है। इसके साथ साथ ये मैसेज हमारे पास आया है रामशरण जी का, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी का, और ये कुछ कुछ होता है जो है वो सुनना चाहते हैं। इसके साथ साथ ये मैसेज हमारे पास धुरंधर का रिक्वेस्ट हमारे पास पहुंची है। इसके साथ साथ रंजीत मस्ताना है, कुछ कुछ होता है इससे सुनना चाहते हैं, पहली बार ट्राई कर रहे हैं, और ये ट्राई कर रहे हैं दिनेश कारना जी, कह रहे हैं कि चलिए इस मैसेज को मैं बहुत आराम से पढ़ूंगा। मीर सेठी हैं मलेशिया से, इन्होंने मैसेज लिखा है। तो चलिए ज़रूर इस कोशिश करेंगे हम इस रिक्वेस्ट को प्ले करने के लिए। लेकिन बहरहाल मैं यहाँ पर आपके लिए कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक बजाने की कोशिश कर रहा हूँ। धुरंधर फिल्म का ट्रैक बजाऊंगा, साथ ही साथ एक ओल्डन गोल्डन ट्रैक भी ये है नदीम चौहान साहब, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। क्योंकि जब आप धुरंधर मूवी के म्यूजिक को देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि जो 90s का म्यूजिक है और 90s से पहले आई शुड से लेट 80s का और अर्ली 90s का जो म्यूजिक है वो पूरी तरह से भर भर के उस मूवी में दिया गया है। और इसीलिए एक ही साथ बहुत सारे रिक्वेस्ट मैं यहाँ पर एंटरटेन कर पा रहा हूँ। तो लेट 80s अर्ली 90s का म्यूजिक अगर आप सुनना चाहते हैं तो यहाँ पर वो म्यूजिक आपके लिए निकल चुका है। धुरंधर फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए निकल चुका है, और कविता जी की आवाज़ में अगर ट्रैक सुनना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए निकल चुका है, सिर्फ और सिर्फ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

102.6 मेगाहर्ट्ज़ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन। मैं हूं आपके साथ आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सगा बोले तो दिल्ली दसाना रंगीला मुंडा अजय गोपाल जी आपके साथ एकदम लाइव इस समय जुड़ा हुआ हूं और आपकी पसंद के ट्रैक्स बजा रहा हूं। यही मेरा काम है इस घंटे के दौरान। एक से दो के बीच तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं। जय कीर्ति रावत जी हैं, दिल्ली से हैं लेकिन बहरहाल धुबरी असम में हैं और कह रहे हैं कि भाई मैं यहाँ हूँ, वाइफ जो है वो दिल्ली में है, छुट्टी का दिन है, कुछ बेहतरीन ट्रैक सुनाइए। और कुछ गानों की लिस्ट उन्होंने हमें दी है, उन्हीं में से एक ट्रैक दोस्तों कुछ कुछ होता है। बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे पास इस ट्रैक्स की पहुँच रही है, तो अगर आप सुनना चाहते हैं कुछ कुछ होता है का टाइटल ट्रैक तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। साथ ही साथ ये एक मैसेज मैं यहाँ पर ज़रूर शामिल करना चाहूँगा। ये मैसेज दोस्तों हमारे पास पहुँचा है त्रिची से, तमिलनाडु से, और ये कह रहे हैं कि मैं ऐप पर इस ट्रैक को सुन रहा हूँ। मैंने प्यार क्या का ये ट्रैक सुनना चाहते हैं। आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल बी एबल टू प्ले दिस ट्रैक इन दिस शो और नॉट, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट हमारे पास ऑलरेडी लाइंड अप है इस समय, और फिर भी मैं कोशिश करूँगा। शिप्रा गर्ग के लिए गाना सुनना चाहते हैं मिहिर साहब, मलेशिया से इन्होंने हमें ये मैसेज लिखा है, थैंक यू सो मच। और इन्होंने हमें रिक्वेस्ट भेजी है गुनाह फिल्म के ट्रैक की, हमने तुमको दिल ये दे दिया ये भी ना पूछा कौन हो तुम। तो चलिए यहाँ पर मैं एक चॉइस आपके लिए समर्पित करता हूँ दोस्तों, दो ट्रैक्स, जिन इन दो ट्रैक्स में से जो ट्रैक आप सुनना चाहते हैं वो मुझे बताइए। कुछ कुछ होता है का टाइटल ट्रैक आप सुनना चाहेंगे या फिर हमने तुमको दिल ये दे दिया ये भी ना पूछा कौन हो तुम, मुझे बताइए। 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं आपके साथ एकदम लाइव इस समय जुड़ा हुआ। एक बहुत ही छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लूँगा यहाँ पर, लगभग एक मिनट 20 सेकेंड्स का, और यहाँ पर इस छोटे से ब्रेक के बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा गाना हम बजाएंगे आप सबकी फरमाइश पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: बिल्कुल जी, और साथ ही साथ अब मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया यहाँ पर चूज करना कि कौन सा गाना बजाया जाए। कुछ कुछ होता है का टाइटल ट्रैक जो कि अलका जी की आवाज में है उदित जी के साथ, या फिर हमने तुमको दिल ये दे दिया, अगेन द सिंगर्स आर सेम लेकिन फिल्म अलग है और किरदार भी यहाँ पर अलग है। और चलिए मैं वापस अपने कंप्यूटर स्क्रीन को थोड़ा सा खंगालता हूँ और देखता हूँ कि कहाँ पर आकर मेरी जो सुई है वो अटकती है। दोस्तों कुछ कुछ होता है का ट्रैक सुनना चाहते हैं। उत्तम नगर से बोधराज जी हैं, कमला और भानु प्रकाश, दोनों ही सॉन्ग अच्छे हैं। हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये डॉली हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हैं। हमने तुमको दिल ये दे दिया, शालू शादीपुर से जुड़ी है हमारे साथ, ये सुनना चाहती हैं। गुनाह मूवी का ट्रैक हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये ट्रैक सुनना चाहते हैं नरेंद्र सोनी जी पटियाला से। तो कुल मिलाकर जिस तरह से मैंने स्क्रॉल किया माउस को और मैसेजेस खंगालना शुरू किए तो समझ में आया कि हमने तुमको दिल ये दे दिया इज़ द चॉइस ऑफ द मोमेंट। तो चलिए निकलते हैं और सुनते हैं आपके साथ ये वाला गाना सिर्फ और सिर्फ 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ कुछ होता है स्टिल इन रेस, अगर आप सुनना चाहते हो वो ट्रैक तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए 9868107070 पर, बोले तो 9868107070। मैं आपके व्हाट्सएप का इंतज़ार कर रहा हूँ।

मनोहर लाल गांधी जी गाजियाबाद से इस फेहरिस्त में जुड़ गए हैं, जो कि ये ट्रैक सुनना चाहते हैं। इसके साथ साथ मुकेश पटना से हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी ये ट्रैक सुनना चाहते हैं। राजेश हमारे साथ जुड़े हैं बालाघाट से, वो भी इस ट्रैक को सुनना चाहते हैं। और ये लास्ट रिक्वेस्ट मास्टर राधेश्याम जी की कासगंज से, इन्होंने भी रिक्वेस्ट इसी ट्रैक की है।

102.6 मेगाहर्ट्ज़ ये मैजिकल फ्रिक्वेंसी जहां पर हम आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं और आप ही की पसंद के गीत बजा रहे हैं, आप ही की पसंद के ट्रैक्स बजा रहे हैं एकदम लाइव अंदाज में, सिर्फ और सिर्फ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आपको मिलता है नॉनस्टॉप अंदाज में बेहतरीन म्यूज़िक दोस्तों, जहां पर कमर्शियल ब्रेक्स बहुत ही कम होते हैं और जहां होते हैं वहां इतने छोटे कि आपको पता भी नहीं लगता। जी हां, अभी मैं लूँगा एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक सिर्फ और सिर्फ 55 सेकेंड्स का, इट मीन्स लेस देन अ मिनट में वापस आऊँगा मैं। लेकिन उससे पहले कुछ और ट्रैक्स यहाँ पर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हम आपके लिए बजाएंगे दोस्तों। JK रावत साहब है भाई साहब, एक चीज़ आई मस्ट एडमिट कि आपकी जो सॉन्ग्स की चॉइस है ना वो वंडरफुल है। उन्होंने बहुत सारे गाने हमको लिखकर भेजे और कहा कि भाई कोई भी एक गाना इनमें से बजा दीजिए। मदहोश दिल की धड़कन, आवाज़ दो हमको हम खो गए, मेरी सांसों में बसा है तेरा एक नाम, बॉम्बे फिल्म के ट्रैक्स, जिया जले जा जले रोज़ा एंड व्हाट नॉट, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के, कसम से पूरा का पूरा एक शो तैयार हो सकता है। रावत साहब थैंक यू सो मच दाजी इतने सारे मैसेजेस यहाँ पर भेजने के लिए, और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि इन सब में से एक ट्रैक मैं ज़रूर बजाऊँ यहाँ पर। एंड आई एम शॉर्टलिस्टिंग दिस ट्रैक, मेरी सांसों में बसा है सपने फिल्म का गाना, मेरे यार हम सफर सुबह शाम। अगर हमारे और भी लिसनर्स इस ट्रैक को सुनना चाहते तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए। साजन हमारे साथ, मुकेश हमारे साथ पटना से हैं, इसके साथ साथ सिलचर आसाम से मीरा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, शाहजहाँ हैं और इरशाद हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से, बलराम से हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। राजेश भल्ला जी हमारे साथ हमेशा की तरह मेरठ से जुड़े हुए हैं, थैंक यू वेरी मच, और भी बहुत सारे लिसनर्स। तो मैं यहाँ पर एक बहुत ही छोटे से

ब्रेक के लिए जा रहा हूँ और उसके बाद वापस लौटता हूँ अलीपुर दिल्ली से। हमें मोनू भी हमारे साथ जुड़े हैं, मन फिल्म का ट्रैक सुनना चाहते हैं। आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल बी एबल टू प्ले दिस ट्रैक टुडे पराशर जी, लेकिन ज़रूर कोशिश करूँगा अगर मेरे पास समय बचता है और सिमिलर रिक्वेस्ट मेरे पास आती है तो मैं इस ट्रैक को भी प्ले कर सकूँ। हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि, क्या बात है, घर में इतनी सारी मणि है वर्मा परिवार है ये, और ये हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ा है। थैंक यू सो सो सो वेरी मच माई डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा कमर्शियल ब्रेक आपको मैं छोड़े जा रहा हूँ इस चॉइस के साथ कि आप सुनना चाहते हैं मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, या जो कि फिल्म सपने से है, या फिर कुछ कुछ होता है का टाइटल ट्रैक। मुझे बताइए, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ 55 सेकंड्स के एक बहुत ही छोटे से ब्रेक पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये अलीगढ़ से हमारे पास मैसेज पहुंचा है। वरुण भाई का एकदम ताज़ा मैसेज है। इसके साथ साथ ये मैसेज हमारे पास आया है टिंकू जी का, और ये मैसेज इन्होंने हमें लखनऊ से दोस्तों भेजा है। मनमोहन सिंह साहब है और ये भी एक लंबी सी लिस्ट मेरे को भेज रहे हैं कि इनमें से कोई भी गाना आप चला दीजिए। यू नो, इससे मेरा काम और मुश्किल हो जाता है, ट्रस्ट मी। माई फेवरेट 90s के सॉन्ग्स, अयान कह रहे हैं ये। अयान प्लीज़ मुझे बताइए आप ये मैसेज मुझे कहाँ से लिख के भेज रहे हैं। थैंक यू सो मच अप्रिशिएट करने के लिए। साथ ही साथ मीरा थैंक यू बोल रही है रावत जी को कि भैया इतनी बढ़िया पसंद आपकी है कि गोपाली नहीं मुझे भी पसंद आई है, तो क्या बात। और ये वाला मैसेज मेरे पास आया है किशन जी का, साथ ही साथ नीलम और स्वाति जो कि हमें आनंद विहार से मैसेज लिख रहे हैं। और अब जो रावत जी की लिस्ट है ना, उस लिस्ट में से मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आने लगी है, एंड इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू प्ले ऑल द ट्रैक्स। लेकिन हाँ, आप सभी की रिक्वेस्ट पे ये वाला गाना मैं ज़रूर यहाँ पर बजा रहा हूँ। मेरी सांसों में बसा है सपने फिल्म से ये ट्रैक, हरिहरन साहब का म्यूज़िक, उनकी आवाज़ अलग ही एक खुमार है दोस्तों 90s के उन ट्रैक्स में। और बहुत सारे लोग मुझे 90s के ट्रैक्स की रिक्वेस्ट बार बार कर रहे हैं। आई एम श्योर यू विल लव इट। टेक इट अवे।

102.6 मेगाहर्ट्ज़ वो मैजिकल फ्रीक्वेंसी जहां पर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एकदम लाइव लेकर आप ही की पसंद के ट्रैक्स आपकी एक रिक्वेस्ट पर। 9868107070 ये नंबर फ्यूचर के लिए याद रखिए, क्योंकि अब हम वक्त के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां पर इस कार्यक्रम से हमें अनुमति लेनी होगी, लेकिन एक ट्रैक की जगह अभी भी बाकी है जो हम जरूर बजाएंगे आपके लिए, और साथ ही साथ थैंक यू बोलना चाहेंगे उन सभी को जिन्होंने हमें मैसेजेस भेजे हैं। दोस्तों इरशाद, बहाना, मरियम, ये हमें मदनपुर खादर दिल्ली से मैसेज भेज रही हैं। मीरा हमें आसाम से मैसेज भेज रहे हैं कि ये गाना मेरी सांसों में बसा है, इतना प्यारा है कि आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस ट्रैक टू रेनबो, क्योंकि ये हमारी सांसों में बसा हुआ है। थैंक यू भाई बोल रहे हैं, और ये हमारे साथ रावत जी, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि गानों की लिस्ट बहुत है, तो चलिए आप हमें बताते रहिएगा, हम रोज एक से दो के बीच में यहाँ पर होते हैं रावत जी, और अपने सभी दोस्तों को भी बताइए। आई रियली रियली अप्रिशिएट, रियली थैंक यू कि आप हमारे साथ जुड़े एज ए न्यू लिस्नर। साथ ही साथ बसंत कुमार

ठाकुर जी हैं, पप्पू जी हैं हमारे साथ भिरई से, इन्होंने हमें मैसेज लिखा है, डॉली को ये ट्रैक बहुत पसंद आया। साथ ही साथ कविता उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ी हैं, जयराम जी, अमन, दीपांशु, सचिन ये हमारे साथ उत्तम नगर दिल्ली से दोस्तों जुड़े हैं, वरुण वार्ष्णेय हमारे साथ अलीगढ़ से दोस्तों जुड़े, और बहुत सारे लिसनर्स जिनके मैं मैसेजेस शामिल नहीं कर पाया उन सब से मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कोशिश पूरी पूरी पूरी दोस्तों हमने यहाँ पर की। अब फिलहाल मैं आपसे अनुमति लूँगा इस बेहतरीन ट्रैक के साथ जो कह रहा है, आवाज़ दो हमको खम आ गए, फ्रॉम द फिल्म दुश्मन, लता दी उदित नारायण की आवाज़ में ट्रैक आप सभी के लिए छोड़े जा रहा हूँ आपको इस बेहतरीन ट्रैक के साथ, रेनबो की सतरंगी दुनिया में कुछ और सतरंगी सपनों को बुनता हुआ फिर मिलूँगा मैं आपसे, तब तक के लिए बस यूँ ही चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए और दिल में हिंदुस्तान बनाए रखिए। शुभ दिवस, नमस्कार, जय हिंद।

आयुष्मान वामिका, रकुल प्रीत सिंह, सारा पे पिक्चराइज इस एनर्जेटिक ट्रैक में नॉस्टैल्जिक बॉलीवुड फ्लेवर को मॉडर्न पंजाबी बीट के साथ मिक्स किया गया है। गुरु रंधावा के कैची वोकल्स, अनिश बागचाई का अपबीट कॉम्पोजिशन इसे इंस्टेंटली पार्टी वाइब क्रिएट करता है ना। हेलो एंड नमस्ते इंडिया। इस खुले आसमां तले जमी के आगोश में, इस खुले आसमां तले जमी के आगोश में है छोटा सा जहां मेरा, मैं कहती हूँ जिसको अपना आशियाना, किया इकट्ठा इसे चुन चुन कर तिनके, है तमन्ना की हर शाख पे इसके फूल महके, और आए कभी ना इस पे खिजा, मैं कहती हूँ जिसको अपना आशियाना। आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम शुरू हो चुका है आशियाना, और आज के एडिशन में हम क्या बात करेंगे। हम जो बात करेंगे वो आप प्रोग्राम में सुनेंगे। जी हाँ, आशियाना में बात अपने ही घर के खोए हुए सुकून की होती है। दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ। गुड आफ्टरनून।

देखो तो ये शहर बड़ा पुराना है। अब जो मैंने लिखा है वो जरा आप गौर फरमाइए। हर सांस में छुपी यादों का एक खामोश अफसाना है। यहाँ वक्त भी धीरे से तन्हा राहों पे चलता है और हर धड़कन को किसी अधूरे एहसास का ठिकाना है। इस दिल में बस कर देखो तो। वैसे ये गाना जो है इंट्रोस्पेक्टिव मूड है ना इस गाने का, लाइक ये एक शहर की बात नहीं करता है, ये एक इंसान के अंदर के तन्हा सफ़र को भी रिफ्लेक्ट करता है। इस गाने को अगर आप बड़े ध्यान से सुनेंगे तो इस गाने की जो इसमें जो एक कशिश है ना वो आप समझ पाएंगे। चलिए प्रोग्राम आशियाना को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात कर रहे हैं अनकहे एहसासों की हकीकत के बारे में। अनकहे एहसास ही घर की रोशनी बन जाते हैं दोस्तों, अनकहे एहसास ही घर की रोशनी बन जाते हैं। खामोश जेस्चर्स भी दिल को सुकून दे जाते हैं। घर की दीवारों में जब अपनापन झलकता हो वही आशियाना दिल को जीने की वजह दे जाते हैं। हर घर सिर्फ ईंट और दीवारों से नहीं बनता, उसकी असली रोशनी उन छोटे छोटे एहसासों से आती जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चुपके से प्यार और अपनापन महसूस कराते हैं। इसलिए ज़िंदगी की असली वॉर्म्थ हमेशा बड़े मोमेंट्स में नहीं होती दोस्तों, बल्कि उन छोटे छोटे एहसासों में छुपी होती है जो दिल को बिना शोर के सुकून दे जाते हैं। कभी किसी का पूछ लेना घर पहुँच गए, थक जाने पर पानी का गिलास ला देना, या बिना वजह एक सॉफ्ट सी स्माइल दे देना, या फिर किसी का बिना वजह ध्यान रखो अपना कह देना, या बिना कहे पास बैठ जाना। ये छोटे छोटे जेस्चर जी तो शायद नॉर्मल लगते हैं लेकिन दिल पर इनका इतना इफेक्ट होता है, इतना गहरा असर होता है। इनफैक्ट ये वो काम करते हैं जो दिल को कम्फर्ट दे जाते हैं, जो कहीं बार बड़े बड़े लव्स नहीं दे जा पाते बंधु। इनफैक्ट साइंस भी मानता है कि ह्यूमन ब्रेन इमोशनल कनेक्शन और केयर को डीपली फील करता है। जब कोई अपना हमें इम्पोर्टेंस देता है तो बॉडी में स्ट्रेस कम होता है और इमोशनल सिक्योरिटी फील होने लगती है। इसलिए घर का असली सुकून सिर्फ दीवारों से नहीं बल्कि उन लोगों से बनता है जो छोटी छोटी बातों में अपनापन जताते हैं। आशियाना सिर्फ एक फिजिकल प्लेस नहीं होता, यहाँ ये एक इमोशनल इन्वायरमेंट होता है जहाँ छोटे छोटे जेस्चर्स दिल को और दिमाग को दोनों को ये फील कराते हैं कि तुम सेफ हो, इम्पॉर्टेंट हो और अकेले नहीं हो। और शायद इसी को कहते हैं छोटे एहसासों की अनकही हकीकत। जी हाँ, फिलहाल अभी ये जो गाना है ना ये थोड़ा सा शायद आप लोगों ने कम सुना। यूं होता तो क्या होता। मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ।

यू होता तो क्या होता। वेल गाइस, ये सिर्फ एक सॉन्ग नहीं है बल्कि उन अनकही सोच और अधूरे सवालों का म्यूजिकल रिफ्लेक्शन लगता है जो अक्सर दिल के किसी कोने में छुप जाते हैं। इस ट्रैक का जो सॉफ्ट एंड सोलफुल म्यूजिक है ना, वो सुनने वाले के को धीरे धीरे एक इंट्रोस्पेक्टिव जर्नी पे ले जाता है जहाँ हर नोट एक याद और हर लिरिक एक एहसास बनकर उभरता है। मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ और आज हम आशियाना में बात कर रहे हैं अनकहे एहसासों की हकीकत के बारे में। जरा गौर से सुनिएगा प्रोग्राम को।

वेल चलिए सॉफ्ट रोमांटिक ट्रैक के बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. टेक केयर. वैसे दोस्तों ये जो दो लव्स भी कमाल कर जाते हैं, छोटे छोटे एहसासों को दिल को हील कर जाते हैं. जहाँ ख्याल रखना आदत बन जाए रोज़ की, वहाँ रिश्ते धीरे धीरे सुकून बन जाते हैं. हम अक्सर सोचते हैं कि प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए बड़े वर्ड्स, ग्रैंड जेस्चर्स या स्पेशल ओकेजन ज़रूरी होते हैं, पर दोस्तों कभी कभी प्यार उन छोटी छोटी बातों में छुपा होता है जो हम रोज़ महसूस करते हैं पर शायद नोटिस नहीं करते. हर रिश्ता आई लव यू कहने से नहीं गहरा होता. किसी के बिना कहे पानी रख देना, घर लेट आने पर वेट करना, या सिर्फ ये पूछ लेना कि खाना खा लिया है, या फिर एक सिंपल सा मैसेज घर पहुँच कर बता देना. थक जाने पर बिना कहे चाय या कॉफ़ी दे देना, या फिर किसी का ये नोटिस कर लेना कि आज आप थोड़े उदास लग रहे हैं. ये सब ऑर्डिनरी जेस्चर्स लग सकते हैं, लेकिन इनमें एक साइलेंट वार्म्थ होती है, एक ऐसा अपनापन जो डायरेक्टली दिल तक पहुंचता है. और बंधुओं, इनका इमोशनल इम्पैक्ट सच में बहुत गहरा होता है. एक बात तो है, हर रिश्ता अपनी एक साइलेंट लैंग्वेज क्रिएट करता है. कुछ लोग इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते उनके, लेकिन उनकी केयर उनकी आदतों में नज़र आती है. जब हमें फील होता है ना कि कोई हमारी केयर करता है, हमारी प्रेजेंस को वैल्यू करता है, तो ब्रेन का नर्वस सिस्टम रिलैक्स होने लगता है और इस प्रोसेस में ऑक्सीटोसिन जैसे बॉन्डिंग हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं जो ट्रस्ट, कम्फर्ट और बिलोंगिंग को फीलिंग है वो क्रिएट करते हैं. इसलिए छोटी छोटी बातें भी दिल को इतना डीपली टच कर जाती है. एक जेन्युइनली स्माइल कोई कर दे, या फिर सॉफ्टली कह दे ना कि टेक केयर, या फिर स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में सिर्फ पास बैठ जाए, ये जेस्चर्स ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि यू आर सेफ, यू आर केयर्ड फॉर. और साइंटिफिकली इमोशनल सेफ्टी ही हेल्दी रिलेशनशिप्स की स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन बन जाती है. और मित्रों, आज की फास्ट लाइफ में हम बड़े सरप्राइजेज और ग्रैंड एक्सप्रेशंस को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, लेकिन सच ये है कि रिश्तों को जिंदा रोज़ के छोटे छोटे एहसास ही रखते हैं, क्योंकि मोहब्बत अक्सर शोर नहीं करती, वो क्वाइटली हमारी आदतों में, रूटीन्स में और केयर में बसी होती है. और शायद इसलिए घर सिर्फ दीवारों से नहीं बल्कि उन छोटी फिक्रों से आशियाना बनता है जो हमें हर रोज़ महसूस होता है. फिलहाल ये गाना आपके लिए प्ले होता है.

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आकाशवाणी रीन पर प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, और आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों अनकहे एहसासों की हकीकत के बारे में। मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ, और फिलहाल रूप कुमार राठौड़ हैं आपके साथ।

रूप कुमार राठौर की सोलफुल वॉइस में ये गाना सुना, पिक्चराइज्ड ऑन यस ताबू। ले चले डोलियों में तुम्हें इस तरह, ले चले डोलियों में तुम्हें इस तरह, जैसे ख्वाब उतरते हैं खामोशियों में कहीं, हर सुर में बसी हो एक चाहत की रोशनी और हर एहसास महके दिल की वादियों में कहीं। आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। बड़े सुकून अक्सर छोटी छोटी बातों में ही मिल जाते हैं बंधु, बड़े सुकून अक्सर छोटी छोटी बातों में ही मिल जाते हैं, कुछ अपने बिना कहे दिल संभाल जाते हैं, छोटे छोटे एहसास कुछ यूं दिल को हील कर देते हैं कि थके हुए लम्हे भी फिर से जीना सिखा जाते हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी में सुकून ढूंढता है, वो गाना है ना, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, जी हाँ सुकून ढूंढता है, कभी सक्सेस में ढूंढता है, कभी पैसों में ढूंढता है और कभी कभी बड़े अचीवमेंट्स में ढूंढता है, लेकिन सच ये है कि दिल को जो असली सुकून मिलता है वो अक्सर उन छोटी छोटी बातों में छुपा होता है जिन्हें हम रोज़ देखकर भी इग्नोर कर देते हैं। इनफैक्ट दोस्तों कभी कभी ज़िंदगी बहुत थका देती है, इतना कि इंसान को बड़े सॉल्यूशंस नहीं तब बस किसी अपने की छोटी सी वॉर्मथ चाहिए होती है, कोई कह दे कि भाई तू अपना ध्यान रखना, बिना कहे चाय बना देना, या फिर ये पूछ लेना कि तुम ठीक तो हो, तुम्हारा चेहरा बता रहा कि कुछ तो गड़बड़ है। ये छोटे छोटे एहसास दिल को अंदर तक शांत कर देते हैं, शायद इसलिए छोटी छोटी बातें इतना सुकून दे देती हैं, और शायद कभी छोटी छोटी बातें दिल को लग भी जाती है ना, क्योंकि उनमें खैर अगर हम बात करें सुकून दे जाती है तो उनमें कहीं पर हम देखते हैं कि फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, वो सिर्फ सच्चा एहसास होता है, किसी ने दिल से पूछा होता है। दोस्तों छोटी छोटी बातें हमें ये फील कराती हैं कि कोई हमें समझता है, नोटिस करता है, हमारी प्रेजेंस की वैल्यू करता है, जब कोई हमारी छोटी ज़रूरतें या हमारे मूड्स को बिना कहे समझ लेता है तो दिल का एक इमोशनल जो एक इमोशनल सेफ्टी उससे मिल जाती है, वही सेफ्टी सुकून बन जाती है। और आज की फास्ट लाइफ में अक्सर लोग समझते हैं कि हैप्पीनेस किसी बड़े माइलस्टोन की बाद ही मिलेगी, बड़े मोमेंट्स के बाद के पीछे पीछे भागते भागते छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना भूल गए हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारी इमोशनल एनर्जी उन छोटे छोटे मोमेंट से रिचार्ज होती है, हमें लगता है कि खुशियां किसी स्पेशल डे या अचीवमेंट में मिलेगी, लेकिन असल में जिंदगी की वॉर्म तो रोज के स्पेशल सिंपल मोमेंट्स में होती है, सुबह का प्यारा सा मैसेज घर लौटकर पर किसी का पूछ लेना कि

कैसा था, या फिर बिना कहे मैंने पहले भी कहा कि वो पानी का ग्लास रख दे, घर लौटने पर किसी का दरवाज़ा खोल देना, फेवरेट चीज़ें याद रखना, या थोड़ी देर साथ बैठ जाना, या फिर आपके फेवरेट कलर को ध्यान में रख कर कुछ डिज़ाइन, यू नो, कुछ आपके लिए कुछ कपड़े ले आना, ये सिर्फ इमोशंस को ही साइलेंटली हील करते हैं दोस्तों। बेसिकली दिल के अंदर एक साइलेंट कम्फर्ट भी क्रिएट करते हैं दोस्तों। ज़िंदगी रिलेशनशिप्स भी बड़े प्रॉमिसेस से नहीं बल्कि रोज़ के छोटे छोटे एहसासों से स्ट्रांग बनती है। जब घर में अप्रिसिएशन, सॉफ्टनेस और केयर की छोटी छोटी आदतें होती है ना, तब एक इमोशनल सेफ्टी डेवलप होती है, और वही सेफ्टी मकान को सिर्फ हाउस नहीं, मकान नहीं बल्कि आशियाना बनाती है। और देखिए ना, जैसे कि आपके मैसेजेस बीच बीच में आते रहते हैं, जैसे हमारे एक दोस्त हैं पंकज अमरावती, महाराष्ट्र से हमें लिखते हैं, वो प्रोग्राम के हर एक पैराग्राफ को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और बहुत ध्यान से हर एक पंक्ति के बारे में लिख रहे हैं। अब ये जो होता है, ये मैसेज कर रहे हैं और मैं उन्हें पढ़ रही हूँ, कहीं पर मैं अनाउंस नहीं कर पाती क्योंकि प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा होता है, लेकिन दिल को बहुत अच्छा लगता है। जैसे उन्होंने कहा कि उनका एहसास भी घर की रोशनी बन जाते हैं, बहुत बढ़िया पंक्तियाँ प्रियंका वर्मा मैडम जी, और कार्यक्रम आशियाना बहुत बढ़िया प्रस्तुति दिल, ज़िंदगी के अनकहे एहसासों की स्पेशल कार्यक्रम आपने हर एक प्रोग्राम में लिखा। और ऐसे ही डॉली ने हमें लिखा कि उन्होंने गाना जब पहला वाला सुना ना, काली तेरी चोटी, उसने कहा कि डॉली ने दिल्ली से कि उसका ओल्ड वर्जन बेस्ट है जी, ये तो है। और फिर भी लिखा, ये शहर बड़ा पुराना है, टचिंग सॉन्ग, आपने भी अच्छा लिखा है। तो ये जो छोटे छोटे मोमेंट्स, कहने को छोटे छोटे हैं लेकिन कि बहुत बड़ा लाइफ में इफेक्ट करते हैं। तो चलिए फिलहाल इस पंजाबी ट्रैक को सुनते हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

वेलकम बैक, आ गई हूँ मैं प्रियंका फिर से आपसे बातें करने के लिए। तो चलिए, आज जो मैं अभी बात करने वाली हूँ ना, उसे मैंने दो तरह से लिखा है, मैंने दोनों चाहा कि आपसे शेयर करूँ। दिल के जज्बात भी अपनी फ्रिक्वेंसी रखते हैं, दिल के जज्बात भी अपनी फ्रिक्वेंसी रखते हैं, खामोश एहसास भी डीपली कनेक्ट करते हैं। हर बार लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों, कभी साइलेंट साथ ही दिल को हील कर देते हैं। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, खामोश सा साथ भी कभी दुआ बन जाता है, खामोश सा साथ भी कभी दुआ बन जाता है, बिना कुछ कहे दिल का सहारा बन जाता है। जहाँ एहसास लफ्ज़ों से ज़्यादा महसूस होने लगे, वही आशियाना इंसान को सुकून बन जाता है। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल ज़रूर आते हैं जब दिल बहुत कुछ महसूस करता है पर लफ्ज़ साथ नहीं देते। अंदर एक अजीब सी थकान होती है, खामोश उदासी, जिसे समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बेसिकली हम कभी कभी इमोशनली इतने थक जाते हैं कि हम कुछ कह नहीं पाते हैं, बोलने का मन ही नहीं करता है। ऐसे वक्त में हमें बड़े सॉल्यूशंस तो बिल्कुल नहीं चाहिए होते हैं, बल्कि हमें बस कोई अपना चाहिए होता है जो बिना कुछ कहे हमारे पास बैठ जाए और हमारी फीलिंग्स को समझे। कई बार एक खामोश मौजूदगी ही दिल को वो सुकून दे देती है जो हज़ार तसल्लियाँ भी नहीं दे पाती हैं। जब कोई बिना कुछ कहे आपके पास बैठ जाए, बिना जज के आपको सुन ले, या सिर्फ एक हल्का सा कह दे कि बस मैं हूँ ना, तो बस वही असली इमोशनल सपोर्ट होता है दोस्तों। और साइंस भी मानता है कि इंसान का ब्रेन से वर्ड्स पर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि प्रेजेंस और इमोशनल एनर्जी को भी डीपली फील करता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब हम इमोशनली लो होते हैं और कोई अपना बिना एडवाइस दिए आपके साथ रहता है, तो हमारी जो बॉडी है उसमें स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल धीरे धीरे कम होने लगता है। साथ ही सेफ कनेक्शन का सिग्नल ब्रेन को मिलता है, जिससे नर्वस सिस्टम काम फील करता है। इसलिए कभी माँ का चुपचाप पास बैठ जाना या पापा का चुपचाप सिर पर हाथ रख देना, किसी दोस्त का बिना सवाल किए साथ चल देना, या घर वालों का सिर्फ खामोशी में ही अपनापन देना दिल को हील कर देता है। हर प्रॉब्लम का वर्ड्स नहीं होते, कभी कभी सिर्फ कंपेनियनशिप ही थेरेपी बन जाती है। कुछ रिश्तों की खूबसूरती ही यही होती है दोस्तों कि वहाँ हर फीलिंग एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ती, सामने वाला आंखों की नमी समझ लेता है, आवाज़ की खामोशी पढ़ लेता है। और सच कहे तो वही रिश्ता दिल के सबसे ज़्यादा करीब होता है, जहाँ प्रेजेंस ही कम्फर्ट बन जाता है। रिसर्च भी ये कहती है कि फिजिकल प्रेजेंस और इमोशनल सेफ्टी के दौरान बॉडी में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जिसे बॉन्डिंग हार्मोन कहा जाता है। ये ट्रस्ट, कंफर्ट और इमोशनल कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसलिए कभी एक साइलेंट हग, एक केयरिंग नजर या बिना बोले पास रहना भी एंग्जाइटी को कम कर देता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ह्यूमन कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो नॉन वर्बल होता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट और साइलेंट प्रेजेंस भी इमोशंस को डीपली कम्युनिकेट करते हैं। मतलब हर बार आई केयर फॉर यू कहना ज़रूरी नहीं होता, कई बार बस केयर फील होता है। खामोश सपोर्ट का एक और खास बात होती है दोस्तों, उसमें एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम होती हैं और एक्सेप्टेंस ज़्यादा होती है। कितना अच्छा है ना, जब कोई बिना फोर्स किए, बिना कहे बस आपको ये कहता है कि स्ट्रांग बनो, जी हाँ, सिर्फ आपके इमोशंस को स्पेस देता है, तब दिल नेचुरली हल्का होने लगता है। ये एक साइलेंट हीलिंग प्रोसेस होता है जो धीरे धीरे अंदर की एंग्जाइटी को सॉफ्ट करता है। कभी नोटिस किया है, जब हम बहुत थक जाते हैं इमोशनली, तब हमें बड़े लेक्चर्स बिल्कुल नहीं चाहिए होते, बस कोई चाहिए होता है जो कहे हम हैं ना, फिर भी समझ जाए। एक कप चाय के साथ खामोश बैठना, बिना वजह के टेक केयर कह देना, या फिर सब पास बैठ कर ये कह देना कि

सपने हैं, और शायद इसलिए कभी कभी बिना कुछ कहे साथ रहना ही दुनिया का सबसे इमोशनल और सबसे बड़ा सपोर्ट बन जाता है। आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ।

एक दूजे के वास्ते शायद गाया गया। गाइस ये जो गाना ना इंडियन सिनेमा के मोस्ट इमोशनल और टाइमलेस साउंड ट्रैक्स में से एक माना जाता है। सीरियसली इस गाने में कुछ तो बात है। वेल दोस्तों, छोटी छोटी कोशिशें ही रिश्तों की धड़कन बन जाती है। छोटी छोटी कोशिशें ही रिश्तों की धड़कन बन जाती है। खामोश सी केयर दिल को सुकून दे जाती है। जब दिल की फ्रिक्वेंसी एहसासों से मिल जाती है तब हर घर धीरे धीरे आशियाना बन जाता है। हर घर में कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो कभी लाउडली एक्सप्रेस नहीं किए जाते, ना उनके लिए बड़े लव्स होते हैं, ना ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस, फिर भी वो दिल के सबसे करीब होते हैं, क्योंकि रिश्तों की असली खूबसूरती अक्सर उन छोटी छोटी कोशिशों में छुपी होती है जो दिखाई कम देती है पर महसूस ज्यादा होती है ना। कभी किसी अपने का बिना कहे पानी रख देना, मूड ऑफ हो तो चुपचाप पास बैठ जाना, लेट तक जाकर वेट करना, या फिर रोज़ की भाग दौड़ में सिर्फ इतना पूछ लेना कि थक गए हो, आपके लिए फेवरेट खाना बना दें, ये सब शायद बहुत छोटी छोटी बातें लगती हैं लेकिन दिल के लिए सबसे बड़े एहसास होते हैं। न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग जब कोई इंसान हमारे लिए केयर या कंसर्न शो करता है तो ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिसे बॉन्डिंग हार्मोन भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन इमोशनल ट्रस्ट को स्ट्रॉन्ग करता है और हमें इंटरनली काम फील कराता है। इसलिए किसी अपने की छोटी सी केयर भी दिल को इंस्टेंटली सुकून देती है। जी हाँ, साथ ही पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शंस, डोपामिन और जैसे न्यूरोट्रांस

मीटर भी एक्टिव हो जाते हैं। डोपामिन हमें इमोशनल रिवॉर्ड और हैप्पीनेस का सिग्नल देता है, जबकि अगर हम बात करें इसी वजह से खैर शायद कि एक केयरिंग मैसेज, एक वार्म स्माइल भी हमारा पूरा मूड जो है वो बेटर कर देता है। आज की दुनिया में हमारे कुछ दोस्त प्यार को अक्सर बड़े जेस्चर्स में ढूंढने लगते हैं, है ना। उन्हें लगता है कि केयर तभी स्पेशल होगी जब एक्सपेंसिव गिफ्ट्स होंगे, सोशल मीडिया पोस्ट होगी या फिर बड़े सरप्राइजेस के थ्रू। लेकिन सच तो ये है कि जो रिश्तों को अंदर से मजबूत बनाता है वही साइलेंट एफर्ट्स होते हैं। वो एफर्ट्स जो किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बल्कि उसे सुकून देने के लिए किए जाते हैं। लेकिन अफसोस, हम अक्सर इन छोटी कोशिशों को नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं। अननोटिस रह जाती हैं ये छोटी छोटी कोशिशें कई बार कुछ घरों में। हम नोटिस ही नहीं करते कि रोज़ हमारे लिए इमोशनली प्रेजेंट कौन लोग हैं, कौन हमें कितना खुश करने के लिए कितने सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। हर इंसान दोस्तों उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद होती है कि उसकी केयर को कोई समझे, उसकी प्रेजेंस को कोई लाइटली ना ले, उसकी छोटी सी मेहनत को भी कोई अप्रिशिएट करे। जी हाँ, अप्रिशिएट करना चाहिए हमें इन एफर्ट्स को। इतना कह दीजिए कि मैंने नोटिस किया या मैं तुम्हारे लिए मैटर करता हूँ, ज़रूरी होता है। और रिलेशनशिप में आप कुछ भी कहिए, गिव एंड टेक होता है। रिलेशनशिप में इमोशनल डिस्टेंस अक्सर किसी बड़े रीज़न से नहीं आता, वही इन छोटी छोटी धीरे धीरे तब आता है जब छोटी छोटी कोशिशों को आप नोटिस नहीं करते हैं, जब केयर रूटीन बन जाए और ग्रैटिट्यूड खत्म हो जाए, तब रिश्तों की वार्मथ हल्का हल्का कम होने लगती है। इसलिए ज़रूरी है कि हमसे वर्स नहीं एफर्ट्स को भी समझे। जी हाँ, वैसे मुझे मेरा टाइम मुझे बता रहा है कि अब तुम्हें टाटा बाय बाय कहना है। खैर, सच तो यह है कि ज़िंदगी में दिल में हमेशा उन्हीं लोगों की जगह रहती है जिन्होंने मुश्किल वक्त में छोटी छोटी बातों से साथ निभाया होता है। वही आधी रात को घर पहुँच कर हमारे वेट करते हैं, बिना बोले चाय बनाते हैं, टेक केयर कहते हैं। ये सब सिंपल चीज़ें बिल्कुल नहीं होती हैं, ये इमोशनल हीलिंग होती है। आशियाना सिर्फ एक जगह नहीं होता, जी हाँ एक जगह नहीं होती, बल्कि वो एहसास होता है जहाँ इंसान को ये महसूस होता है कि मेरी फिक्र की जाती है। और ये एहसास बड़े कामों से नहीं, रोज़ की उन छोटी कोशिशों से बनती है जो दिखाई कम देती है पर महसूस बहुत होती है। मैंने आज प्रोग्राम में बहुत बार बात की कि कोई चाय बना दे, टेक केयर कह दे, ताकि हम इसे इग्नोर ना करें। जी हाँ, कोई टेक केयर कह देते ना, अच्छा ठीक है कह दिया उस दोस्त ने, हम कहीं पर उस इंसान के पीछे भागते हैं जो हमारी केयर नहीं करता, जो हमारे लिए इतने सारे दोस्त हमारे केयर करते हैं उधर देखते ही नहीं है। और घर में भी यही होता है। खैर, अभी हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम बिल्कुल रेडी है और चलिए मैं चलती हूँ और आपको मिलूंगी ठीक बाद में। जी हाँ, अल्फा जैन प्रोग्राम में। टेक केयर, बाय बाय।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
2: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आपका हार्दिक स्वागत। मैं हूं शालिनी मित्तल और शुरू हो गया है आपका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, जो रखता है आपके स्वास्थ्य का ख्याल। और गर्मियां बहुत पड़ रही हैं, भीषण गर्मी है और इस गर्मी का प्रभाव हमारे शरीर के हर अंग पर पड़ता है। आज हम बात करेंगे गर्मी का प्रभाव हमारी आंखों पर कैसे पड़ सकता है। जी हां, आज का यही हमारा

0: विषय है समर्स एंड आई केयर, गर्मियों में हम अपनी नेत्र रक्षा कैसे करें। और आज के हमारे रेडियो डॉक्टर हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर मानवदीप सिंह, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी डॉक्टर आरएलएमएल हॉस्पिटल नई दिल्ली में। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब का स्वागत करें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के एफएम के स्टूडियो में आपका।
1: शुक्रिया, नमस्कार।
0: तो डॉक्टर साहब विषय बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे श्रोता जो हैं इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ते हैं और अपनी समस्याओं को हमारे विशेषज्ञ के सामने रखते हैं और हमारे विशेषज्ञ उनका समाधान करते हैं। तो आज भी हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे श्रोता हमसे अब तक जुड़ गए होंगे। पर सबसे पहला प्रश्न मैं पूछ रही हूं डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर, गर्मियां बहुत हैं और इन गर्मियों में आंखों की आम समस्याएं क्या होती हैं, ये भी जानना चाहूंगी। और साथ ही साथ एक नॉर्मल आंखों की क्या समस्याएं होती हैं, कुछ खास तौर पर गर्मियों में बढ़ जाती होंगी, तो मैं दोनों जानना चाहूंगी आपसे।
1: देखिए, गर्मियों के अंदर एक तो मौसम खुश्क होता है, आजकल अभी बारिश वगैरह नहीं शुरू हुई है, तो बारिश के बाद तो जैसे संक्रमण बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अभी खुश्की आंखों में बढ़ जाती है, ड्राई आईज जैसे वो बढ़ जाती है। बच्चों के अंदर जो मार्च अप्रैल से ही शुरू हो जाता है, एक वर्नल केराटोकंजंक्टिवाइटिस जिसको बोलते हैं, एलर्जिक कंडीशन होती है, वो होते हैं। बाकी खेती में जब काम करते हैं तो आंख के अंदर आजकल चोट वगैरह जो है, आंख के अंदर कुछ भी जो है कटाई वगैरह जैसी होती है तो वो आंख के अंदर लगने का खतरा रहता है। और इसके अलावा जो है आंखों को धूल मिट्टी से फॉरेन बॉडी के आंख के अंदर गिरना, वो सभी सीजन में ज्यादा होता है क्योंकि आंधीबाजी चलती है,
0: आंधी चलती है। और बहुत गर्मी जब होती है तो भी अलग अलग तरह के चश्मे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी हम जानेंगे कि किस तरह के चश्मे होने चाहिए, किस तरह की यूवी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। हम लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और लौटते हैं।

0: जी हाँ, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, और कवि और हमारे जो फिल्मकार हैं और जो लिरिक्स राइटर्स जो होते हैं, गाने जो लिखते हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने आंखों की खूबसूरती और आंखों की सुंदरता पे बहुत गाने रचे हैं। तो हम आपकी पसंद का भी गाना बजाएंगे, तो क्या कहना चाहते हैं अब, क्योंकि एक बहुत डेलिकेट ऑर्गन है और बहुत जरूरी ऑर्गन है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। तो गर्मियां जब बहुत ज्यादा पड़ती हैं तो यूवी रेज भी होती हैं जो बहुत हार्मफुल होती हैं, तो कैसे बचाव किया जाए सर?
1: देखिए, यूवी रेज से बचने के पहले तो यह है कि आप जब धूप में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो यूवी प्रोटेक्टेड गॉगल्स पहनने चाहिए। जो गॉगल्स हैं जो बहुत सस्ते ये रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह पे मिलते हैं, उनके अंदर यूवी प्रोटेक्शन नहीं होती। तो आप अगर गॉगल्स खरीदने जाते हैं, किसी दुकान से खरीदते हैं, कोई भी ब्रांड का हो, ब्रांड से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके पास मशीन होती है चेक करने की, तो आप देखो कि उसके अंदर 99% यूवी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। आप उसको बोलिए चेक करके दिखाइए हमें।
0: अच्छा, उसको चेक करने का कोई अलग इंस्ट्रूमेंट होता है?
1: मशीन होती है, अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन कितनी है तो वो लीजिए। दूसरा जो है, आपको आंख को धोते रहना चाहिए। आंख के अंदर बहुत तेज धूप के अंदर आप कम निकले बाहर, जो डे के बिल्कुल जो पीक आवर्स होते हैं सुबह 10-11 से लेकर 3-4 बजे तक, अवॉइड करें बाहर जाना। और आंखों को अगर आप, स्पेशली अगर आप टू व्हीलर चलाते हैं, तो उसके बाद बेशक आप 2 किलोमीटर भी चले, उसके बाद आंखों को धोइए। तो ये सब चीजें जो है गर्मी के अंदर आपको आंख को बचाव करके रखती है
0: जी। तो खाली सादे पानी से धोना ठीक रहता है कि उसमें कुछ मिलाकर धोया जाए?
1: नहीं, साफ पानी होना चाहिए, बस सादा पानी
0: तो वो ठीक रहता है।
1: हाँ जी, हाँ जी
0: जी। तो जब बाहर जाएं और बाहर से अंदर आएं घर में, तो दोनों समय इसको अपने आंखों को धोना चाहिए।
1: बाहर से जाने के टाइम कोई खास जरूरी नहीं होता, लेकिन जो ही बाहर से अंदर आते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में कुछ भी हो, आपकी आंख में थोड़ी बहुत तो धूल मिट्टी गर्मी में जाएगी ही। स्पेशली जब अगर आप टू व्हीलर चलाते हैं तो उस वक्त आपकी आंख में जरूर कुछ ना कुछ जाता है।
0: जी जी। तो हमारे श्रोता फोन लाइन से जुड़ गए हैं डॉक्टर साहब, पहले इनकी समस्या सुन लेते हैं।
1: हाँ जी,
0: हेलो
2: जी। हेलो
0: जी,
2: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, के विचार कर रहा हूँ।
0: जी डॉक्टर साहब, सुन रहे हैं आप?
1: हाँ जी,
0: कर
1: जी, नमस्कार जी, बताएं।
2: जी मैं गोलपुरी दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी, हाँ जी
2: जी। मैं सर बोल रहा हूँ कि मैं जब सिलाई करता हूँ, सिलाई का काम करते हैं।
1: हाँ जी।
2: तो इसमें मतलब आँख का बचाव कैसे करें?
1: आपकी उम्र कितनी है?
2: जी उम्र जी 28 वर्ष हो रहे हैं।
1: आपको कुछ भी नहीं करना, अगर आपको ठीक दिखाई देता है तो आप बिल्कुल काम करते जाइए, बेफिक्र रहिए, जितना मर्जी काम कीजिए। बस ये सीधा, जैसे गर्मी के मौसम में खास तौर पे पंखे के सामने, एसी के बिल्कुल सामने मत बैठिए, और कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और
2: आंख लाल हो जाते हैं सर।
1: देखिए, लाल अगर हो जाती है तो आपको आंख को धो सकते हैं फ्रीक्वेंटली, दिन में 4-5 दफा धोएं। और उससे नहीं ठीक होता तो फिर आपको लाली का जो कारण एलर्जी हो सकती है, कुछ और समस्या हो सकती है, तो फिर वो आपको तो दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को, देख के ही बताया जाएगा।
0: जी डॉक्टर साहब, आपने बताया था कि पानी से आंखों को धोना ठीक रहता है जब हम बाहर से आए धूल मिट्टी के लिए। हमारे एक श्रोता हैं अरविंद, ये यमकेश्वर डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से मैसेज भेजकर हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि क्या ड्राई आइस में कचरा गिरने पर पानी से धोना चाहिए कि नहीं?
1: बिल्कुल धोना चाहिए। पहला स्टेप तो हर चीज के लिए पानी से धोना ही है, और अगर आपकी आंख में कचरा गिर गया है और वो पानी धोने से नहीं निकला तो वो आपको रड़कता रहेगा, जैसे आंख के अंदर आपको फॉरेन बॉडी सेंसेशन जिसको बोलते हैं वो रहेगा। और अगर रहता है तो फिर आप उसके लिए इंतजार मत कीजिए, आप इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि जो चीज आंख के अंदर गिर गई है अगर उसको इमीडिएटली नहीं निकाला जाएगा तो फिर वो इन्फेक्शन हो जाता है, उसका संक्रमण हो जाता है, और उससे नजर के ऊपर असर पड़ सकता है जो कि ता जिंदगी रहेगा, तो इसलिए उससे बचना चाहिए।
0: तो ये कैसे डॉक्टर साहब पता लगेगा उन्हें कि इस समय हमें जाना चाहिए? मतलब पेन होगा क्या, कैसे?
1: पेन तो जरूरी नहीं है, पेन तो थोड़ा देर में आता है, लेकिन आंख के अंदर अगर कुछ पड़ा होगा तो एकदम से कोई मिस नहीं कर सकता उसको।
0: जी जी, किरकिराहट,
1: किरकिराहट उसको रहेगी।
0: जी, जी,
1: रहेगी
0: जी। हमारे एक श्रोता है, इन्होंने नाम नहीं लिखा है, पर उन्होंने लिखा है गर्मियों में आंखों की क्या विशेष देखभाल करें। तो हम बता दें आपको कि आज पूरा ही कार्यक्रम हमारा इसी पर केंद्रित है, तो आप कंप्लीट हमारा पूरा 4 बजे तक ये कार्यक्रम सुनिए और आपको पता चलेगा, क्योंकि आज का विषय ही हमारा ये है समर्स एंड आई केयर। ये मैसेज हमें भेजा है नेहा ने मुंबई से, प्लीज सजेस्ट अ गुड आई ड्रॉप फॉर ड्राई आईज, ये इन्होंने पूछा है। नाम तो हम नहीं लेते हैं किसी पर, ड्राई आईज की जो समस्या है डॉक्टर साहब, ये क्या बढ़ जाती है गर्मियों में?
1: देखिए ऐसा है, ड्राई आईज की समस्या गर्मी में थोड़ी सी बढ़ती तो है ही, लेकिन जितना ड्राई आईज का शोर है समाज के अंदर, मुझे लगता है ये काफी इंडस्ट्री ड्रिवन है, इतनी ड्राई आई नहीं होती है। ड्राई आई है, और गर्मी में बढ़ती है, लेकिन इतनी नहीं है जितना इसका शोर होता है। तो इससे बचने के लिए आई ड्रॉप्स जो है, लुब्रिकेंट ग्रुप के आई ड्रॉप्स होते हैं, वो बहुत सारी कंपनियां बनाती है, लगभग हर कंपनी बनाती है, और उसको आप यूज कर सकते हैं। और ड्राई आईज के लिए अगर किसी को बहुत ज्यादा है, जो जैसे जोड़ों के दर्द वगैरह, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह के साथ जो ड्राई आई होती है वो काफी ज्यादा सीरियस होती है, उसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट करना बेहद जरूरी होता है। और उसमें साइक्लोस्पोरिनेव वगैरह कुछ ऐसी सीरियस दवाइयां होती हैं जो कि देनी पड़ती हैं।
0: तो ये ड्राई आईज पहली बात की होती क्यों है, और आपने कहा कि आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है, तो क्या लैपटॉप का ओवर यूज, फोन का ओवर यूज ये कारण है कि कुछ और कारण है?
1: पहला कारण तो इसका है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि ये इंडस्ट्री ड्रिवन है।
0: अच्छा, वो आपने कहा जी।
1: ड्राई आईज जो है अक्सर जो होती है वो लेडीज में होती है।

0: जब महामारी खत्म होती है उसके बाद जो है ड्राई आईज ज्यादा हो जाती हैं, और जो है इसके अलावा लैपटॉप का यूज वगैरह से क्या होता है कि वो टेम्परेरी ड्राई आई होती है, वो परमानेंट नहीं होती है। क्या होता है कि जब हम कोई भी स्क्रीन को देखते हैं तो हमारा ब्लिंक रेट जो है झपकने का आंख को, वो
1: जी
0: जो है नॉर्मली जो 13-14 होता है वो कम रह जाता है, वो 8-10 रह जाता है। तो उससे जो आंख के जो आंसू होते हैं बाहर जिनकी लेयर बनी होती है, टीयर फिल्म जो होती है, वो पूरी तरह से वो मूवमेंट नहीं होती उसके अंदर, तो वो खुश्की आने लगती है। दूसरा क्या है कि हम आंखें ज्यादा चौड़ी खोल के रखते हैं जब आप स्क्रीन को देख रहे हैं, स्पेशली जब कंप्यूटर को देख रहे होते हैं तो आंख को बहुत ज्यादा खोल के रखते हैं, तो उससे जो है
1: नुकसान करता है।
0: इवेपोरेशन हो जाती है,
1: अच्छा
0: उड़ जाते हैं टीयर्स जो है, इतने
1: अच्छा
0: थोड़े से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से
1: एरिया
0: बड़ा
1: बढ़
0: फर्क पड़ता
1: जाता
0: है।
1: है
0: हाँ,
1: तो जी
0: सरफेस
1: जी
0: एरिया बढ़ जाता
1: हाँ
0: है तो
1: जी
0: वो उड़ जाते हैं, तो उससे टेम्परेरी ड्राईनेस होती है। ये कोई बीमारी नहीं होती है, ये तो नॉर्मल एक बॉडी की रिस्पॉन्स है। तो इसके लिए आपको आंखों को थोड़ी थोड़ी देर में बंद कर लेना चाहिए, पूरा टाइट बंद कर लेना चाहिए, थोड़ी देर के बाद फिर खोल ले, काम करने लगे, और फिर बाहर अगर आपके कमरे के अंदर खिड़की वगैरह है तो खिड़की से बाहर थोड़ा दूर देखें, फिर से काम करें। और अगर आपको फिर भी ज्यादा अगर कुछ सिम्टम्स आने लगे तो फिर आप जो है लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं।
1: जी। और ये जो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स यूज करते हैं तो इसकी भी कोई फ्रीक्वेंसी होती है डॉक्टर साहब, कि दिन में कितनी बार यूज
0: नहीं,
1: करें?
0: अगर किसी को स्पेसिफिक कोई बीमारी नहीं है तो 2-3 दफा, 2-3 दफा
1: अच्छा
0: काफी होता है,
1: ओके।
0: मैक्सिमम, ज्यादा की जरूरत नहीं होती।
1: हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो
2: हेलो,
1: हेलो
2: हाँ जी नमस्ते मैम।
1: जी नमस्ते।
2: हाँ जी, एस चट्ठा बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब को भी नमस्ते।
0: नमस्ते
1: जी,
0: जी।
1: चट्ठा जी अपना प्रश्न करें।
2: हाँ डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि समर में जैसे आप बता रहे हैं आई की केयर के बारे में, नॉर्मल व्यक्ति जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो और जिसका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ हो, तो उन दोनों में क्या क्या अलग से कोई प्रिकॉशन करना चाहिए?
0: नहीं जी, कोई अलग से प्रिकॉशन नहीं है, दोनों के लिए सब ठीक होता है। जैसे बाकी सबके लिए हम बात कर रहे हैं, जो पूरे प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे, वैसे ही सबके लिए, बेशक ऑपरेशन हुआ हो या ना हुआ हो।
1: जी हमें हमारी श्रोता ने लिखकर भेजा है, जिनका मैंने प्रश्न मैसेज पे लिया था कि गर्मियों में क्या विशेष देखभाल चाहिए। अपना नाम उन्होंने लिखकर भेजा है, मान्या सिंह है उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से। इन्होंने ये भी लिखा है कि ज्यादा देर तक ध्यान केंद्रित करने पर आंखें गर्म हो जाती हैं तो क्या करें, जैसे पढ़ाई करने पे या टीवी देखने पे। तो आपने काफी कुछ तो डॉक्टर साहब अभी बताया कि थोड़ा रेस्ट देना चाहिए उन्हें
0: रेस्ट
1: बीच
0: देना
1: में।
0: चाहिए। और अगर आपको गर्मी में ज्यादा आपको दिक्कत होती है, आपके घर में कोई कूलिंग का सिस्टम नहीं है, तो आप थोड़ी सी बर्फ सूती कपड़े में लेकर आंख के ऊपर लगा सकते हैं।
1: अच्छा, ठंडी सिकाई टाइप
0: हाँ
1: की
0: जी,
1: जो
0: हाँ जी,
1: होती
0: हाँ
1: है।
0: जी।
1: जी जी सुशील ठाकुर हमें लिख रहे हैं, कहाँ से लिख रहे हैं ये तो नहीं बता रहे हैं, पर इन्होंने लिखा है मेरे आंखों में पानी गिरता है आंखों से और कंटिन्यूअस रहता है ये ऐसे आंखों से गिरना, और 5 साल से ऐसा हो रहा है। तो इनको कुछ आप बताना चाहेंगे कि क्या विशेष ये करें?
0: इनकी उम्र नहीं पता ना,
1: उम्र तो
0: नहीं,
1: आप अगर हमें सुन रहे हैं सुशील जी तो हमें मैसेज करके उम्र भी लिखें। डॉक्टर साहब जानना चाहते हैं कि आपकी उम्र कितनी है और हम ये फिर प्रश्न बाद में ले सर फिर
0: नहीं नहीं
1: डॉक्टर
0: नहीं
1: साहब।
0: कोई बात
1: अच्छा
0: नहीं, जो जिस जैसे ये मेल हैं और उम्र मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा होगी। एक तो ये होता है कि पानी अगर आंखों में आता है, सबसे पहली चीज जो हमने एक्सक्लूड करनी होती है वो है कि कोई रास्ता तो नहीं बंद, क्योंकि नॉर्मली जो आंसू हैं आंख की सफाई के बाद वो एक छेद होता है आंख के अंदर, वो उस छेद के जरिए जो आईलिड्स के अंदर होता है उसके जरिए वो नाक में चले जाते हैं, और ये 24 आवर सब में चलता रहता है। तो अगर वो बाई चांस किसी कारणवश, स्पेशली अगर नाक की कोई किसी को एलर्जी वगैरह रहती है, तो उससे वो रास्ता कई बार बंद हो जाता है, तो आंसू जो है वो अपने नॉर्मल तरीके से ड्रेन नहीं हो पाते, तो ये इसको एक्सक्लूड करना जरूरी होता है। दूसरा कि अगर किसी को एलर्जी वगैरह अगर होती है तो उससे भी पानी लगातार आता रहता है। इसके अलावा अगर किसी को चश्मे की जरूरत हो लेकिन वो चश्मा ना लगाए, आंखों पे जोर पड़ता है, उससे भी पानी आने लगता है। और इसके अलावा ड्राइनेस जब किसी को ज्यादा हो जाती है तो कई बार उससे भी रिएक्टिव टीयर सिक्रीशन बढ़ जाता
1: अच्छा,
0: है,
1: ड्राइनेस में भी
0: ड्राइनेस से भी कई बार जो है
1: अच्छा,
0: पानी बढ़ जाता है। तो ये सब
1: फिर
0: चीजें हैं जो कि एक
1: चेकअप से
0: इंडिविजुअल को
1: पता
0: चेकअप से
1: चलेगा।
0: ही पता
1: जी जी
0: लगेगा।
1: तो आप जरूर नेत्र एक विशेषज्ञ के पास जाइए और चेकअप कराइए सुशील जी, तो सही जो कॉज है वो पता लगेगा तो फिर इसका इलाज किया जा सकता है। ये हमें लिखकर भेजा है उमेश कुमार ने खयाला से, और ये लिख रहे हैं कि आंखों में कभी कभी पानी आता है और पलकों में कभी खुजली भी होती रहती है, ये जानना चाह रहे हैं।
0: ये चीजें गर्मी के अंदर नॉर्मल होती हैं और एलर्जी होती है, इनके सिर्फ पानी से धो लेना चाहिए और ठंडे पानी से और ठंडी सिकाई करनी चाहिए। मेरा ख्याल है ऐसे में किसी दवाई वगैरह की जरूरत अक्सर नहीं होती है।
1: जी ओम प्रकाश खंडेलवाल जी हमें लिख रहे हैं मैसेज के जरिए, डॉक्टर साहब इनकी उम्र 62 ईयर्स है और ये कहते हैं कि मोबाइल देखते समय 20 मिनट बाद मैं पलक झपकता हूं, तो आंखों में ऐसा लगता है कि आंखों में कुछ गिर गया है, या ऐसा लगता है जैसे पानी आ रहा है आंखों में, तो ये

0: ज्यादा देखने के कारण
1: ये
0: होगा
1: सब ज्यादा
0: मोबाइल।
1: देखने की वजह से है। और जब मैंने बताया कि ब्लिंक रेट कम हो जाता है, ये कह रहे हैं कि मैं 20 मिनट तक झपकता हूँ, उसके बाद ज्यादा झपकता हूँ। तो ये एकदम बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी, आपको ज्यादा झपकना चाहिए आंखों को, बीच बीच में जोर से बंद भी करना चाहिए। और इतना कंटिन्यूअस आप मोबाइल मत देखिए, क्योंकि इससे तो फिर आपकी टेम्परेरी ड्राइनेस जो है वो बार बार करने से, ऐसे रहने से परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फिर वो मत कीजिएगा,
0: जी
1: थोड़ा स्क्रीन टाइम कम कीजिए। वैसे भी आपकी उम्र 62 साल हो चुकी है, तो आपको थोड़ा सा कम कीजिए इस चीज को।
0: और मुझे लगता है डॉक्टर साहब ये तो सबके लिए आपकी समझाइश होगी, क्योंकि बच्चे भी बहुत देखते हैं आजकल मोबाइल पे, कंटिन्यूअस खेलते रहते हैं वो गेम्स, तो
1: अब
0: उन्हें
1: ये
0: भी ब्रेक लेना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को हाथ में, छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल देना तो एक बहुत ही खतरनाक चीज है।
0: जी
1: उनको सिर्फ ये नहीं होती, ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, उनका चश्मे का नंबर लग जाता है।
0: अच्छा
1: पहले हमारे जो टेक्निकली अगर आप देखें, अगर हमारे साइंटिफिकली देखें, तो 18 साल से बड़े बच्चे को चश्मा नहीं लग सकता माइनस नंबर का। लेकिन आजकल जो है हर एज पे 20 22 25 साल की उम्र तक भी कई लोगों को, बच्चों को लग जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है। ये बहुत ही नुकसानदेह होता है।
0: जी, और भी बात करेंगे हम गर्मियों में कैसे आंखों की रक्षा आप कर सकते हैं, आंखों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में डॉक्टर मानवदीप सिंह हैं, जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल नई दिल्ली में। मैं हूं आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। इसी तरह से हम बने रहेंगे 4 बजे तक आपके साथ, तो अपने प्रश्न भेजते रहिए। सुनते हैं एक प्यारा सा गीत डॉक्टर साहब की पसंद पर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: वेलकम बैक। आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और आज का हमारा विषय समर्स एंड आई केयर, गर्मियों में नेत्र सुरक्षा कैसे करें। हमारे विशेष

0: हैं डॉक्टर मानवदीप सिंह, आप नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर हैं डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल नई दिल्ली में, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब। हेलो
1: हेलो
0: जी,
1: प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव शालिनी मित्तल जी को रघुविंदर सिंह का नमस्कार।
0: नमस्कार जी, आप प्रश्न करें, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको।
1: डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम।
2: प्रणाम जी।
1: डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि आपने बताया कि गर्मियों में धूप में टू व्हीलर ड्राइव करते वक्त यूवी प्रोटेक्टेड गॉगल्स लगाने चाहिए, लेकिन जिन लोगों को नजर का चश्मा लगा हुआ है दूर और पास का, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? नंबर टू, जो ये हम आई ड्रॉप डालते हैं उसको केमिस्ट ये बताते हैं इसको खोलने के बाद इसकी वैलिडिटी सिर्फ एक मंथ तक है। कुछ ऐसे आई ड्रॉप भी आते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ काफी टाइम तक होती हो, कृपया बताने का कष्ट कीजिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: पहले मैं आखिरी सवाल का जवाब दूंगा कि शेल्फ लाइफ जो है ये ना एक्चुअली लीगल रिक्वायरमेंट है उनका लिखना कि एक महीने के अंदर जो है दवाई खराब हो जाती है। ये उस जमाने में होता था जब शीशियां होती थी जो ग्लास की बनी होती थी और उसके ऊपर प्लास्टिक के ढक्कन होते थे तो वो टूट जाते थे तो उससे इन्फेक्ट हो जाता था। आजकल जो है हालांकि लिखा तो कानूनी तौर पे ये होता है कि एक महीने के अंदर ही इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप दवाई को फ्रिज में रखते हैं और आपकी दवाई की शीशी जो है टूटती फूटी नहीं है, ढक्कन इधर उधर गिरता नहीं है, तो आप उसको सेफली डेढ़ दो महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी दवाई को। बाकी कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनका की पैकिंग ही बहुत ही एक्सपेंसिव और बढ़िया पैकिंग होती है, उनके ऊपर लिखा होता है कि इनको दो या तीन महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। दूसरा आपने सवाल पूछा था कि अगर आप, मैंने ये बोला था कि टू व्हीलर को अगर चलाते हैं तो चलाने के बाद इमीडिएटली आंख को धो लें, मैंने ये नहीं कहा था कि टू व्हीलर को चलाते समय काला चश्मा लगाएं, वो कोई भी चश्मा लगा सकते हैं। आप अगर हेलमेट पहनते हैं तो हेलमेट को आगे से कवर कर सकते हैं वाइजर से, उससे आंख के अंदर धूल मिट्टी नहीं जाएगी, और अगर आप चश्मा कोई लगाते हैं नजर का तो वो नॉर्मल चश्मा लगाएं आप, वो आप फोटोक्रोमेटिक भी लगा सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो, वो फोटोक्रोमेटिक लेंसेज जो होते हैं वो अंदर सफेद हो जाते हैं और धूप में जाने पे काले हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा हेल्प करते हैं
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि चश्मा जरूर लेकिन लगाएं, अच्छा क्वालिटी का चश्मा, यूवी प्रोटेक्ट जो करे वैसा चश्मा लगाएं, पर कई बार ये होता है जब बहुत गर्मी होती है तो चश्मा लगाते हैं तो नाक के आसपास थोड़ा पसीना जैसे आता है, फेस पे पसीना आ जाता है, तो उससे कभी कभी स्किन एलर्जी भी हो जाती है, तो इस पे क्या करें, किस तरह का सॉल्यूशन?
2: देखिए ये सारा ना फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। चश्मे का जो फ्रेम होता है, जो मेटल फ्रेम्स होते हैं ना, कई किस्म के मेटल होते हैं, एक मेटल होता है और मेटल के ऊपर एक्रेलिक की उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है
0: जी।
2: वो तो ठीक रहता है, लेकिन अगर आप देखने में मतलब ज्यादा सुंदर लगना है, कई लोग जो है ज्यादा पतला चश्मा पसंद करते हैं, तो डंडी जो होती है उसकी वो मेटल की होती है तो वो डायरेक्ट टच करती है स्किन के साथ, उससे एलर्जी होती है। जनरली जो हम रिकमेंड करते हैं कि डंडी या तो वो प्लास्टिक से एक्रेलिक से कवर्ड होनी चाहिए या एक्रिलिक की ही होनी चाहिए।
0: अच्छा।
2: तो वो जो है उससे स्किन एलर्जी नहीं होती है, और अगर होती है किसी को तो फिर आपके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय चश्मा बदलने के।
0: हमारी श्रोता हैं अदिति, वेस्ट दिल्ली में रहती हैं, और इन्होंने लिखा है कि इनकी उम्र 25 साल है। इनका प्रश्न है कि आंखों के नीचे की स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, इसके लिए क्या बताएंगे आप? स्किन के लिए ही बात कर रही हैं कि आंखों के नीचे की बहुत डेलिकेट स्किन होती है।
2: डेलिकेट स्किन होती है तो ये जो है ना, अगर आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर वगैरह यूज कर सकते हैं अगर आपको ऐसी स्किन की ड्राइनेस की है, और अगर आपको फिर भी तकलीफ रहती है कोई भी आप, तो फिर आप स्किन के डॉक्टर से मिलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा
0: जी। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं लेकिन जनरल आईज की प्रॉब्लम्स पे आ रहे हैं, अगर हमारे पास समय रहेगा हम जरूर उनको शामिल करेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल गर्मी पर ज्यादा केंद्रित कर रहे हैं अपने प्रश्नों को कि गर्मी में हम आंखों की सुरक्षा कैसे करें। तो जो आपने चश्मे का बताया डॉक्टर साहब, एक और समस्या होती है जैसे आंखों में कोई परेशानी हुई तो डॉक्टर्स जनरली स्टेरॉइड्स दे देते हैं, तो उसका कुछ फर्क होता है? गर्मियों में ज्यादा नुकसानदायक होती है या स्टेरॉइड्स लेने चाहिए?
2: देखिए स्टेरॉइड जो है वो किसी स्पेसिफिक अगर बीमारी ऐसी हो जिसके अंदर स्टेरॉइड जरूरी है वो तो जरूरी है, लेकिन स्टेरॉइड्स का हमारे यहाँ ना हमारे देश में बहुत ज्यादा ओवर द काउंटर मिल जाती हैं जो कि बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड यूज होना चाहिए इनका। और खास तौर पे मैं बताना चाहूंगा बच्चों में एक एलर्जी की बीमारी होती है जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं वर्नल किरेटो कंजंक्टिवाइटिस, और उसको साधारण भाषा में स्प्रिंग कटार बोला जाता है। उसके अंदर आंखों में पानी बहुत आता है, खुजली होती है, बच्चे की आंखें बंद होने लगती हैं थोड़ी थोड़ी।

0: देखने में जो सफेद वाला हिस्सा है आंखों का, वो तो उसमें पीलापन आने लगता है। लेकिन इन सभी चीजें, किसी भी चीज से, ये बीमारी कितनी भी हो, इससे नजर खराब नहीं होती। लेकिन अगर इसके लिए जो इलाज होता है वो स्टीरॉयड यूजेज होता है, लेकिन स्टीरॉयड यूजेज हम बिल्कुल जब बहुत ज्यादा तकलीफ है थोड़े दिनों के लिए, 10-15 दिन के लिए देते हैं। और बड़े कॉमनली ये होता है कि लोग सोचते हैं कि अरे ये तो दवाई ड्राम बाण है, ये तो बस ठीक हो गए, अब इसको डालते रहो। 4-6 महीने डालते रहते हैं, उससे होता क्या है कि बच्चे की जो है ये खुजली पानी तो ठीक हो जाता है, उसकी नजर डैमेज हो जाती है, उसको सफेद या काला मोतिया या दोनों हो जाते हैं और नजर हमेशा के लिए उसकी खत्म हो जाती है। और हमारे देश में हर साल कई हजार बच्चे अंधे हो जाते हैं। और यह तकलीफ जो है अक्सर ये मार्च अप्रैल से शुरू होकर सितंबर अक्टूबर तक यह एलर्जी चलती रहती है, और जनरली 3-4 साल की उम्र से शुरू होती है और 18 साल की उम्र तक ये रहती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। तो इस चीज का खास ध्यान रखें कि स्टीरॉयड का यूजेज डॉक्टर के सुपरविजन के बिना और रिपीटेड कंसल्टेशन के बिना, रिपीटेड कंसल्टेशन में रिपीट करना चाहूंगा कि बार बार डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है अगर आपका स्टीरॉयड का यूजेज कर रहे हैं।
1: जैसा आपने कहा कि किसी डॉक्टर ने अगर एक हफ्ता लिखा है तो वो बोले कि ठीक नहीं हुआ है तो मैं और एक हफ्ता रिपीट कर लूं, तो वो
0: रिपीट
1: कर
0: ना करें जब तक आप डॉक्टर से दोबारा कंसल्ट ना करें।
1: जी जी। और कई बार ये भी होता है डॉक्टर साहब कि उसको कैसे बंद करना है उसमें भी वो धीरे धीरे करके उसको बंद किया जाता है, ऐसा भी होता है।
0: अक्सर बहुत सारी ऐसी होती है तकलीफें, अगर इसको लंबे समय तक दिया जाए तो इसको धीरे धीरे बंद करना होता है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए 1-2 हफ्ते के लिए दिया गया तो फिर एकदम से बंद कर सकते हैं।
1: जी आपने आई ड्रॉप के बारे में भी डॉक्टर साहब बताया था, ड्राई आईज के लिए भी, और भी स्टेरॉइड्स अगर यूज होते हैं तो वो भी ड्रॉप्स के फॉर्म में ही होते हैं। तो हमारी ये श्रोता है, इन्होंने जानना चाहे कि आई ड्रॉप डालने के बाद कितनी देर बाद आंख खोलनी चाहिए।
0: 1 मिनट तक बंद करना ठीक रहता है, काफी रहता है। बाकी आई थिंक ये काफी यंग पर्सन है तो इनको यूट्यूब वगैरह देखते होंगे, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई आई ड्रॉप्स, उस पे आपके डजन्स आ जाएंगे, काफी दर्जनों आपकी वीडियो आ जाएगी, उनमें से एक हमारी बनाई हुई वीडियो भी है। अच्छा। राम मनोहर हॉस्पिटल से 2 मिनट की वीडियो है तो उसको जो है जो लोग लंबे समय तक दवाई इस्तेमाल करते हैं जैसे ड्राई आईज के पेशेंट हैं या काले मोतिया के पेशेंट हैं, तो दवाइयां कैसे डाली जाए, उसका बेस्ट यूज कैसे किया जाए और उसके साइड इफेक्ट कम से कम कैसे किए जाए, वो सब चीजें उसके अंदर हमने दिखा रखी है।
1: जी, ये प्रश्न किया था हमसे पुष्कर देवदिली जी ने, और उन्होंने अपना एज नहीं लिखी है, लेकिन आजकल तो सभी लोग फोन पे देख सकते हैं जाकर। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, आप आरएमएल की जो ये यूट्यूब पे जाकर आप देख,
0: आरएमएल की यूट्यूब पे शायद नहीं होगा वो, या तो मेरे नाम से होगा।
1: अच्छा।
0: या फिर जो है आप हाउ टू अप्लाई आई ड्रॉप्स अगर लिखेंगे तो मिल जाएगा, या मेरा नाम लिखेंगे तो भी मेरे मिल जाएगा,
1: तो आप कोशिश कर सकते हैं। और काफी कुछ तो डॉक्टर साहब ने यहाँ भी बता दिया है। हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर जुड़े हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर, नमस्कार, आपका स्वागत है। जी
2: थैंक यू।
1: प्रश्न करें, नाम पहले बता दें, कहाँ से बोल रही है, कौन बोल रही है?
2: पीतमपुरा से अनीता वर्मा।
1: जी अनीता जी, बताएं अपने प्रश्न करें।
2: हाँ, एक प्रश्न है मेरा, क्या कोई भी आई ड्रॉप्स हो जैसे आज समर में आजकल फ्रिज में ही रखें या बाहर? और दूसरा सवाल है, जैसे ऑपरेशन होता है लोगों का, आई ऑपरेशन चेक का, तो वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि 2 साल बाद दोबारा कराओ, रिपीट कराओ, क्या ये इसमें सत्य है कुछ? बस ये दो बताइए।
1: जी जी, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आई ड्रॉप को क्या हमेशा फ्रिज में रखना चाहिए गर्मियों में?
0: देखिए, फ्रिज में रखने से हमेशा अच्छा रहता है, एक तो ठंडक मिलती है जब आप आंख को डालेंगे तो वो सूदिंग होता है, दूसरा दवाई की लाइफ बढ़ जाती है। और जो दूसरी इन्होंने बात कही है कि कैटरेक्ट के ऑपरेशन के बाद दोबारा हो जाता है, कैटरेक्ट कभी भी दोबारा नहीं होता, लेकिन ये है कि जब हम कैटरेक्ट का ऑपरेशन करते हैं तो साथ में लेंस भी डालते हैं, लेंस को डालने के लिए हम जो कैटरेक्ट जो हम पूरा नहीं निकालते, उसकी एक झिल्ली होती है, झिल्ली को छोड़ दिया जाता है ऑपरेशन के टाइम पे, वो कुछ समय के बाद वो झिल्ली जो है पारदर्शिता उसकी खत्म हो जाती है, तो उसको एक माइनर सा प्रोसीजर होता है लेजर, जो कि ओपीडी में ही हो जाता है, उससे जो है वो झिल्ली को काट के उसको साफ कर दिया जाता है और नजर दोबारा साफ हो जाती है, और उसके बाद अगर वो एक बार पूरा हो जाए तो वो भी झिल्ली दोबारा कभी जिंदगी में नहीं आती है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी प्रश्न करने के लिए, और एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और फिर लौटेंगे। प्रश्न हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं आंखों से संबंधित, पर हम चाहेंगे कि गर्मी में आंखों की सुरक्षा कैसे करें, अगर इस विषय पर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें, तो ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: आप है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, मैं हूं शालिनी मित्तल और मेरे साथ आज के रेडियो डॉक्टर डॉक्टर मानवदीप सिंह। आप प्रोफेसर हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल नई दिल्ली में। और गर्मियों में आंखों की कैसे सुरक्षा की जा सकती है, खासतौर पर इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। पर डॉक्टर साहब, बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जिन्होंने आंखों की बहुत अन्य समस्याओं पर भी बात की है, हमें मैसेज लिखकर भेजा है। आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं उनको भी शामिल कर लूं।
1: जरूर कीजिए
0: जी। शैली जी लिख रही हैं दिल्ली से कि आंखों में काजल लगाना सही है कि नहीं, बताएं।
1: देखिए, काजल डॉक्टर्स लोग हम लोग जनरली रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन इस पे खास प्रिकॉशन एक ये है कि एक तो काजल अगर आप लगाना ही है तो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा जो है, अगर आप कुछ सुरमचू वगैरह या कोई और चीज लगाने के लिए यूज कर रहे हैं तो उसको एक से दूसरे के साथ ना लगाएं। तो यह है जो
0: मतलब
1: है,
0: अगर आपका है तो पर्सनल
1: है, पर्सनल होना चाहिए, दूसरे का नहीं होना चाहिए। और धोने के बाद साफ सुथरा उसको, मतलब वॉश करके साबुन से धोके उसके बाद ही उसको जो है टच करें। हाँ, संक्रमण का रिस्क इससे ज्यादा रहता है। और पहले जो है हमारे यहाँ जो कुकरे होते थे या जिसको हम लोग ट्रकोमा बोलते थे, बहुत ज्यादा था, वो बहुत कम हो गया इसी वजह से, क्योंकि इसके लिए

0: हमने चलाई है
1: जी
0: कि काजल का इस्तेमाल कम से कम करें।
1: जी हमारे एक श्रोता हैं जो फोन लाइन पर इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर साहब। हेलो
2: हेलो
1: जी जी आप बताएं अपना प्रश्न करें डॉक्टर साहब से।
2: डॉक्टर साहब नमस्ते।
0: नमस्ते जी।
2: गजराज नाम है डॉक्टर साहब मेरा।
1: जी जी प्रश्न कर लें।
2: प्रश्न ये है मेरी जो ना आंखों में सितंबर में जो ना लेफ्ट साइड में जो ना किसी ने घूसा मार दिया था।
0: हाँ जी।
2: तो मेरे को जो है ना दिखना बंद हो गया है। दिखता है, विजन तो मेरा ठीक आता है डॉक्टर साहब, लेकिन जो दिमाग की दिक्कत बता रहे हैं डॉक्टर, जो मैंने चेक कराया ना तो दिमाग की तो मेरी MRI हुई थी। MRI के अंदर जो ना वो डॉट्स बोलते हैं उनको, कीड़ा बोलते हैं।
0: सिस्टिक सर्कोसिस
2: नहीं, कीड़े थे वो।
0: हाँ, कीड़े सिस्टिक सर्कस ही होता है वो।
2: हाँ, वो कीड़ा का बताया था। तो मैं इंदिरा हॉस्पिटल गया था।
0: हाँ जी।
2: तो डॉक्टर साहब ने जो ना मेरे को एलबेंडा लिख दी थी।
0: हाँ जी, वो सिस्टिक सर्कोसिस के लिए लिखते हैं।
2: तो फिर वो जो ना दूसरी, जब मैंने दूसरी MRI कराई ना तो उसमें हट गए वो।
0: हाँ जी।
2: लेकिन मेरी रोशनी वापस नहीं आई है।
0: देखिए ऐसा होता है कि जब ये आंख की जो आंख जो है वो, मैं आपको बताऊं कि देखने का काम नहीं करती। आंख केवल फोटो खींचती है, फोटो खींच के दिमाग को, मस्तिष्क को भेज देती है। तो यह जो आंख से मस्तिष्क तक जाने की जो चीज है, जो नस है वो, या जो दिमाग का हिस्सा है जो देखने का काम करता है, असल में अगर उसके अंदर कोई खराबी हो जाए तो आंखें अगर बिल्कुल ठीक भी हों तो भी आदमी देख नहीं पाएगा। क्योंकि आंख का काम सिर्फ फोटो खींचना है, देखने का नहीं है। देखने का काम मस्तिष्क का है और उस मस्तिष्क तक फोटो पहुंचनी भी बड़ी जरूरी है
1: जी।
0: तो आपके, मुझे जो लगता है न्यूरोसिस्टिक सर्कस की वजह से आपकी जो नस वो सूख गई है, तो इसका इस वक्त कोई इलाज संभव नहीं है। लेकिन मैं आपको इसके साथ एक और बात बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी मरीज को अगर उसकी नस सूख गई हो, उसकी वजह से नजर खत्म हुई हो, तो वो अपने डेथ के बाद नेत्रदान कर सकता है और दूसरा आदमी उनके नेत्रों से देख सकता है। लेकिन वो खुद किसी और के नेत्र लेकर जो प्रत्यारोपण के बाद उसकी नजर नहीं आ सकती है।
1: और ये हमारे साथ एक और श्रोता जुड़े हैं जिन्होंने मैसेज किया है। अवधेश हैं औरंगाबाद बिहार से लिख रहे हैं। आई हेमरेज क्या होता है डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते हैं।
0: देखिए आई हेमरेज ना मेनली दो किस्म का मैं बताना चाहूंगा, या रादर तीन किस्म का होता है। जगह जगह की बात है कि कौन सी जगह पर होता है। एक तो बिल्कुल बाहर लगता है, जैसे किसी का बच्चे का नाखून लग गया, छोटी मोटी चीज है वो बाहर लग गया, उसके लिए कोई इलाज नहीं करना हो तो अपने आप वो लाली जैसी देखने में होती है और थोड़े समय बाद वो ठीक हो जाते हैं अपने आप, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में। दूसरा होता है हेमरेज, जो आंख के पुतली के पीछे इमीडिएटली होता है, वो चोट वोट लगने से होता है अक्सर, और वो भी उसका इलाज थोड़ा करना पड़ता है। लेकिन जो तीसरा जो हेमरेज है, जो सबसे ज्यादा क्रूशियल है, वो होता है विट्रस हेमरेज, यानी कि पीछे के हिस्से का, लेंस के भी पीछे का हिस्सा है, जो पर्दे से जो ब्लीडिंग होती है। यह ज्यादातर, सबसे ज्यादा ये मधुमेह या डायबिटीज की वजह से होती है, और इसके अलावा और भी कई बीमारियां होती है, ईल्स डिजीज वगैरह होती है और कई किस्म की बीमारियां होती है जिससे यह हो सकता है। इसमें अगर यह अपने आप जो सिस्टम ईश्वर ने बनाया है उससे 10-15 दिन की अगर थोड़ी सी ब्लीडिंग हो, थोड़ा हेमरेज हो, तो 15-20 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अक्सर इसका ऑपरेशन करके ब्लड को बाहर निकालना पड़ता है, उसके निकाले बिना आदमी को नजर नहीं आता। तो यह सीरियस बात होती है और इसके लिए स्पेशल डॉक्टर होते हैं। सभी नेत्र विशेषज्ञ भी इस काम को नहीं कर सकते
1: जी। तो डॉक्टर साहब अपने को ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ सकती है। तो कई बार लोगों से हमने सुना है कि गर्मियों में ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, रिकवरी स्लो होती है, या क्या कारण होता है कि लोग ये सोचते हैं, और ये धारणा सही है कि नहीं?
0: देखिए गर्मी में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है, वैसे आजकल लोगों के पास, सबके पास रिसोर्सेज है, कूलर है, एसी है। बात यह है कि कुछ दिन तक, क्योंकि आंख जो है, आंखों को थोड़ा पानी नहीं आंख पे डालना होता ऑपरेशन के बाद, तो थोड़ा नहाने वगैरह, सर धोने वगैरह में थोड़ी दिक्कत होती
1: है। तो गर्मी,
0: थोड़ी गर्मी महसूस होती है, गर्मी से आंख में पसीना आ जाता है, तो वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होती है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, आप घर के अंदर रह सकते हैं, आपके पास टूल और एसी है, तो इसके लिए कोई ऐसी खास समस्या नहीं है
1: जी। जी हमारे साथ श्रोता फोन लाइन पर है। हेलो
3: नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार जी।
3: मार्ग भूषण बोल रहा हूँ जी, मुजफ्फरनगर से।
1: जी जी आप अपना प्रश्न कर लें डॉक्टर साहब से।
3: डॉक्टर साहब ने मैं ऑपरेशन करवाया कैटरेक्ट का।
0: हाँ जी।
3: तो इसने जो दवाई दे रखी है डॉक्टर साहब ने, तो ये थोड़ा जलन कर दी।
0: हाँ जी। एंटीबायोटिक और स्टीर
3: स्टेरॉइड तो
0: नहीं? वो तो होगा ही होगा ऑपरेशन के बाद, कैटरेक्ट के ऑपरेशन के बाद एंटीबायोटिक और स्टीरोइड तो 1 महीने तक देते ही हैं, सभी देते हैं। अच्छा, तो नॉर्मल है। अगर आप उससे जलन वगैरह कुछ होती है तो उसको बर्दाश्त ही करना होगा। बस अच्छा, आप आंख की दवाई डाल के, एक तो आंख दवाई को फ्रिज में रखे, उससे जलन कम होगी। दूसरा, आंख जब डालते हैं दवाई तो आप 1 मिनट तक आंख को बंद रखेंगे, तो उससे आपको थोड़ी सी तकलीफ कम रहेगी।
3: ठीक है सर।

0: तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रश्न किया और उम्मीद है आपको जवाब भी सही मिल गया। और डॉक्टर साहब विकास हैं, दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने लिखा है मेरी वाइफ की उम्र 24 वर्ष है, आंखों में बहुत पानी आता है, इसके लिए क्या करें, अभी कुछ टाइम से ऐसा आ रहा है। वैसे आपने बताया है, बहुत सारे प्रश्न हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी लेती हूँ। कांता गुप्ता जी ने लिखा है उज्जैन से कि मोबाइल देर तक देखने पर आंखों का प्रेशर बढ़ता है क्या?
1: ऑपरेशन प्रेशर तो नहीं बढ़ता, लेकिन ज्यादा मोबाइल देखना अच्छा नहीं होता, कई और किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्पेशली जिसके अंदर आती है ड्राइज आई और चश्मे का माइनस नंबर का बढ़ना, तो इससे थोड़ा सा परहेज करें तो ज्यादा ठीक रहेगा।
0: जी
1: और अगर आपको करना ही है यूज, तो थोड़ा आंख से दूर करके रखें उसको, नजदीक बिल्कुल नजदीक ना लाएं।
0: AKL कुमावत जी सीकर राजस्थान से पूछ रहे हैं कि क्या ज्यादा नींद आना भी आंख की बीमारी का संकेत
1: नहीं
0: होता
1: जी,
0: है?
1: इसके साथ कोई संबंध नहीं है।
0: मेरे चश्मे का नंबर है 20, क्या उससे देखता हूँ लेकिन साफ नहीं दिखता, तो मैं क्या करूँ? ये अभिषेक गुप्ता है लेंसडाउन उत्तराखंड से।
1: देखिए, अगर इतना ज्यादा नंबर अगर होगा तो जो इमेज बनती है आंख के अंदर उसका साइज छोटा हो जाता है, तो इसके लिए इतने हाई पावर चश्मे से बहुत ही मुश्किलें होती हैं। इसके लिए एक तो स्पेशलाइज लेंसेज होते हैं जिनको हम बोलते हैं हाई इंडेक्स लेंसेज, थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं लेकिन वो उनसे ये प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है। इसके अलावा कॉन्टेक्ट लेंसेज जो है वो यूज करना बेहतर होता है, उनसे क्वालिटी ऑफ विजन बहुत बेहतर मिलेगी चश्मे की बजाय। और अगर आप चाहें तो कुछ ऑपरेशन भी होते हैं चश्मे को कम करने के, लेकिन वो काफी रिस्की होते हैं इतने हाई पावर के लिए, तो वो आप डॉक्टर की सलाह से देख सकते हैं कि अगर आपकी आंख फिट है ऑपरेशन के लिए तो आप वो ऑपरेशन भी करवा सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब कॉन्टेक्ट लेंस आपने बताया, तो अगर नंबर किसी के है तो वो कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर सकता
1: तो
0: है?
1: इतने हाई नंबर के लिए तो कॉन्टेक्ट लेंस सबसे अच्छी चीज है।
0: अच्छा, और अगर किसी का नॉर्मल है, जैसे हम लोग रीडिंग के लिए चश्मा लगाते हैं, तो हम अगर रेगुलर यूज में चाहें तो कॉन्टेक्ट लेंस लगाएं, कोई नुकसान तो
1: रीडिंग
0: नहीं होगा?
1: रीडिंग के लिए जनरली कॉन्टेक्ट लेंस नहीं यूज करते, लेकिन जो डिस्टेंस का नंबर होता है उसके लिए कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हैं, सब दुनिया करते हैं, कोई खास बात नहीं है उसमें।
0: तो गर्मियों में कोई खास देखभाल करनी होती है कॉन्टेक्ट लेंस जो लगाते हैं हम लोग?
1: आजकल जो कॉन्टेक्ट लेंस आते हैं वो पहले होते थे हार्ड कॉन्टेक्ट लेंसेस, तीन तीन चार चार साल लगते थे, उनको क्लीनिंग वगैरह की एक्सटेंसिव जरूरत होती थी। आजकल जो लेंसेज आते हैं इनके लिए कोई ऐसी खास केयर की जरूरत नहीं होती है। द ओनली थिंग इज कि आप ज्यादा ये देखें कि अगर आपका कॉन्टेक्ट लेंस लगा है तो आपको सोना नहीं है कॉन्टेक्ट लेंस लगा के, और अगर आपकी आंख में कुछ धूल मिट्टी चली गई है, आप आंधी वाधी आई है, तो उस एकदम से उसको निकाल के और कॉन्टेक्ट लेंस को भी साफ कर ले, आंख को धो ले, वो बहुत जरूरी है। आंख को उंगली से रगड़ना नहीं, अगर आपकी आंख के अंदर कॉन्टेक्ट लेंस है वो बिल्कुल भी नहीं करना, उससे आपकी आंख के अंदर जख्म होके हमेशा के लिए नजर के ऊपर असर हो सकता है।
0: जी, तो बहुत ध्यान रखना है और हाइजीन और साफ
1: हाइजीन को
0: सफाई
1: बिल्कुल
0: का ध्यान
1: मेंटेन
0: रखना।
1: करना है, और अगर आपको धूल मिट्टी गई है तो एकदम से आंख को साफ करना है, कॉन्टेक्ट लेंस को भी साफ करना है।
0: हमारे श्रोता हैं जो फोन लाइन पर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब आपसे। हेलो
2: मैडम नमस्ते।
0: जी नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
2: डॉक्टर साहब मैं आरपी पेशेंट हूँ, दिल्ली से बात कर रहा हूँ, जाहिद नाम है मेरा।
1: किस चीज के पेशेंट है?
2: आरपी आरपी
1: आरपी के। अच्छा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। हाँ जी
2: हाँ जी हाँ जी सर, तो कुछ हमारे लिए भी है कुछ ऐसा इलाज है कुछ का?
1: देखिए, इसका इलाज तो अभी मैं कहूंगा नहीं है बेसिकली, इसके अंदर अभी कुछ ऑपरेशन चिप्स वगैरह कंप्यूटराइज शुरू हुए हैं, वो वेस्टर्न कंट्रीज में शुरू हो गए, लेकिन अभी उसके रिजल्ट अच्छे नहीं हैं और उसको बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत महंगे भी हैं, तो इसलिए अभी उनका अभी प्रैक्टिकल यूटिलिटी हमारे देश के लिए अभी नहीं है।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब कुणाल सिंह हमें लिख रहे हैं, मैसेज करके भेजा है उन्होंने कि मेरे दादा की उम्र 73 इयर्स है और मुझे पूछना है कि उनको 2020 में कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुआ था, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि उनकी वेन्स वीक हैं जिसकी वजह से उनका विजन वापस नहीं आ पाया। अब 4 साल हो चुके हैं इस बात को और उनकी आंखों में पानी बहुत आता है और आई प्रेशर भी ज्यादा है, तो ये समस्या का वो निदान चाह रहे हैं।
1: देखिए, अगर आपके जैसे जो आप वेन्स जिसको कह रहे हैं, मुझे लगता नहीं वो वेन्स होगा, वो ऑप्टिक नर्व ही होगा, यानी कि आंख की नस जो है, क्योंकि वो आंख के अंदर, ये एक खास बात नहीं है, बड़ी आम बात है कि जब कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होता है तो प्रत्यारोपण के बाद आंख का प्रेशर बढ़ने लगता है, उससे नस सूख जाती है, अगर एक बार नस सूख जाए तो फिर दुनिया में किसी इलाज से नजर वापस नहीं आती, और अगर नस ही सूख चुकी है तो थोड़ा प्रेशर फिर ज्यादा रहता भी है, तो उसको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। दवाइयां जितनी कम से कम इस्तेमाल करेंगे उतना कम साइड इफेक्ट होंगे और कम जो है ना पानी आएगा, अगर नजर पूरी खत्म हो चुकी है तो दवाइयां इस्तेमाल ना करें, अगर नजर है थोड़ी बहुत फिर दवाइयां जरूर इस्तेमाल करें, उसमें बिल्कुल ही आपको गलती ना करें, क्योंकि अगर आपकी नजर है आपके दादाजी की और अगर वो प्रेशर

0: जितना भी मेंटेन कर सकें उसको जरूर करें, लेकिन अगर आपकी उनकी नजर बिल्कुल खत्म हो चुकी है तो फिर दवाइयां इस्तेमाल करके साइड इफेक्ट और पानी वगैरह के सिम्टम्स उनको मत दें।
1: तो अब एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्दी से वापस आएंगे, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: है, आंखों की तकलीफ है, तो मैं जल्दी जल्दी नाम लूंगी इन सबके, क्योंकि ये शामिल हुए हमारे कार्यक्रम में, इनका धन्यवाद जरूर देना चाहूंगी। साथ ही साथ चलने से पहले, क्योंकि इन सब बीमारियों की जड़ होती है हमारा उचित खान पान ना हो या हम आंखों की एक्सरसाइज ना कर रहे हो, तो आप ये जरूर बताइएगा कि क्या खाएं जिससे कि आंख स्वस्थ रहे, और कुछ एक्सरसाइजेस हों तो वो जल्दी जल्दी बता दें। मैं नाम लेती हूं, धर्मेंद्र कुमार सिंह जी ने अयोध्या उत्तर प्रदेश से हमें लिखा है, इसके अलावा हमें लिखा है मनदीप जी ने रोहतक से, राहुल ने न्यू दिल्ली से, सुशील ठाकुर जी का तो मैंने लिया था प्रश्न, उन्हें दोबारा से किया है, ओम प्रकाश खंडेलवाल जी का भी लिया था प्रश्न, सीतामढ़ी बिहार से प्रकाश कुमार जी ने लिखा है, इसके अलावा लिखा है हमें हरियाणा डिस्ट्रिक्ट करनाल से वाल्मीकि मंदिर, इन्होंने अपना एड्रेस लिखा है, लिखने वाले का नाम मुझे जोगिंदर सिंह इन्होंने लिखा है, आलोका जी ने लिखा है हमें नोएडा से, और इसके अलावा हमें लिखा है किशन लाल जी ने, इन्होंने अपनी उम्र भी लिखी है 75 ईयर्स, इसके अलावा प्रेमपाल सिंह ने दिल्ली से हमें प्रश्न किया है, ये सारे ही प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं, सरिता जी ने मेरठ से, और इसके अलावा सिधौली सीतापुर से यासीन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इन्होंने भी प्रश्न किया है, सुरेश पाल जी ने हमें प्रश्न किया है दिल्ली सुल्तानपुरी से, इन्होंने बहुत सारे प्रश्न है, अभी समय हमारे पास नहीं बचा है सर, हम सिर्फ ये चाहेंगे कि आप हमें उचित देखभाल अपनी आंखों की और खान पान और एक्सरसाइज पर बताएं।
1: मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि इसमें से ज्यादातर जो सवाल हैं जो मैं देख
0: जी,
1: पा रहा हूँ
0: जी,
1: तो पर्सनल है, इंडिविजुअल है,
0: हाँ
1: इंडिविजुअल
0: जी,
1: सवालों का जवाब देने का कोई हम दे नहीं पाते हैं कि उसके लिए,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि चेकअप की जरूरत होती है। तो
0: बिल्कुल
1: आपसे
0: सही कहा सर,
1: सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी नेत्र विशेषज्ञ को जाके दिखाएं। और दूसरा एक सवाल मैं जरूर लेना चाहूंगा, वो किसी के काले धब्बों के बारे में था,
0: हाँ जी
1: आंख के आगे काले धब्बे नजर आते हैं,
0: जी
1: तो वो जो है चीज 98-99% जो है वो उसका कोई मतलब नहीं होता, ये उम्र के साथ अपने आप होते हैं और अपने आप खत्म हो जाते हैं, लेकिन 1% जो केस होते हैं, 1 या 2% उसमें प्रॉब्लम जिसमें होती है वो बहुत सीरियस होती है, इसलिए ये सभी लोग जाके डॉक्टर को दिखाएं जरूर। और खास तौर पे अगर आंख के आगे किसी को फ्लैश भी नजर आती है कि लाइट नहीं है फिर भी लाइट नजर आती है तो उसको जरूर दिखाएं, बेशक 99% चांस ये है कि वो बिल्कुल ठीक रहे होंगे, कुछ भी नहीं होगा।
0: जी
1: और बाकी आप खान पान के बारे में बताया कि गर्मी में खास तौर पर हाइड्रेशन को ध्यान रखें, पानी पिए, शिकंजवी बना के पिए, नमक जो है आजकल फैशन बना हुआ है कि नमक कम लेना है, लेकिन गर्मी के अंदर नमक की बहुत अहमियत होती है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह इसीलिए किया था क्योंकि हमारे जो गर्म देश होते हैं इनके अंदर नमक की हमें बहुत जरूरत रहती है, तो शिकंजवी बना के पिए, पानी पिए, ठंडा पानी पिए और आंखों को धोएं, आंखों का बाहर जाएं तो आंख के साथ आंखों धोएं, ठंडा रखें, आंख बर्फ लगाएं आंख के ऊपर, ये सब चीजें हैं, इनका ध्यान रखें। और खाने में जहां तक सवाल रहता है कि आजकल पीले फल हैं, आम वगैरह हैं, ये सर्दी में गाजर आएगी, तो ये जो चीजें हैं जिनके अंदर विटामिन ए की क्वांटिटी ज्यादा होती है, दूध और अंडा, ये सब चीजों के अंदर जो एसेंशियल विटामिन होते हैं आंख के लिए, आंख की सेहत के लिए, वो अच्छे होते हैं। बाकी आंख के लिए आपने एक्सरसाइज के लिए पूछा, जनरल एरोबिक एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो आंख के लिए बिल्कुल अच्छी रहती है, उन्हीं से जो है आंख के अंदर प्रेशर भी कम रहता है और आंख की सेहत भी ठीक रहती है, लेकिन आंख के लिए कोई स्पेशल एक्सरसाइज जो है उसका कोई नहीं होती है, अनलेस की कोई खास किस्म की बीमारी होती है, जैसे स्क्विंट वगैरह में कुछ एक्सरसाइज करवाई जाती है, अदरवाइज आंख की कोई खास एक्सरसाइज स्पेशल एक्सरसाइज नहीं होती है।
0: जी, डॉक्टर साहब बहुत जल्दी जल्दी और बहुत सारे प्रश्नों के आपने जवाब दिए, समय कम पड़ गया हमें आज के प्रश्नों को शामिल करने के लिए, तो हम सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से हमारे साथ जुड़े, और खास धन्यवाद डॉक्टर मानवदीप सिंह जी का जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल नई दिल्ली में, आप यहां आए, समय निकालकर इतने प्रश्नों का जवाब दिया, स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब।
1: नमस्कार जी, शुक्रिया।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
4: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है। श्री मोदी ने कर्मचारियों को iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी अधिक युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार के प्रयासों का मुख्य जोर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष

2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में देश की यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। वहीं कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। श्री सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है। संसदीय कार्य और सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार सुगमता के क्षेत्र में तीव्रता से प्रगति कर रहा है। केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर वर्ष कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी विद्यार्थियों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि भारत दुनिया की एकमात्र ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावट के शुरुआती 76 दिनों के दौरान खुदरा ईंधन कीमतों को लगभग अपरिवर्तित रखा है। सूत्रों के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध और होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के बीच भारत वैश्विक तेल संकट का असर स्वयं पर लेता रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। वे मंगलवार को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। और IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। वर्कप्लेस के टॉक्सिक माहौल को ऐसे करें दूर, मेंटल हेल्थ रहेगी बेहतर। खराब माहौल से कर्मचारियों के काम पर भी बहुत असर पड़ता है। वर्कप्लेस में बढ़ते टॉक्सिक माहौल का मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। खराब माहौल से तनाव को दूर रखने के लिए ऑफिस में फन एक्टिविटीज में भाग ले। मन को शांत रखने के लिए ध्यान का सहारा भी ले सकते हैं। इस भागम भागी वाली जिंदगी में हर कोई कभी न कभी तनाव के दौर से जरूर गुजरता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कॉम्पिटिटिव स्तर पर तनाव लेना अच्छा होता है, लेकिन यदि तनाव ज्यादा दिनों तक रहे तो यह आपके लाइफस्टाइल को बुरी तरह से प्रभावित करता है। बदलते दौर में कई बार ऑफिस के काम के चलते भी लोगों में तनाव आ जाता है और वर्कलोड का स्ट्रेस मेंटल हेल्थ पर असर डालने लगता है। अगर आप मानसिक तौर पर मजबूत नहीं रहते तो इससे आपके ऑफिस वर्क पर भी सीधा असर पड़ता है। पिछले कुछ

समय में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां तेजी से बढ़ी है। मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिस पर खुलकर बात करना जरूरी है। अगर वर्कप्लेस में मानसिक स्वास्थ्य की बात की जाए तब ये और भी अधिक जरूरी हो जाता है। सभी कार्यस्थल पर एक ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है जो मानसिक तौर पर कर्मचारियों को रिलैक्स फील करे। अगर वर्कप्लेस का माहौल बेहतर है तो काम का प्रेशर भी आसानी से फेस किया जा सकता है। वर्कप्लेस का खराब माहौल मेंटल हेल्थ पर असर डालता है और इससे आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी और चिंता का शिकार होने लगते हैं। हालांकि कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे वर्कप्लेस पर मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा जा सकता है। हेल्थी बाउंड्रीज क्रिएट किए जा सकते हैं, जैसे आपको हर काम या फिर हर बात पर हाँ कहने की जरूरत नहीं है। आपको ये सीखना होगा कि आप कैसे शांत स्वभाव से दूसरों को कब और कैसे एक प्रोफेशनल की तरह न बोल सकते हैं। That means you have to learn to say no, न बोलना सीखे। ये एक बेहद जरूरी स्किल है। काम के बीच ब्रेक जरूर ले दोस्तों। कई लोग ऑफिस में काम के प्रेशर में लगातार घंटों बैठकर काम करते हैं। इसका मेंटल हेल्थ पर सीधा असर पड़ता है। इसीलिए जरूरी है कि काम के बीच में माइक्रो ब्रेक जरूर ले और इस दौरान कुछ शारीरिक गतिविधि करे। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ जिम्मेदारी मिलते ही लेकिन वह उस काम को ठीक से नहीं जानते हैं और इस वजह से वह इसे लेकर तनाव में रहते हैं। ऐसी स्थिति में आप किसी से मदद मांग सकते हैं। मदद मांगने से आप कमजोर साबित नहीं होंगे, हालांकि इससे आपके लोगों के बीच में मेलजोल जरूर बढ़ेगा जो आपको भविष्य में मदद करेगा। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। बीइंग कॉन्फिडेंट, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भरता, ये बेहद जरूरी है कि इस भागम भागी और जिम्मेदारी भरी जिंदगी में अपने लिए समय जरूर निकाले। कई लोग काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। हर दिन कुछ घंटे खुद के लिए निकाले। फन एक्टिविटीज में भाग ले, पार्टिसिपेट इन सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशनल वर्क। कई लोग वर्कप्लेस में काफी रिजर्व होते हैं। ऐसी आदत कई बार कर्मचारियों को अकेला बना देता है। तनाव को दूर रखने के लिए ऑफिस में फन एक्टिविटीज में हिस्सा लें। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें। मानसिक तौर पर मजबूत रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। आप खुद में ऐसी आदतों को डालें जो आपको आत्मनिर्भर बनाए। अच्छी फिटनेस के लिए जरूरी है कि हर दिन एक्सरसाइज या फिर योगा, मेडिटेशन, ये सब कर सकते हैं। एरोबिक एक्टिविटीज है, स्विमिंग है, डांस है, म्यूजिक थेरेपी है, ये सब आप अपनाएं। मन को शांत रखने के लिए ध्यान का सहारा भी ले सकते हैं। मेंटल हेल्थ को लेकर इन दिनों लोग जागरूक होने लगे हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी बेहद जरूरी है। अच्छी सेहत के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। खान पान में परहेज से लेकर जिम में घंटे एक्सरसाइज करने तक आप सब कुछ करते हैं। आप अपने शरीर पर कितना भी मेहनत कर ले, अगर आप मेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं देते तो आप सेहतमंद नहीं हो सकते। मेंटल हेल्थ से अक्सर लोगों को दिमाग के डिप्रेशन जैसी चीजें सामने आती है। रोजमर्रा के छोटे छोटे तनाव के बारे में हम सोचते ही नहीं है। आपको बता दे कि ऑफिस में होने वाले रोज के टेंशन भी आपके सेहत के लिए बुरी साबित हो सकती है। ऑफिस के तनाव का आपके काम पर तो असर पड़ता ही है, आपकी सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। आपको कोशिश करना चाहिए कि ऑफिस में मिलने वाले प्रेशर का आप पर ज्यादा असर न पड़े और आपके आसपास का माहौल खुशनुमा रहे। आइए आज के लम्हे प्रोग्राम में आरजे चेतन आपको बताते हैं कि कैसे आप ऑफिस में भी अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है
feedbackamc1@gmail.com. I repeat, feedbackamc1@gmail.com.

ऑफिस में अगर योगा, मेडिटेशन, डांस या कोई फन एक्टिविटीज हो रही है तो समय बचाने के चक्कर में न पड़े और बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें पूरे ऑफिस को बुलाया गया हो उसमें जरूर शामिल हो। अगर आपको कोई भी बात मानसिक रूप से परेशान कर रही है तो इस बारे में अपने सीनियर से बात करें। आपके बॉस को पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या दिक्कत है। बॉस के जवाब से आप भी समझ जाएंगे कि आगे आपको क्या कदम उठाने हैं। वर्क लाइफ बैलेंस ये बेहद जरूरी है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाए बिना आपके दोनों ही गाड़ियां पटरी से उतर सकती है। ध्यान रहे कि घर में तनाव का असर आपके काम पर न पड़े। इसी तरह ऑफिस की टेंशन ऑफिस के एग्जिट तक ही आपके साथ रहनी चाहिए। इसके बाहर की दुनिया आपकी अपनी है। वर्क स्टेशन की सजावट, हाउ यू डेकोरेट योर वर्क प्लेस, ये छोटा सा लेकिन बेहद कारगर तरीका है। अपने वर्क स्टेशन पर अपने पसंदी के चीज सजाए, अपने परिवार वालों के तस्वीर सजा सकते हैं और कोई मोटिवेशनल कोट सामने लगा सकते हैं या आपको चीयर करने में मदद करेंगे। सो ऑल चीयर्स टू लाइफ। विद दिस वी कंक्लूड टुडेस प्रोग्राम। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ लम्हे। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम माय डियर फ्रेंड्स, बाय। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

विवेक और ईशा पर पिक्चराइज इस गाने की म्यूजिक की बात करें तो यार रहमान साहब और इस्माइल दरबार ने मिलकर एक साउंडस्केप क्रिएट किया है जो क्लासिकल भी है, सिनेमैटिक भी है और स्पिरिचुअल भी है। हेलो एंड नमस्ते इंडिया, स्क्रॉल स्वाइप क्लिक, अल्फा जनरेशन, टेक सेवी, डायनेमिक और आज की दुनिया के यंगेस्ट कंज्यूमर्स, उनकी जिंदगी कहीं ना कहीं इन तीन वर्ड स्क्रॉल स्वाइप क्लिक के आसपास ही घूमती नजर आती है। इन्फॉर्मेशन उनके फिंगर टिप्स पर है, दुनिया उनके स्क्रीन पर है, लेकिन इस डिजिटल स्पीड के बीच कभी कभी जरूरत पड़ती है एक छोटे से पॉज की, एक डिटॉक्स की। आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम अल्फा जन के आज के एडिशन लेट्स डिटॉक्स में हम बात करेंगे कंपैरिजन डिटॉक्स के बारे में, जहां आज मैं हूं प्रियंका वर्मा आपके साथ। गुड इवनिंग।

रानी पाठक की आवाज में ये ट्रैक फ्रीडम एडवेंचर और सेल्फ डिस्कवरी की फीलिंग को ब्यूटीफुली कैप्चर करता है और इस ट्रैक्स में जो यूथफुल एनर्जी है ना वो इंस्टेंटली अपलिफ्ट करती है। आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है लेट्स डिटॉक्स। ए जाते हुए लम्हो जरा ठहरो जरा ठहरो, मुझे खुद से मिलना है, इस भागती हुई जिंदगी में अपनी धड़कनों को भी सुनना है, बस कुछ लम्हे चुरा कर वक्त से खुद के नाम करना है। तो आइए दोस्तों आज कुछ देर के लिए फास्ट पेस दुनिया से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ी देर ठहर कर खुद से मिलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कभी कभी खुद के साथ बैठना ही सबसे बड़ी इमोशनल हीलिंग होती है। डिटॉक्स के आज के एडिशन में हम बात करेंगे कंपैरिजन डिटॉक्स की। जब सोशल मीडिया की परफेक्ट पिक्चर, सक्सेस अपडेट्स और फिल्टर्ड स्माइल्स धीरे धीरे हमारी इनर पीस को अफेक्ट करने लगती हैं, हमारे दिल में अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करने लगती हैं, जब दूसरों की लाइफ देखते देखते अपनी रियलिटी अधूरी सी लगने लगती हैं और जब लोग क्या सोचेंगे से क्या मैं इनफ हूँ जैसे थॉट्स अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंस को एग्जॉस्ट करने लगते हैं, ड्रेन करने लगते हैं, जी हाँ, तो क्या होता है, चलिए इसी पे बात करेंगे। आज मैं और मेरा डेली रूटीन एक छोटा सा इमोशनल चेक इन करेंगे। आज हम आपसे पूछेंगे कि क्या मैं अपनी लाइफ को ट्रूली फील कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, या हर वक्त किसी और की लाइफ को खुद से कंपेयर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या अपनी ग्रोथ को अप्रिशिएट करती हूँ या करता हूँ, या सिर्फ दूसरों के अचीवमेंट्स को देखकर खुद को जज करती हूँ या करता हूँ, क्या मेरी डेली स्क्रॉलिंग मुझे इंस्पायर कर रही है या धीरे धीरे मेरे इनर पीस को ड्रेन कर रही है, और सबसे जरूरी, क्या मैं वैलिडेशन के शोर में खुद को खो रहा हूँ या खो रही हूँ, या मैं अपनी इंडिविजुअलिटी को जेन्युइनली समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ। तो आइए थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, कंपैरिजन की नॉइज को हल्का करते हैं, खुद की जर्नी को फिर से फील करते हैं और अपनी फ्रिक्वेंसी को ग्रैटिट्यूड और सेल्फ ग्रोथ के साथ रिकनेक्ट करते हैं, क्योंकि जब हम वैलिडेशन के प्रेशर से बाहर निकलना सीख लेते हैं तभी जिंदगी की असली रिदम वापस महसूस होने लगती है और कंपैरिजन से लिब्रेशन तक का सफर शुरू होता है। चलिए फिलहाल ये गाना भी हम प्ले करते हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

इंस्पायरिंग पेट्रियोटिक ट्रैक को आपने सुना जो देशभक्ति के जज्बे को दिल से महसूस कराता है, एक सेंस ऑफ प्राइड और रिस्पॉन्सिबिलिटी को जगाता है। नेशन कम्स फर्स्ट का सेंस पूरे गाने में रिफ्लेक्ट होता है। आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जेन, जहां आज लेट्स डिटॉक्स के एडिशन में हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन डिटॉक्स की। रील्स, अपडेट, स्टोरी सब दिल को भटकाते हैं। जरा गौर फरमाइएगा, रील्स, अपडेट, स्टोरी सब दिल को भटकाते हैं, रियल लाइफ और रील लाइफ में कश्मकश बढ़ाते हैं। क्यों ना अपनी जिंदगी के रिदम को फिर से महसूस किया जाए, कंपैरिजन से दूर रहकर खुद में सुकून पाया जाए। आज के डिजिटल जमाने में दोस्तों, सोशल मीडिया हमारी डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। ये हमारे ब्रेन और इमोशंस दोनों को डीपली इन्फ्लुएंस करता है और हम सुबह उठते ही नोटिफिकेशन चेक करते हैं ना, और रात को सोने से पहले भी स्क्रॉलिंग करते हैं। अब झूठ मत बोलेगा, करते हैं। रील्स, अपडेट, स्टोरीज या वायरल लाइफस्टाइल कंटेंट देखते देखते हमारा माइंड अनोइंगली कंपैरिजन मोड में चला जाता है। किसी की लग्जूरियस लाइफस्टाइल, परफेक्ट सेल्फीज, हैप्पी रिलेशनशिप्स या करियर सक्सेस देखकर हम अक्सर अपनी लाइफ को उनके स्टैंडर्ड से कंपेयर करने लगते हैं, और वहीं से शुरू होता है इमोशनल प्रेशर। सबकी लाइफ इतनी सॉर्टेड लगती है, सिर्फ मैं ही स्ट्रगल क्यों कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं इतना अनहैप्पी क्यों हूँ, मेरी लाइफ इतनी परफेक्ट क्यों नहीं है बॉस, सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं क्यों पीछे रह गई हूँ या रह गया हूँ। इसमें कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा जो थकावट ना फिजिकल नहीं होती, इमोशनल कंपैरिजन की होती है। वो कंपैरिजन जो साइलेंटली सेल्फ वर्थ को कम कर देता है, जो इंसान को ये महसूस कराता है कि शायद वो इनफ नहीं है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो अक्सर सिर्फ एक सिलेक्टेड मोमेंट होता है, पूरी कहानी नहीं। हर मुस्कुराहट के पीछे स्ट्रगल्स होते हैं जनाब, हर सक्सेस के पीछे एंग्जाइटी और हर परफेक्ट लाइफ के पीछे अनस्पोकन लोनलीनेस भी हो सकती है। लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ फिल्टर्ड हैप्पीनेस नजर आती है और हम उस फिल्टर्ड दुनिया को अपने रियल इमोशन से कंपेयर करने लगते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ लेते हैं कि ऑनलाइन दुनिया में लोग अपनी लाइफ के मोस्टली बेस्ट मोमेंट्स ही शेयर करते हैं। फेलियर, लोनलीनेस, स्ट्रेस, इनसिक्योरिटीज और इमोशनल ब्रेकडाउन्स यूजली कैमरे के पीछे रह जाते हैं। इसलिए सोशल मीडिया की हाईलाइट रील क्रिएट करता है, जबकि रियल लाइफ इमोशंस काफी लेयर्ड और इम्परफेक्ट होते हैं, जो बर्डन महसूस कराते हैं। कंपैरिजन डिटॉक्स इसी इमोशनल बर्डन से बाहर निकलने का नाम है बंधु। दोस्तों, जब हम किसी की एडिटेड हाइलाइट्स को अपनी रियल लाइफ स्ट्रगल से कंपेयर करने लगते हैं, इससे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल इंक्रीज हो सकता है और सेल्फ इस्टीम ग्रेजुअली लो होने लगता है। कंपैरिजन डिटॉक्स का मतलब सोशल मीडिया को कम्प्लीटली क्विट करना नहीं है, बल्कि उसके साथ हेल्दी

रिलेशनशिप बनाना है। हर चीज को रियलिटी मान लेना जरूरी नहीं होता। कभी कभी फोन साइड पर रखकर अपने रियल लाइफ कनेक्शंस, हॉबीज और इनर पीस पर फोकस करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। जब अटेंशन कंपैरिजन से हटकर ग्रेटिट्यूड पर शिफ्ट होती है ना, जी हाँ बंधु, यानी जब हम फोकस इस बात पर शिफ्ट करते हैं कि मेरे पास क्या नहीं है से मेरे पास क्या है, द माइंड ग्रेजुअली पीसफुल फील करने लगता है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा काम और इमोशनली फील बैलेंस करता है। रिसर्च भी यही सजेस्ट करते हैं कि ग्रैटिट्यूड और सेल्फ एक्सेप्टेंस ब्रेन में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स को सपोर्ट करते हैं। इसलिए जब हम अपनी लाइफ के स्मॉल अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं तो कंपैरिजन का प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगता है। जिंदगी किसी रेस का स्कोरबोर्ड नहीं है मेरे बंधु। हर इंसान की स्टोरी, टाइमिंग और स्ट्रगल्स और ग्रोथ पैटर्न अलग होते हैं। सोशल मीडिया की फिल्टर्ड दुनिया से थोड़ा डिटॉक्स लेकर जब हम अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं तभी असली सुकून और इमोशनल फ्रीडम महसूस होती है। इसलिए करके देखिए मेरे बंधु, फिलहाल ही गाना सुनकर देखिए। मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ प्रोग्राम लेट्स डिटॉक्स में।

सुन, जाते जाते एक गल सुन दी जा। लाके कदे आस किसे खास ते ना बैठी, जड़ा लंघ गया वेला इतिहास ते ना बैठी। मुक जाना मैं, सुख जाना मैं, फुल जया लैके मेरी लाश ते ना बैठी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है लेट्स टॉक। आज के एडिशन में हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन डिटॉक्स की और आज मैं हूं प्रियंका वर्मा आपके साथ।

गौजी की टाइमलेस कॉम्पोजिशन को फिल्म कहानी में मॉडर्न येट सोलफुल टच के साथ प्रेजेंट किया गया। आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है यस लेट्स डिटॉक्स, और आज हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन डिटॉक्स की। कंपैरिजन की भीड़ में खुद को खोना जरूरी तो नहीं, कंपैरिजन की भीड़ में खुद को खोना जरूरी तो नहीं। हर चमकती तस्वीर के पीछे सुकून हो ये भी जरूरी नहीं। जब ग्रैटिट्यूड और सेल्फ ग्रोथ की दिल की फ्रिक्वेंसी बन जाए, जब ग्रैटिट्यूड और सेल्फ ग्रोथ दिल की फ्रिक्वेंसी बन जाए, तब जिंदगी रेस और कंपैरिजन नहीं एक खूबसूरत सफर बन जाए। आज के डिजिटल एरा में कंपैरिजन एक साइलेंट हैबिट बन चुकी है। किसी की सक्सेस स्टोरी, किसी की लग्जरी लाइफस्टाइल, किसी की परफेक्ट लाइफ देखते देखते हम खुद अपनी जर्नी को इग्नोर कर देते हैं और पता ही नहीं चलता कि हमने ये सब कब कर दिया। दिल बस ये सब देखकर चुपचाप अपनी कमियां गिनने लगता है, मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी नहीं है, बाप रे। सोशल मीडिया का कांस्टेंट एक्सपोजर हमारे ब्रेन को बार बार ये सिग्नल देता है कि शायद हम इनफ नहीं है। दिल के अंदर एक साइलेंट क्वेश्चन उठता है, क्या मैं पीछे रह गया हूँ या रह गई हूँ? और इसी जगह से शुरू होता है इमोशनल एग्जॉशन, सेल्फ डाउट और इनर डिससैटिस्फेक्शन का साइकिल। साइकिल को तोड़ने का नाम है कंपैरिजन डिटॉक्स, और इसी इमोशनल क्लटर को क्लीन करने का नाम है यस कंपैरिजन डिटॉक्स। और इस डिटॉक्स का सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन है ग्रैटिट्यूड और सेल्फ ग्रोथ की फ्रीक्वेंसी। कंपैरिजन डिटॉक्स का मतलब दुनिया से डिसकनेक्ट होना नहीं है, बल्कि खुद से रिकनेक्ट होना है। ग्रैटिट्यूड यानी शुक्र और अप्रिसिएशन की फीलिंग ब्रेन के इमोशनल सर्किट्स को काम करती है। जब हम कॉन्शियसली उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास है, हेल्दी रिलेशनशिप, स्मॉल अचीवमेंट्स, इनर पीस, डेली कम्फर्ट्स, ए केयरिंग फैमिली, अपनी हेल्थ, अपनी मेहनत, तो ब्रेन डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स रिलीज करता है। ये केमिकल्स इमोशनल स्टेबिलिटी और पॉजिटिविटी को नेचुरली इंक्रीज करते हैं। इसलिए ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक इमोशन नहीं है, एक हीलिंग फ्रिक्वेंसी है। जब इंसान ग्रैटिट्यूड फील करता है ना दोस्तों, तब उसका फोकस लैक से वैल्यू की तरफ शिफ्ट होने लगता है। धीरे धीरे दिल में कंप्लेंट कम और कंटेंटमेंट ज्यादा लगती है, और वही कंटेंटमेंट कंपैरिजन के नॉइज को कम करता है। लेकिन हाँ, सिर्फ ग्रैटिट्यूड ही इनफ नहीं होता, उसके साथ जरूरी होती है सेल्फ ग्रोथ की फ्रिक्वेंसी। सेल्फ ग्रोथ का मतलब परफेक्ट बनना बिल्कुल नहीं होता है, इसका मतलब होता है हर दिन थोड़ा बेटर बनना बस। कभी अपनी आदतों को इम्प्रूव करना, कभी इमोशनल हीलिंग पर काम करना, कभी अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना, कभी सिर्फ इतना समझना कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है। जब हम दूसरों की स्पीच से अपनी वर्ड डिसाइड करना छोड़ देते हैं, तब ग्रोथ नेचुरली बिगिन होती है। फिर इंसान रेस में नहीं भागता दोस्त, बैलेंस सीखता है। मीनिंगफुल सेल्फ ग्रोथ हमेशा अंदर से शुरू होता है, वो लाउड नहीं होता, लेकिन लाइफ को डीपली ट्रांसफॉर्म करता है। कंपैरिजन हमें टेम्परेली इनसिक्योर बना सकता है, लेकिन ग्रैटिट्यूड और सेल्फ ग्रोथ हमें इमोशनली ग्राउंडेड बना देता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है बंधु, बिल्कुल। ये दोनों मिलकर कैसी इनर फ्रिक्वेंसी क्रिएट करता है, जहाँ इंसान वैलिडेशन से ज़्यादा इनर पीस को इंपॉर्टेंस देने लगता है। तब लाइफ कॉम्पिटिशन नहीं लगती, एक पर्सनल जर्नी लगती है। कंपैरिजन डिटॉक्स का असली सेंस शायद यही है, दूसरों की कहानी देखकर खुद को कम समझना बंद कर देना और अपनी कहानी को प्यार और पेशेंस के साथ जीना शुरू कर देना, है ना? मुझे भी यही लगता है। चलिए फिलहाल अभी तो हमें एक गाना प्ले करना है।

वैसे ये ट्रैक कितना वायरल हुआ है ना, सीरियसली इस ट्रैक में प्यार की सॉफ्टनेस और लॉन्गिंग दोनों ब्यूटीफुली ब्लेंड होते हैं। और इस ट्रैक का जो रियल मैजिक है वो है इसके वोकल्स। जैस्मिन और सतेंद्र की अपनी अलग अलग टेक्सचर्स के साथ एक खूबसूरत इमोशनल कैनवास ही दोनों क्रिएट करते हैं। उन दोनों के वोकल ट्रांजिशन मैजिकल भी हैं, जहाँ गाना एक एहसास से दूसरे एहसास में स्मूथली ग्लाइड करता है। आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वैलिडेशन के शोर में खुद को यूं खो देना, वैलिडेशन के शोर में खुद को यूं खो देना, हर अप्रूवल के साथ खुद को यूं कंपेयर करना, क्यों ना अपनी जिंदगी की रिदम को फिर से महसूस किया जाए और कंपेरिजन से लिब्रेशन तक के सफर में खुद को वापस पा लिया जाए। आज के वक्त में बहुत से लोग अननोइंगली वैलिडेशन की रेस में जी रहे हैं दोस्तों। किसी को अपनी अचीवमेंट्स दिखानी है, किसी को परफेक्ट इमेज मेंटेन करनी है, किसी को सिर्फ ये फील करना है कि लोग उन्हें अप्रिशिएट करें। धीरे धीरे इंसान अपनी हैप्पीनेस को दूसरे के रिएक्शन से कनेक्ट कर लेता है। एक कॉम्प्लीमेंट मिल जाए तो कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, और इग्नोर हो जाए तो दिल चुपचाप खुद पर सवाल करने लगता है। और यही वैलिडेशन का इमोशनल ट्रैप है बंधु। सोशल मीडिया ने इस फीलिंग को और इंटेंस बना दिया है। लाइक्स, कमेंट्स, व्यूज और एप्रिसिएशन के नंबर्स धीरे धीरे सेल्फ वर्थ के मेजर बनने लगते हैं। इंसान अपनी रियलिटी से ज़्यादा दूसरों के अप्रूवल को इम्पोर्टेंस देने लगता है और फिर कंपेरिजन साइलेंटली लाइफ का पार्ट बन जाता है। अरे हाँ दोस्तों, एक बात और, ये मत सोचना कि ये सब आपके साथ होता है। ना ना, हम भी उसमें शामिल हैं, हम भी अपने आप को धीरे धीरे हील करते रहते हैं दोस्तों। दिल के अंदर बार बार थॉट आते हैं, क्या मैं इनफ हूँ, लोग क्या सोचेंगे, लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, मैं इनफ लग रहा हूँ या लग रही हूँ। और इसी जगह कंपैरिजन साइलेंटली लाइफ में एंटर कर जाता है। इसी इमोशनल प्रेशर को समझना, उससे बाहर निकलना ही कंपैरिजन डिटॉक्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आज के डिजिटल एरा में दोस्तों वैलिडेशन की क्रेविंग और भी ज़्यादा बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर लाइक्स, कमेंट्स और रिएक्शन सिर्फ नंबर्स नहीं रहे, वो इमोशनल रीअश्योरेंस बन गए हैं। जब एप्रिसिएशन मिलता है तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और जब रिस्पॉन्स कम मिलता है तो इंसान अननोइंगली खुद पर डाउट करने लगता है। लेकिन सच ये है कि एक्सटर्नल वैलिडेशन कभी परमानेंट सुकून नहीं दे सकता, वो सिर्फ टेम्प्रेरी सेटिस्फैक्शन देता है, क्योंकि दूसरों के ओपिनियंस हर वक्त चेंज होते रहते हैं। अगर हम अपनी पीस को उनके रिएक्शन पे बांध देंगे ना, तो हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी भी उनके अकॉर्डिंग ही अप डाउन होती रहेगी। इसी इमोशनल डिपेंडेंसी को समझना और धीरे धीरे उससे फ्री होना ही कंपैरिजन डिटॉक्स का इंपॉर्टेंट एसेंस है। वैलिडेशन से लिब्रेशन तक का सफर एक्चुअली सेल्फ वर्थ को डिस्कवर करना ही होता है। लिब्रेशन यानी इमोशनल फ्रीडम तब बिगिन होती है जब इंसान ये समझने लगता है कि बार बार सबको इम्प्रेस करना ज़रूरी नहीं होता। हर इंसान की एक्सप्रेशन अलग होती है और सबको अप्रूवल कभी एक साथ मिल ही नहीं सकता। जी वो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हर इंसान की चॉइस, पर्सनालिटी और जर्नी अलग होती है। सबको खुश रखना पॉसिबल ही नहीं है, हम कोई राजमा चावल थोड़ी हैं कहते हैं ना। और जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि तब अंदर का एक चेंज से सुकून हमें आता है। और शायद यही कभी कभी सबसे बड़ा हीलिंग मोमेंट होता है, जब इंसान खुद को ये कह पाता है कि मुझे हर बार प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। उस मोमेंट में एक अजीब सा इमोशनल सुकून होता है। फिर इंसान लाइक्स और अप्लॉज के पीछे भागना कम कर देता है और अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखता है। अपने इम्परफेक्शंस के साथ भी खुद को प्यार करना सीखता है। लिब्रेशन का मतलब परफेक्ट बनना नहीं होता, बल्कि अपने फ्लॉज के साथ खुद को इनफ फील करना होता है। इसका मतलब केयरलेस और इमोशनललेस बनना बिल्कुल भी नहीं होता मेरे बंधु। अपनी वर्थ को समझना होता है, इसका मतलब खुद को कॉन्स्टेंटली प्रूव करना बंद करना, अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करना और अप्रूवल के बिना खुद को इनफ फील करना। ये सब फॉलो करके धीरे धीरे कंपैरिजन का नॉइस कम होने लगता है और इनर पीस की वॉइस क्लियर होने लगती है। ये प्रोसेस ईजी नहीं होता, क्योंकि वैलिडेशन की आदत धीरे धीरे इमोशनल डिपेंडेंसी बन जाती है। लेकिन जब इंसान कॉन्शियसली सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस पर काम करता है, तो कंपैरिजन का प्रेशर कम होने लगता है। और फिर यानी धीरे धीरे कंपैरिजन का नॉइज़ कम होने लगता है। पर इंसान दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, खुद के इनर पीस के लिए जीना शुरू करना है। वैलिडेशन से लिब्रेशन तक का सफ़र बहुत इमोशनल होता है दोस्तों। प्लीज़, बेसिकली ये सफ़र अपनी थिंकिंग को हील करने का सफ़र होता है, क्योंकि इस सफ़र में इंसान दुनिया की नज़रों से निकल कर अपनी खुद की नज़रों में जीना सीखता है। और शायद कंपैरिजन डिटॉक्स का ब्यूटीफुल लेसन भी यही होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। वे आज अमेरिका से कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मशीनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है। श्री मोदी ने कर्मचारियों को आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नव नियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का अथक प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। वहीं कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। हालांकि भारत दुनिया की एकमात्र ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावट के शुरुआती 76 दिनों के दौरान खुदरा ईंधन की कीमतों को लगभग अपरिवर्तित रखा है। सूत्रों के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के बीच भारत वैश्विक तेल संकट का असर स्वयं पर लेता रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है। लखनऊ में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नाम है समझा।
1: गुड इवनिंग जी। इस चिलचिलाती गर्मी में जो हम इतने दिन से झेलते आ रहे हैं, ये ठंडा ठंडा सा गुड इवनिंग स्वीकार करें। आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ, जुड़े हैं आप सभी और प्रोग्राम सिटी लाइट्स लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी आरजे आपकी दोस्त दीपांशी। भाई जो सूरज देवता है ना, अपनी प्रचंडता के साथ हमें पूरी की पूरी गर्मी देते हुए चमक तो रहे हैं, लेकिन हम अपनी बातों को तो ठंडा रख ही सकते हैं ना। अपनी बातचीत जो है ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी रखेंगे तो कुछ ठंडक तो हम तक पहुंच ही जाएगी।

बस आपको थिरकाना था क्योंकि अब इतनी गर्मी है, कहीं बाहर तो जा नहीं रहे हैं ना, तो घर में बैठे बैठे अच्छा सा म्यूजिक सुनते हैं, गाने सुनते हैं, गुनगुनाते हैं और थोड़ा सा थिरक लेते हैं। वेल मुझे ना डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि मेरा जो थोड़ा सा रुझान है ना, और मुझे गाने सुनना, गीत गुनगुनाना, ये थोड़ा ज़्यादा पसंद है। पर ये एक ऐसा गाना है कि जब भी आता है ना तो जो पैर है ना वो खुद ब खुद थोड़ा सा थिरकना शुरू कर देते हैं। खैर आइए, अभी हम बात कर रहे थे गर्मी की, और जैसे कि हम जानते हैं कि भाई ये जो हीट वेव चल रही है और ये जो गर्मी है, इस सबसे इससे हम सभी जो हैं काफ़ी परेशान हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तापमान क्या है। तापमान की अगर बात की जाए तो आज पूरा दिन ही सनी दे रहा है और करीब करीब 41 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है वो आज देखा गया। वेल अगर थोड़ा सा मौसम की और बात करें, मौसम ने कहीं कहीं पर थोड़ी सी करवट ज़रूर ली है और कहीं कहीं थोड़ी सी बौछारें और हल्की फुल्की सी जो थंडरिंग है वो देखी गई है। कई जगहों पे देखा गया है कि थोड़ी सी जो बूंदाबांदी है वो ही है, लेकिन IMD ने 6 दिन का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, लेकिन फिर भी ये चेतावनी सभी लोगों को दी गई है कि 28 मई तक सभी को सावधानी बरतना ज़रूरी है। जी हाँ, तापमान में अभी गिरावट बहुत अधिक नहीं आई है, केवल 1 डिग्री सेल्सियस की ही थोड़ी सी गिरावट देखी गई है, लेकिन और ये भी कहा गया है कि औपचारिक रूप से अगर हीट वेव की बात करें तो हीट वेव भी नहीं आई है, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तापमान बहुत अधिक है, अपने आप को सेफ गार्ड करके चलना, अपना ध्यान रखना, हाइड्रेशन का ध्यान रखना, डायरेक्टली सन के नीचे नहीं जाना, 12 से 4 बजे का जो एक टाइम पीरियड होता है उसमें अवॉइड कीजिए अगर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर काम है जा भी रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा अपने जो सर है उसको कवर करके जाएं और आँखों को कवर करके जाएं ताकि बहुत ज़्यादा जो गर्मी है वो डायरेक्टली सर पर ना पड़े। तो 28 मई तक का थोड़ा सा टाइम और निकाल लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत और कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान अपना और रख लेते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, छाछ पीजिए, पानी पीजिए, लेकिन नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं का प्रयोग कीजिए, और कोल्ड ड्रिंक्स और ये सारी चीज़ें जो हमें आकर्षित तो बहुत करती हैं लेकिन उनकी तरफ जाने से बचिए। तो नारियल पानी पीजिए, खूब छाछ पीजिए, लस्सी पीजिए, हाइड्रेशन का ध्यान रखिए। और 28 मई तक IMD ने जो ये चेतावनी दी है या सावधानी बरतने की जो सलाह दी है, इस सलाह का पालन भी करना है और अपना बहुत सारा ध्यान रखना है। और ठीक है, मौसम तो बदलते रहते हैं, अभी गर्मी है तो सुहावना मौसम भी आएगा, बारिश भी आएगी और उसके बाद ठंडी भी आएगी, इसी तरह से लाइफ को इंजॉय करते रहना चाहिए, है ना। दिस शुड बी द मोटो ऑफ लाइफ। और हमारा मोटो ऑफ लाइफ क्या है? आपको प्यारे प्यारे गाने सुनाना। दिस कम्स योर वे, बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है, बहुत

आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ, प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स, मैं हूं आपके साथ दीपांशी। और अब हम दिल्ली वालों के लिए एक इम्पॉर्टेंट खबर, और आज फिर से जी हां शनिवार को पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में थोड़ी सी फिर दोबारा से थोड़ी सी उसे बढ़ाया गया है। अगर पेट्रोल की बात करें तो उसे 87 पैसे पर लीटर बढ़ाया गया है, और डीजल की बात करें तो उसे 91 पैसे पर प्रति लीटर बढ़ाया गया है। और ये पिछले 10 दिन में तीसरी बार पेट्रोल और डीजल की रेट्स को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जी हाँ हमारे भारत में पेट्रोल और डीजल की सप्लाईज की बात करें तो एडिक्वेट उसकी सप्लाईज हैं, और इसमें किसी भी तरह की कोई चिंता करने का विषय नहीं है। पर अब अगर आज के पेट्रोल और डीजल की बात करें तो 98 रुपये 64 पैसे से अब इसका जो मूल्य है वो 99 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर हो गया है। और वहीं डीजल के प्राइस की बात करें तो 91 रुपये 98 पैसे से अब 92 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर इसका मूल्य हो गया है। अब क्या करें, पेट्रोल का प्राइसेस तो बढ़ रहा है लेकिन जाना भी है, तो थोड़ा सा अपने ये जो जीवन शैली है, अपना जो रूटीन है, इसे थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करने की शुरुआत करते हैं। जो भी हमारे पास मेट्रोज हैं या बसेस की सुविधा है उसका प्रयोग ज़्यादा करें, और उसके साथ ही कोशिश करें कि अगर एक

डेस्टिनेशन पर जाना है और ऑफिस ही जा रहे हैं, तो जो तीन चार कलीग्स हैं वो साथ में कार पुलिंग करके जाएं, इससे क्या होगा, हमारा पेट्रोल भी सेव होगा और उसके साथ साथ हम अपनी पॉकेट में भी थोड़ी सी सेविंग कर पाएंगे। वेल, सिर्फ सोचने की बात है, पर्सपेक्टिव की बात है, थोड़ा सा आइडिया लगाने की बात है कि किस तरह से इस तरह की जब भी सिचुएशंस आती हैं किस तरह से हम कहीं ना कहीं अपनी पॉकेट का भी ध्यान रख सकते हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं और सोसाइटी एट लार्ज उनके लिए भी थोड़ी सी मदद का काम कर सकते हैं। और फिर भी अगर घूमने निकल गए हैं, इस समय गाड़ी में हैं और हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो ये प्यारा सा गाना आप सभी के लिए, जुड़े हैं आप आकाशवाणी FM रेनबो पर प्रोग्राम सिटी लाइट्स में मेरे यानी दीपांशी के साथ।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे हवा महल कार्यक्रम के बारे में। जी हाँ, वही आपका मन पसंदीदा हवा महल कार्यक्रम। 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती पर हवा महल कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ये कार्यक्रम 15 मिनट के हल्के फुल्के रेडियो नाटकों और स्किट्स पर आधारित था। इसमें भारतीय लोक कथाओं, सामाजिक विषयों और रोजमर्रा की जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभवों को नाटकीय और रोचक अंदाज में पेश किया जाता था। 1970 और 1980 के दशक में अपनी लोकप्रियता के चरम पर पहुंच चुके इस कार्यक्रम का 25 अक्टूबर 1972 को 1000वां एपिसोड प्रसारित हुआ। हवा महल कार्यक्रम भारतीय रेडियो के स्वर्णिम दौर का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा के बारे में और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी 90 में। फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे यानी निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ जुड़े हैं आप और प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट। सिटी लाइट्स वही प्रोग्राम भाई जिसमें हम आपको देते हैं कि अपनी दिल्ली में क्या कुछ नया चल रहा है जो आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए है जानना ज़रूरी। तो बस वो जो खबरें हैं ना, हम आपको देते रहेंगे यहीं पे। आपको कहीं जाना नहीं है, बस बने रहना है हमारे साथ। और मैं हूँ आपके साथ इस प्रोग्राम में दीपांशी, मिलने आई हूँ खास आप ही से। ये गाना एंजॉय कीजिए और उस तरफ मैं फिर लेकर आई कोई इम्पोर्टेंट खबर आपके लिए।

आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ, प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स। और सिटी लाइट्स में अब एक बहुत ज़रूरी बात ये है कि अगर आज हम अपनी इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड की बात करें ना, और जिस तरह से समय बदल रहा है, जिस तरह से लोगों का स्किल सेट बदल रहा है, और जितना कॉम्पिटिशन आज है उसमें केवल अगर एक डिग्री की बात की जाए, डिग्री हासिल करना शायद अब पर्याप्त नहीं माना जा रहा है, सफिशेंट नहीं है, इनफ नहीं है। इसीलिए आज के इस प्रतिस्पर्धी दौर में चाहे युवा हो या नौकरी पेशा लोग हो या अन्य वर्ग के लोग हो, उनकी आजकल ये मांग है और उनकी ज़रूरत शायद बन गई है कि उनके लिए कहीं ना कहीं जो स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं, जो स्किल आधारित शिक्षा है, उसका होना बहुत ज़रूरी माना जा रहा है। और लोगों को लग रहा है कि अगर हम अपने स्किल सेट में आने वाले समय में बदलाव नहीं करेंगे, उसे अपग्रेड नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, जो भी चीज़ें हम पाना चाहते हैं, जो भी हमने अपने लिए तय किया हुआ है कि इस मंजिल तक पहुँचना है, वहाँ शायद पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल लगे। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन ने कई सर्टिफिकेट कोर्सेज और शॉर्ट टर्म कोर्सेज की शुरुआत की है। इन कोर्सेज को संचालित किया जा रहा है। एक बार फिर से आपको बताएं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, इन्होंने कई कोर्सेज जो शॉर्ट टर्म भी हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, उन्हें उसकी शुरुआत कर दी है। और अगर इसके बारे में बात करें तो इसका जो उद्देश्य है वो नई कौशल क्षमता को बढ़ाना और उसके बाद उन्हें करियर और जो रोज़गार के अवसर हैं उनसे रूबरू कराना और उन्हें वो प्रदान करना है। और ये जो कोर्सेज हैं ये केवल युवाओं के लिए नहीं है, इसमें चाहे कोई विद्यार्थी है या नौकरी पेशा है, कोई गृहिणी है, या अगर आप बुज़ुर्ग हैं और आपको लगता है कि हमें अपना थोड़ा सा समय जो है वो अच्छे से बिताने की ज़रूरत है, कुछ नया सीखना चाहते हैं, क्योंकि हम भी सभी ये मानते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं है, सीखना चाहते हैं, तो भी आप इन कोर्सेज का रुख कर सकते हैं। ये कोर्सेज कोई भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसने 12वीं कक्षा की हुई है। तो अगर आप 10+2 कर चुके हैं तो उसके बाद आप इसमें दाखिला ले सकते हैं। और इसकी जो अवधि है, कोर्स की अगर अवधि की बात की जाए तो 3 महीने की जनरल अवधि इसकी रहती है, और साल में 3 बार इसका आयोजन भी किया जाता है, मई, जून, अक्टूबर, नवंबर, और उसके बाद जनवरी, फरवरी में इसमें प्रवेश दिया जाता है। तो अभी मई और जून के जो कोर्सेज हैं उसमें प्रवेश चल रहा है, आप इसमें जाइए, इसके बारे में पढ़िए। और आजकल की जो थोड़े से ट्रेंडिंग कहूँगी, क्योंकि आज शायद जब हम रोज़गार की बात करते हैं, जॉब्स की बात करते हैं, तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर हमने देखा है कि वहाँ पर लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर मैन पावर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसी से जुड़े कुछ कोर्सेज भी बनाए गए हैं। जैसे इस विभाग में इस समय ट्रैवल एंड टूरिज्म, काउंसलिंग गाइडेंस और इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसकी प्रोफिशिएंसी के जैसे सर्टिफिकेट जो कोर्सेज हैं वो चलाए जा रहे हैं। और इन कोर्सेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे, उसका जो करिकुलम है, उसका जो स्ट्रक्चर है, इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो विद्यार्थी है वो केवल थ्योरी ना पढ़े, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो भी प्राप्त कर सकता है। और अगर आप नौकरी पेशा हैं, क्योंकि आपको अपने काम पर भी जाना है और आपका समय भी सीमित है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा इसे फ्लेक्सिबल बनाया गया है। वीकेंड की या इवनिंग जो क्लासेस हैं, वीकेंड क्लासेस की सुविधा भी आपको इसमें उपलब्ध कराई जाएगी। इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उस पर काफ़ी जोर दिया गया है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में, भविष्य में, जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है उसकी मांग ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर आप केवल अपनी सिर्फ नॉलेज ही नहीं बढ़ाते हैं, नॉलेज के साथ साथ आप अपने स्किल सेट को अपग्रेड करते हैं। इससे आपका जो आत्मविश्वास है वो तो बढ़ता ही बढ़ता है, उसके साथ आप जब इस कंपेटिटिव वर्ल्ड का हिस्सा बनते हैं, बाहर जाते हैं, तब आपको और कॉन्फिडेंस आता है, आपको लगता है कि ये काम हम और एफिशिएंसी के साथ कर पाएंगे। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज़ जाइए, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्ट कीजिए, उनकी वेबसाइट को देखिए और इन कोर्सेज के बारे में पढ़िए, क्योंकि आई एम श्योर इस तरह की जो कोर्सेज है कहीं ना कहीं हमारी स्किल को अपग्रेड करने में काफ़ी हद तक हमें मदद करते हैं।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: सुरों की शाम होगी यादगार, आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराधना।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित।
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे। कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म

0: देव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ प्रोग्राम सिटी लाइट्स में। मैं हूं आपके साथ दीपांजी। आप दिल्ली वालों के लिए एक और ज़रूरी खबर। कितनी बार होता है ना, हम बाहर जाते हैं और रोड्स को देखते हैं और देखते हैं कि भाई रोड्स की जो हालत है ना, बहुत ख़राब है। कहीं इतने गड्ढे हैं और कहीं इतनी खुदाई हुई हुई है, और हम अब कहाँ इस बात की शिकायत करें कि भाई ये रोड का क्या बुरा हाल है, क्योंकि हम कैसे अपना व्हीकल लेके जाएं। या इवन जो रोड्स पर चल रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ही परेशानी का सबब बन जाता है जब इन रोड्स की जो सड़कों की हालत है वो इतनी ख़राब होती है, और फिर हम ये सोचते हैं कि अब शिकायत लेकर कहाँ जाया जाए। तो चलिए इसी बारे में देते हैं आपको एक इम्पॉर्टेंट खबर। पीडब्ल्यूडी ने सड़कों के लिए क्यूआर कोड पहल की शुरुआत करने की घोषणा की है। अब क्यूआर कोड एक नया इनिशिएटिव पीडब्ल्यूडी द्वारा लाया जाएगा, जिससे कि आपकी सड़क के बारे में, जी हाँ, आपकी सड़क के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और इस पहल का नाम रखा गया है नो योर रोड। जी हाँ, अपनी सड़कों की जानकारी अपने पास रखिए। ये पहल की जो है शुरुआत सड़कों की शिकायत के लिए पीडब्ल्यूडी के द्वारा की जा रही है। और अब इसमें अगर इस पहल की बात करें तो इसमें जो भी नई सड़कें बनने वाली हैं उन पर ये क्यूआर कोड लगाए जाएंगे, और इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है उसमें करीब 100 जगहों पर इसे लागू किया जाएगा पहले। अब इसमें क्या होगा, इसके तहत सड़क पर लगे जो क्यूआर कोड है ना, उसे आप अपनी सड़क की जानकारी के बारे में जान सकेंगे, ख़राब हालत होने पर उसकी शिकायत कर सकेंगे, और इस पर लिखा जाएगा नो योर रोड, यानी अपनी सड़क के बारे में जानिए। हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम देख तो लेते हैं कि सड़क की हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं या कहीं बहुत अननेसेसरी बहुत खुदाई की हुई है, लेकिन अब उसकी शिकायत जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट तक कैसे पहुँचाई जाए। तो अब इसी परेशानी से आप सभी को निजात देने के लिए सड़क बनने की हिस्ट्री जानने और उसकी जो मेंटेनेंस रिकॉर्ड है ना, इसकी सुविधा आज तक अभी तक किसी के पास नहीं थी, लेकिन अब पीडब्ल्यूडी ने एक पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल में आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और उसके अंतर्गत अपनी जो भी शिकायतें हैं ना, वो अपनी शिकायतें जो हैं जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उस तक पहुँचा पाएंगे। नो योर रोड पहल के तहत शिकायत सुलझाने के लिए अब ये बहुत ज़रूरी बात है कि इस जो इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है ना, उसमें शिकायत सुलझाने के लिए भी एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी बनाया जाएगा जो कि उस क्यूआर कोड से जुड़ा होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ शिकायत दे दी और उसके बाद उस पर क्या कार्रवाई की गई, क्या उसे सुलझा

सकता है और उसके साथ उस पे क्या कार्रवाई की गई है, इसका भी स्टेटस आप बिल्कुल अपने अपडेट्स जो हैं वो उससे प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे कि हमने कहा कि शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट में 100 जगहों पर इसे शुरू किया जाएगा और उसके बाद दूसरी जगहों को भी कवर किया जाएगा।

भैया अब वक्त है आपसे इजाजत देने का, जाना इसलिए क्योंकि एक बार आपसे फिर से मिलने के लिए आना है, लेकिन अगला कार्यक्रम से आपको जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि अगला कार्यक्रम जो है वो है मैसेज मसाला मिक्स। प्रणव लेकर आएंगे और रहेंगे आपके साथ, आपके मस्ती भरे मैसेजेस जो है पढ़ेंगे। दीपांशी को दीजिए इजाजत, मैं फिर मिलूंगी यहीं पर किसी गुनगुनाते कार्यक्रम में, आपसे फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड। और उससे पहले अभी जो वीकेंड का एक और दिन बचा है, और आज भी खूब एंजॉय कीजिए, खूब मस्ती कीजिए एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: रोजगार मेले में आज 51,000 से भी अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। श्री गोयल ने कहा कि 33,600 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन वाली भारत औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घनमीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मौसम विभाग ने केरलम में बुधवार तक अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज दक्षिण पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपकी वाणी आकाशवाणी। नमस्कार दोस्तों, शनिवार की शानदार शाम में एक बार स्वागत है आपका और शाम की इस खूबसूरत मुलाकात में भी स्वागत है आपका एफएम रेनबो 102.6 पर। और शुरू हो चुका है आपका फेवरेट शो जिसका नाम है मैसेज मसाला मिक्स। दोस्तों, कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी कितनी अजीब होती है ना, क्योंकि कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें हम बार बार पढ़ना चाहते हैं और कुछ पन्ने ऐसे जिन्हें हम जल्दी से बस पलट देना चाहते हैं, और कुछ किरदार आते हैं कहानी बदल देते हैं और कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन उनका लिखा हुआ हिस्सा वहीं रह जाता है। कहीं हंसी की स्याही होती है और कहीं इंतजार की होती है, कहीं सपनों के निशान होते हैं तो कहीं अधूरे सेंटेंसेस होते हैं जो हम बोल नहीं पाए। और मजे की बात यह है दोस्तों कि हम सब अपनी अपनी कहानी के राइटर भी हैं, लेखक भी हैं और किरदार भी हैं और कभी कभी पाठक भी बन जाते हैं। तो आज की शाम जरा अपनी कहानी के पास बैठिए, क्योंकि गाने के बाद मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो शायद आपको अपने बारे में थोड़ा और सोचने पर मजबूर कर दे। फिलहाल क्या करना है, फिलहाल अपना मोबाइल उठा लीजिए, अपने हाथ में ले लीजिए और नंबर तो आपको पता ही है 9868107070। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर 9868107070, इसे सेव कर लीजिए। मैसेज के थ्रू बात करते हैं, मैं हूं प्रणव, सुनते रहिए। फिलहाल गाना आज का पहला शुरू करते हैं मैसेज मसाला मिक्स का, ये रहा आपके लिए।

एक बार फिर से स्वागत है आपका मैसेज मसाला मिक्स में। मैं हूं प्रणव और ये है रेनबो 102.6। दोस्तों, हमेशा की तरह प्यारे लिसनर्स, सारे लिसनर्स, जिंदा दिल लिसनर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि हमारे साथ इस समय हैं सरफराज आलम। मैसेज के थ्रू उन्होंने अपनी अटेंडेंस लगा दी है। अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और प्रेमचंद प्रेमी जो हैं दिल से कवि, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आज आने वाला है बहुत मज़ा, क्योंकि गाने से पहले मैंने कहा था कि आज हम सब अपनी अपनी कहानी के साथ थोड़ा बैठेंगे, थोड़ा समय बिताएंगे। तो आज का मैसेज मसाला मिक्स का एक सवाल है आपसे कि अगर आपकी जिंदगी एक किताब होती तो उसका नाम क्या होता। हाँ, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, लेकिन आपको सोचने पर मजबूर तो करेगा। सिंपल ये है कि अगर आपकी जिंदगी एक किताब होती तो उसका नाम क्या होता। ज़रा सोचिए कि क्या उसका नाम होता, गिरकर फिर उठने की कहानी, या फिर थोड़ी उलझन और बहुत सारे सपने, या फिर शायद कहानी अभी बाकी है। आप टाइटल बताइए, और अगर चाहें तो उसका एक छोटा सा सब टाइटल भी जोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, आपको ये भी बताना है कि एक टाइटल आपने अपनी कहानी को क्यों दिया। तो आज देखते हैं कि हमारे लिसनर्स की जिंदगियां किस नाम से लिखी जाती हैं।

0: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। मोहित चौहान की आवाज में जो भी हो सो, हाँ जो भी हो सो, आपको कहीं नहीं जाना है, यहीं रहना है, क्योंकि मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आऊँगा और करेंगे ढेर सारी बातें। और एक बार जाते जाते आज का टॉपिक दोहरा देता हूँ कि आपकी ज़िंदगी अगर एक खुली किताब होती तो उसका टाइटल क्या होता। सोचिए, भेजिए, देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी क्या कहती है। लौटता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए। मैं हूँ प्रणव, रेनबो 102.6 पर।
1: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
2: पता का चाय गजब का स्वाद।
3: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: कोयल सी तेरी बोली, तेरी छी नजर में है जादू।
6: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
5: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हो, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
6: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
7: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
8: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

बड़े शायराना अंदाज में एक मैसेज आया है सरफराज आलम का। लिखते हैं कि जिंदगी की किताब का हर पन्ना कुछ हंसता है, कुछ रोता है, कुछ लम्हों को दिल पढ़ता रहता, कुछ को वक्त खुद ढोता है। मैं पढ़ता हूँ वो पन्ने जिनमें मेहनत अपना रंग दिखाती है, ठोकर खाकर गिरने वाला फिर उठकर मंजिल पाती है। मैं पलट देता हूँ वो किस्से जहाँ नफरत घर कर जाती है, जहाँ मतलब रिश्तों से ऊंचा और इंसानियत मर जाती है। जिंदगी तो बहता दरिया है, रुकना इसका काम नहीं, जो सीख लिया हर मौसम से उसका कोई अंजाम नहीं। भाई आपने कविता तो खूबसूरत लिखी है और जिंदगी की किताब से उसकी शुरुआत की, लेकिन इस किताब का नाम भी बताते जाइए। अगला मैसेज हमारे पास आया है सरिता विहार से, अनिल शर्मा का। लिखते हैं कि जिंदगी मेरी अगर किताब होती तो टाइटल अनजान की यादें, और कारण उन्होंने नीचे लिखा हुआ है, जिसने मुझे काव्य लेखन में प्रेरित किया था उसका हूँ आभारी, कविता लिखने के गुण तरीका सिखाया था उसका है एहसान, और शौक कोरोना काल में सोशल मीडिया रेडियो एंकर ने काव्य लेखन में जगाया था, जिसने काव्य लेखन की शिक्षा का दान दिया और आज कविता शेर शायरी लिखने लगा, शेर श्रेय एंकर को देता हूँ, शुक्रगुजार। अनिल शर्मा लिखते हैं बहुत बहुत बहुत ही खूब भाई, प्रेरणा आपको कहीं से भी मिले और अगर प्रेरणा सकारात्मक दिशा में जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो वो प्रेरणा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और आपको प्रेरणा ऐसी मिली है कि आपने क्रिएटिविटी स्टार्ट कर दी है, तो इसको कभी मत छोड़िए, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी आपको पता नहीं किस किस को प्रेरणा दे जाए। नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से लिखते हैं कि गुड इवनिंग, और अगर मेरी ज़िंदगी एक किताब होती तो उसका टाइटल होता खुली किताब, क्योंकि मुझे हर कोई जब भी चाहे पढ़ सकता है, जो मैं दिखता हूँ वैसा ही हूँ, कोई छुपा हुआ नहीं। बहुत खूब, अगर क्योंकि शायरों ने भी कहा है कि हर चेहरे को जब भी देखो तो ध्यान से देखो, क्योंकि हर चेहरे के पीछे छिपे हैं हज़ारों चेहरे। बिल्कुल सही कहा कि अगर आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, अगर आप सबके सामने वैसे ही रहते हैं, कोई बनावटीपन नहीं है, तो इससे अच्छी बात क्यों नहीं, कुछ भी नहीं हो सकती। आपके दोस्त, आपके चाहने वाले, आपके करीबी जब आपसे अपने दिल की बात कहते हैं और आप भी दिल से उसे सुनकर सही सुझाव देते हैं, तो बस इससे ज़्यादा मोमेंट ऑफ ट्रुथ कुछ भी नहीं हो सकता।

एक बार फिर से स्वागत है आपका मैसेज मसाला मिक्स में, और मैं हूं प्रणव रेनबो 102.6 पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारी जिंदगी, आपकी जिंदगी अगर एक किताब होती तो उस किताब का नाम क्या होता, उस किताब का टाइटल क्या होता। बड़े ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प आंसर्स आपकी तरफ से आ रहे हैं। मोहम्मद सरफराज आलम जोकीहाट दर्शना बाजार अररिया बिहार से उन्होंने लिखा है कि इनकी किताब का शीर्षक होता वक्त का मुसाफिर, और सबटाइटल होता कुछ लोग मिले कुछ बिछड़ गए और मैं खुद को तलाशता रहा। लगता है कि आप अपनी किताब का टाइटल बार बार बदल रहे हैं, अभी डिसाइड हुआ नहीं है। वैसे अगर आपने डिसाइड कर भी लिया है तो बड़ा लंबा टॉप आपने टाइटल रखा है। याद रहे लोगों को कुछ ऐसा भी रहना चाहिए। वैसे आपकी किताब का टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिटेल्ड लग रहा है, बहुत ही इमोशंस छुपे हुए हैं इस टाइटल में, और आई होप कि आपकी कहानी भी इतनी ही दिलचस्प और इमोशनल होगी, क्योंकि इमोशंस हमारे अंदर का इंसान जगा देते हैं। अगला मैसेज हमारे पास आया है, नमस्कार प्रणव जी, काश जिंदगी भी एक किताब होती और ये उम्र अपनी बेहिसाब होती। वाह क्या बात है, जो भी चाहते वो पन्ना पलट देते हम, अपनी जिंदगी बस अपने हाथ होती। भला यूं ही ख्वाब क्यों देखता कोई, यूं ही सारी कायनात अपने साथ होती। गमों का पन्ना ही फाड़ देते किताब से हर वक्त खुशियों की। ये लिखते लिखते मैसेज कैसे बदले जा रहे हैं। बरसात होती और हम जुदाई का शब्द ही मिटा देते, हर वक्त अपनों से मुलाकात होती। ये हैं हमारे नियमित श्रोतागण, अनिल मोहन, ऊषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। बहुत खूब। और अगला मैसेज हमारे पास है सोनू का, बिजनौर से। लिखते हैं कि अगर मेरी जिंदगी एक किताब होती तो मैं अपनी किताब का नाम सत्यवचन रखता। सत्यवचन इसलिए कि आपने किसी से जुबान दे दी तो आप उससे मुकर नहीं सकते और पीछे भी नहीं हटना चाहिए, वरना आप उस सत्य वचन के लायक नहीं हो। भाई लगता है आपकी बातों से कि आप तो बिल्कुल हैं इस टाइटल के लायक। तो सत्य वचन अगर आपकी किताब है तो बहुत खूब, क्योंकि अगर आप सच पर टिके रह सकते हैं कठिन से कठिन परिस्थितियों में तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। अगला मैसेज है मीना फ्रॉम खड़गांव मध्य प्रदेश से। आज की प्लेलिस्ट की शुरुआत बहुत अच्छी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरी लाइफ एक बुक है तो उसका यही टाइटल होता, द रोलर कोस्टर लाइफ। क्योंकि लाइफ में अब तक इतना थ्रिल और सस्पेंस आ गया है कि लाइफ एडवेंचरस लगने लगी। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने कि लाइफ में आप इस रोलर कोस्टर राइड का मज़ा लेते चलिए, क्योंकि ऐसी राइड्स पर जब हम होते हैं तो अपने सारे दुख परेशानियां भुलाकर बस उस राइड को एंजॉय करते हैं। तो अगर आपकी लाइफ ऐसी हो गई है, आपकी लाइफ में रोमांच है, सस्पेंस है, थ्रिल है, तो उसका मज़ा लीजिए और अपनी कहानी यूं ही लिखते चले जाइए।

मैसेज मसाला मिक्स में ऐसे ही ज़बरदस्त म्यूजिकल ट्रैक्स का सिलसिला आपके लिए जारी रहेगा और साथ ही चलती रहेंगी हमारी इंटरेस्टिंग बातें, क्योंकि आज का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ को नाम दे रहे हैं और वो नाम सुनने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ प्रणव, रेनबो 102.6 पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया।

0: मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर मैं हूं प्रणव, आपके साथ शो चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, क्योंकि यहां पर मसालेदार मैसेजेस आ रहे हैं आपके, बड़े थॉटफुल मैसेज आ रहे हैं और उनको पढ़ने में उतना ही मज़ा भी आ रहा है और आपकी ज़िंदगी के टाइटल सब तक पहुंच रहे हैं, सारे लिसनर्स तक पहुंच रहे हैं। अगला मैसेज है अंगद यादव आजमगढ़ से, लिखते हैं यूपी से कि अगर ज़िंदगी एक किताब होती तो उसका नाम होता यात्री अनंत के सफ़र का। बहुत ही खूबसूरत टाइटल है, क्योंकि हम सब अपनी ज़िंदगी में एक यात्री ही हैं और हमारा सफ़र अनंत तक रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ में जो लर्निंग्स हैं, जो सीखना है, वो हमेशा जारी रहना चाहिए और अनंत तक अगर आपका एटीट्यूड यही रहेगा तो आपकी लाइफ बहुत आसान होती चली जाएगी। अगला मैसेज संजय का है और संजय लिख रहे हैं कि अगर जीवन एक खुली किताब होती तो मेरा टाइटल होता संघर्ष। जीवन में आज तक संघर्ष है और एक पल भी चैन में खाली घर भरने में उम्र लग गई है, लेकिन अब भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ खालीपन है। ये अगर खालीपन आपकी ज़िंदगी में है तो इस खालीपन को भरने के लिए आप वो कीजिए जो करना आपको अच्छा लगता है ना, क्योंकि ज़िंदगी में आपको आजकल तो करने डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हैं सोशल मीडिया की वजह से, या कह लीजिए कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डिजिटल आपकी लाइफ है, डिजिटल डिटॉक्स करने लगे हैं लोग, लेकिन ऐसे में भी अगर आपको लगता है कि खालीपन बहुत है तो उसे भरने के लिए कुछ क्रिएटिव उठा लीजिए, कुछ डेवलप कीजिए अपने अंदर क्रिएटिविटी और उसी को परसू करते जाइए, क्योंकि क्रिएटिविटी हमें एक अच्छा इंसान, एक बेहतर इंसान बनाती है। अगला मैसेज है कुरेश रिजवान आफिया रिहान जहांगीर पूरी दिल्ली से, लिखते हैं कि साहब हम मिडिल क्लास के लिए तो ये किताब होती है और दुख तो अपना साथी है, सुख तो आती है और जाती है। अरे भाई, इतना निराश होने की भी ज़रूरत नहीं है रिजवान जी, क्योंकि ज़िंदगी में हम अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी ज़िंदगी जिए तो हम छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढ सकते हैं, और क्लास खुशियाँ कभी भी क्लास नहीं देखती, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, ये सब नहीं देखती। खुशियों के लिए आपके अपने, आपके चाहते आपके पास होना चाहिए, उनके साथ समय गुजार पाएँ आप, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। उनका ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुश रखिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला मैसेज हमारे पास है, कहने को तो बात बहुत हैं, यादों के हालात बहुत हैं, इंसानों की बात ना करना पत्थर में जज्बात बहुत हैं, कोई किसी का हाल ना पूछे राह में चलते साथ बहुत हैं, मन का सुखियों दूर हुआ रे लालच और जुल्मात बहुत हैं, बहुत रोलिए अब जो प्रेमी गम की लंबी रात बहुत हैं। ये मैसेज है प्रेमचंद प्रेमी का जैत्रा धामपुर से, और लिखते हैं साथ में कि आज का टॉपिक बहुत सारगर्भित है। दोस्त, मैंने जब सन 2011 में अपनी पहली पुस्तक लिखी थी तो ये पुस्तक ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, जो आज का हमारा टाइटल है। हम तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बात करते हैं कि अगर किताब होती तो उसका टाइटल क्या होता, ये ऑलरेडी लिख चुके हैं संवेदना के स्वर, और यही मेरे जीवन की खट्टी मीठी यादों का पिटारा एवं सपाट की कभी ढलान, कभी ऊंचाई और कभी कांटों भरी नन्ही सी पगडंडी पर चली हुई मेरी जीवन यात्रा है। कभी आप जैसे महान फनकार से मेरी मुलाकात हुई तो मैं अपनी यह बुक आपको अपने हाथों से भेंट करूंगा। अरे, मैं ज़रूर महान फनकार कहकर मुझे छोटा ना खींचिए, लेकिन हाँ, आपकी बुक मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि हर किताब, हर कहानी कुछ कहती है।

ये जो गाने आपके लिए चुनकर लाया हूं मैं, जरा ये भी बताते जाइए कि ये सुनने में मजा आ रहा है या नहीं। ये मैसेज मसाला मिक्स को और भी शानदार बनाने के लिए होते हैं, क्योंकि आपके मैसेजेस और साथ में म्यूजिक का तड़का, बस अलग ही मजा, अलग ही माहौल सेट हो जाता है। मैं हूं प्रणव, आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 और शो चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स। और आज का टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपकी जिंदगी एक किताब होती तो उस किताब का टाइटल, उस किताब का नाम क्या होता। अगला मैसेज हमारे पास आया है, मेरी जिंदगी एक खुली किताब होती तो उसका शीर्षक होता मैंने जीना सीख लिया है, क्योंकि मैं चल फिर नहीं सकता, बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद मैं खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा हूँ। रंजीत कुमार मंडल सिकटी अररिया बिहार से लिखते हैं। रंजीत, आपका यह मैसेज सारे लिसनर्स को एक नई ऊर्जा से भर देता है, क्योंकि आप चल फिर अगर नहीं भी सकते कि लेकिन अपनी कहानी आप खुद लिख रहे हैं, और आपकी कहानी आपको ही नहीं हर सुनने वाले को, हर पढ़ने वाले को इंस्पायर करेगी, ऐसा मुझे लगता है। और आप अपनी कहानी यूं ही लिखते चले जाइए ऐसे ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। अगला मैसेज, हेलो सर, आई एम भुवनेश फ्रॉम अशोक विहार दिल्ली। ये लिखते हैं कि आई वुड लाइक टू से दैट टाइटल ऑफ द बुक ऑफ माई लाइफ शुड बी लाइट विद इन डार्कनेस, बिकॉज आई एम अ ब्लाइंड पर्सन बट स्टिल आई एंजॉय माई लाइफ फुली एंड आई वॉन्ट अदर्स टू गेट इंस्पायर्ड बाई माई स्टोरी। तो भुवनेश, आपका मैसेज सभी को इंस्पायर करता है, क्योंकि जो जिंदगी, जो चीज़ें आप देख सकते हैं, आप अपनी बंद आँखों से भी वो सारे सपने देख सकते हैं, जिंदगी को महसूस कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप कम डिस्ट्रैक्ट होकर लाइफ को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं, और ये महसूस करने के बाद आप जो अपनी कहानी लिखेंगे उसमें रियल फीलिंग्स होंगी और वो सभी को इंस्पायर करेंगी। मैसेज मसाला मिक्स में आपको प्यार भरा नमस्कार, आदाब अर्ज हो। ये लिखते हैं गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली। ओके, खुदा करे कि मैं एक किताब होता, उसके नरम हाथों में होता, मेरी किताब का टाइटल उसका चेहरा होता। वाह, क्या शायराना अंदाज में आपने अपनी बात कही है। गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो मैसेज मसाला मिक्स। और अगला मैसेज है ये हमारे पास, नीलम स्वाति किशन वजनानी और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से लिखते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी किताब होती तो हम उसका नाम सफ़र रखते हैं, क्योंकि ज़िंदगी एक सफ़र है जो हमेशा चलता रहता है, कभी ख़त्म नहीं हो जाता, और ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है लेकिन सफ़र जारी रहता है। ओके, बहुत ही थॉटफुल मैसेज है, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ज़िंदगी का सफ़र यूं ही चलता रहता है, और हमारे चले जाने के बाद भी हमारा सफ़र, हमारे विचारों का सफ़र जारी रहता है, हमसे जुड़ी हुई यादों का सफ़र जारी रहता है। तो अपनी यादें, अपनी कहानी कुछ ऐसे लिखिए कि जो हमेशा पीढ़ियों तक लोगों को इंस्पायर करती रहे।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

सुरों की शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराधना।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।

रेनबो 102.6 पर एक बार फिर से स्वागत है आपका और मैं हूँ प्रणव। शो चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स और बात कर रहे हैं आपकी जिंदगी के बुक की टाइटल की। अगला मैसेज है शैलजा का, नीमराना से लिखते हैं कि नेम ऑफ माय बुक इज खुशियां बिकॉज आई लव टू बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी टू। बहुत ही सिंपल शॉर्ट में आपने अपनी बात कह दी लेकिन बहुत ही खूबसूरती के साथ। आप खुश रहिए, खुश रखिए, यही जिंदगी का फलसफा होना चाहिए। अगला मैसेज है नूरबी खान का, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से लिखती हैं कि प्रोग्राम ऑसम है, आई लाइक योर टॉपिक और मेरी जिंदगी में किसी भी किताब का टाइटल होता एहसास और अल्फाज। फॉर रीजन, लोगों को अपने अल्फाज की अहमियत करनी चाहिए और दूसरों के एहसास को समझना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने, क्योंकि हम अगर अपने शब्दों पर, अपने अल्फाज पर गौर फरमाते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि हमारे अल्फाज किसी को दुख ना पहुँचाएँ। अगला मैसेज है नवलू वरक का फ्रॉम मलपण गोवा से, और अगर मेरी ज़िंदगी किताब होती तो मैं नाम रखता ज़िंदगी एक जुआ। सभी प्लेलिस्ट बहुत अच्छी हैं। गोवा में आज हमारे यहाँ बारिश होने की संभावना है, काश बारिश हो जाए। बिल्कुल, बारिश हो जाए और आपका मूड ऐसे ही खुशनुमा बना रहे और ऐसे ही रेनबो पर आप मज़ेदार गाने सुनते रहें। अगला मैसेज है मेरी ज़िंदगी एक किताब है और उसका शीर्षक है प्यार का राही। क्योंकि दोस्तों से नफरत पलती है और प्यार से प्यार पनपता है। खुश है वो इंसान जहाँ यहाँ जो प्यार का प्यार की माला जपता है। राइमिंग अंदाज में आपने अपनी बात कही है। गंज डुंडवाड़ा से शमसुल कमर राही ने बहुत ही खूबसूरत आज मैसेज आए हैं और सब ने बड़े थॉटफुल मैसेज किए हैं। अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा है, अपनी कहानी के बारे में सोचा है और मैसेजेस अभी भी लगातार आते जा रहे हैं। गुड्डू धाकड़ मध्य प्रदेश उज्जैन जिले के बेड़वान से गांव से लिखते हैं कि मेरे जीवन पर कोई किताब बनती तो उसका नाम होता जीवन के रंग अपनों के संग। बहुत खूब, देखिए आपके सारे मैसेजेस में इतना अपनापन है और आपने बहुत ही संजीदगी के साथ इस पर सोचा है कि आपकी ज़िंदगी किस दिशा में आगे बढ़ रही है, किस डायरेक्शन में बढ़ रही है और अपनी ज़िंदगी की किताब को एक टाइटल देने की कोशिश की है। जो मैसेजेस मैं नहीं पढ़ पाया, मैं पढ़ूंगा ज़रूर लेकिन शो में शामिल तो शायद नहीं कर सकता क्योंकि समय की थोड़ी कमी है, लेकिन गानों की कमी हमारे पास है नहीं। फिलहाल इस गाने के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर मिलूंगा ऐसे ही एक एंटरटेनिंग शो में। बने रहिए, सुनते रहिए रेनबो 102.6।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। नवनियुक्त 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इसी कार्यक्रम में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
1: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज है, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रिट्रेन करें, रिस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
0: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ती कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानो भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री

शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिनों के अंदर विस्तृत कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने आरोपियों की गिरफ्तारी, जांच, पीड़िता की सुरक्षा, परामर्श और पुनर्वास उपायों सहित तत्काल सख्त और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने केरलम में बुधवार तक अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को 27 मई तक केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटवर्ती इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Well, that was Arya Starr, a Nigerian singer and songwriter, and that was one of the hits in 2026. But she also gained international recognition in 2022 with the release of her song Rush. So let's take a break. Let's bring back more music after this break.
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं।

0: विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

सुरों की शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराध्य।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदकर।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

रेनबो 102.6, मैं हूं प्रणव। अगले एक घंटे तक हम करेंगे म्यूजिक मस्ती, बैक टू बैक जबरदस्त म्यूजिकल ट्रैक्स सिर्फ आपके लिए।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूज से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप हैं मेरे यानी प्रणव के साथ रेनबो 102.6 पर। शो चल रहा है म्यूजिक मस्ती, बने रहिए, थिरकते रहिए, लाइफ एंजॉय करते रहिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

सुरों की शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराध्य।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे। कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने। हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।

0: लाइफ में मस्ती जारी रहनी चाहिए। मैं हूं प्रणव, आपके साथ रेनबो 102.6 पर शो चल रहा है म्यूजिक मस्ती।
1: ननद चुटकी लेवे ससुराल गेंदा
0: फूल। आज का आखिरी ट्रैक एंड टुडे इज म्यूजिक मस्ती। हंसते रहिए, हंसाते रहिए और जीवन को मस्त बनाते रहिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही एंटरटेनिंग म्यूजिकल शो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।

एहसास आपके, अल्फाज हमारे, नगमे सदाबहार। दिल से दिल तक का सफर तय कर रहे हैं आप एफएम रेनबो के साथ।

सफर दिल से दिल तक का है और दिल को भला कौन जान पाया है पूरी तरह। यादों के न जाने कितने पिटारे बंद किए बैठे हैं, तो ये पल आपका है। ओढ़ लीजिए यादों की चादर, आंखें बंद कर चल पड़िए हमारे साथ इस संगीतमय सफर में। FM रेनबो, दिल से दिल तक। मैं नविता हूँ आपके साथ इस दिल से दिल तक के सफर में।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आपके साथ दिल से दिल तक, मैं नविता हूँ आपके साथ, आपकी याद आती रहे। एहसास आपके, अल्फाज हमारे, नगमे सदाबहार।

0: एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
1: सुरों की शाम होगी यादगार, आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराधना।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे। कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

तेरी यादों का दिया दिल में जलाए बैठे हैं, रात की तन्हाइयों को भी सजाए बैठे हैं। लोग कहते हैं भुला दो उसे वक्त के साथ, हम तो हर सांस में उसका नाम बसाए बैठे हैं। मोहम्मद सरफराज आलम, अररिया बिहार से।

0: एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वहाँ जल्द हाजिर होते हैं।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: आए हाय,
1: तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

एफएम रेनबो पर दिल से दिल तक का सफर जारी है। मैं ले रही हूँ एक ब्रेक, एक घंटे बाद फिर मिलूंगी यहीं आपसे रंगे महफिल लेकर।

0: क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और ज्यादा प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि यह भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल क्यूआन काउंटी के लियो शेनियो कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की है। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एजान खलमा खानों से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेलकम बैक, यू आर ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ एंड द टाइम इज 2 o'clock, इट्स 10:05 एंड 47 seconds। वेलकम टू द वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम दैट इज इन द ग्रूव विद मी सुहासिनी। सो लेट्स बिगिन दिस प्रोग्राम विद अ क्लासिक एंड दैट इज नन अदर दैन द किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन सिंगिंग बिली जीन।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: save the world.
1: सुरों की शाम होगी यादगार, आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम अरात।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे। कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने। हम आप और विदुषी शुभा मुदगल

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन

0: की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांचकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। ये विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जाँच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एक्तुकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एहतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। मैं मोहब्बत की बादशाहत हूँ, मुझ पे चलता नहीं है राज मेरा।

0: एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

काश वो रास्ते में मिल जाए, काश वो रास्ते में मिल जाए, मुझको मुंह फेर कर गुजरना है। कहना भी है और छुपाना भी, जताना भी है और बताना भी नहीं। ये मोहब्बत है, इसका रंग सबसे जुदा है।

0: 90 वर्षों की वो मधुर गूंज, अनगिनत आवाजें, अनगिनत एहसास, संगीत, संस्कृति और यादों से सजा आकाशवाणी का सुनहरा सफर,
1: जहां हर कहानी में छुपा है एक दौर, हर आवाज में बसता है अपनापन,
0: जिसमें मिलिए आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों से और जानिए रेडियो जगत के उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिन्होंने अपनी आवाज और प्रतिभा से पीढ़ियों के दिलों को जोड़ा।
1: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग।

सुरों की शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम अरात।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदकर।

जी हाँ, आप एफएम रेनबो के साथ दिल से दिल तक। मैं नविता हूँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफर में। मैं चुप रहता हूँ इतना बोलकर भी, तो चुप रहकर भी कितना बोलता है।

अगर आप एक बार किसी से मोहब्बत कर लें तो उसे कभी नफरत नहीं कर सकते। सच ये भी है कि खुशियों को नजर लगती है, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। मोहब्बत का सफर भी कई मोड़ों से गुजरता है, कई रंग उड़ता है।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: चूड़ियां ले लो, चूड़ियां, रंग बिरंगी चूड़ियां।
6: जी हाँ, आप हैं FM रेनबो के साथ दिल से दिल तक। मैं ना बताऊँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफर में।
5: चूड़ियां,
7: ए चूड़ी वाले, चूड़ी वाले, चूड़ियां दिखाओ ना, चूड़ियां दिखाओ।
8: इस खूबसूरत हाथ में तो चूड़ियां कयामत ठहरेंगी।
7: ये क्या कर रहे हैं?
8: चूड़ियां पहना रहा हूं बीबी।
7: हमको और चूड़ियां।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।

0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग DOSEL ने नई दिल्ली में साकुरा साइंस प्रोग्राम 2026 में भाग लेने वाले छात्रों के एक दल को रवाना किया। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारत के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी स्कूलों के 56 छात्र, जिनमें 24 लड़के और 32 लड़कियां शामिल हैं, 4 पर्यवेक्षकों के साथ इस महीने की 30 तारीख तक जापान यात्रा पर रहेंगे। इस कार्यक्रम में घाना, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिभागियों के साथ हिस्सा ले रहा है। मंत्रालय ने बताया कि ये सभी छात्र सरकार की राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करता है। भारत अप्रैल 2016 से इस कार्यक्रम में भाग ले रहा है। चीन के शांसकी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। ये विस्फोट क्यूवान काउंटी की लियूशेनयू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार तथा दुर्घटना के कारणों की जाँच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी चिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। भारत रूस अंतर सरकारी सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग आयोग के अंतर्गत 5वें उप कार्य समूह भूमि की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क महानिदेशालय ADGPI ने कहा कि ये बैठक भारतीय सेना और रूसी थल सेना के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। लखनऊ में IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 196 रन बनाए। 197 रन के लक्ष्य को पंजाब किंग्स ने 18वें ओवर में हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपकी वाणी आकाशवाणी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। 12:05 और 50 सेकंड समय हो चला है कार्यक्रम जीरो आर शो का।

0: के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। 12:27 और 16 सेकंड कार्यक्रम जीरो आर शो।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

सुरों की शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराधना।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित।
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे। कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल 12:00।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को

0: साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
1: इस दौरान भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग DOSEL ने नई दिल्ली में साकुर साइंस प्रोग्राम 2026 में भाग लेने वाले छात्रों के एक दल को रवाना किया। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारत के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 56 छात्र, जिनमें 24 लड़के और 32 लड़कियां शामिल हैं, 4 पर्यवेक्षकों के साथ इस महीने की 30 तारीख तक जापान यात्रा पर रहेंगे। भारत इस कार्यक्रम में घाना, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिभागियों के साथ हिस्सा ले रहा है। मंत्रालय ने बताया कि ये सभी छात्र सरकार की राष्ट्रीय साधन शह मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करता हैं। भारत अप्रैल 2016 से इस कार्यक्रम में भाग ले रहा है। चीन के शांशकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। ये विस्फोट क्यूआन काउंटी के लियूशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। रूस ने कहा है कि परमाणु अप्रसार संधि NPT के समीक्षा सम्मेलन में अंतिम दस्तावेज को मंजूरी नहीं मिल सकी, क्योंकि कुछ मुद्दों पर अमेरिका के कड़े रुख के कारण सहमति नहीं बन पाई। रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राजदूत डो होंग वियत के प्रयासों और अन्य जिम्मेदार देशों के समर्थन से कई समझौते किए गए तथा सहमति के करीब एक मसौदा अंतिम दस्तावेज के लिए तैयार किया गया। लखनऊ में IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 196 रन बनाए, जिस लक्ष्य को पंजाब ने 18वें ओवर में हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कोयल सी तेरी बोली कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु
1: आय हाय
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

की शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराधना।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित।
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे। कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने। हम आप और विदुषी शुभा मुदकर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी। भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में आज चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान 7 महिलाओं सहित कुल 24 नाइजीरियाई नागरिकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस अधिकारी के अनुसार यह अभियान खौनी पालवा क्षेत्र में चलाया गया। पुलिस को सूचना मिली

कि कुछ विदेशी नागरिक इस इलाके में कथित रूप से अवैध रूप से रह रहे हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में 13 पुरुष, 7 महिलाएं, 3 नाबालिग लड़के और 1 नाबालिग लड़की शामिल है। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट क्यूवान काउंटी के लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों के जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी चिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। अमेरिका के सांसदों और आवर्जन अधिकारी कार्यकर्ताओं ने ट्रंप प्रशासन की नई ग्रीन कार्ड नीति की आलोचना की है। इस नीति के अंतर्गत ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अपने गृह देश से ही आवेदन करना होगा। डेमोक्रेटिक सांसदों ने इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि वे अमेरिकी नागरिकता और आवर्जन सेवा USCIS के इस निर्णय के खिलाफ हर संभव कदम उठाएंगे और इसे वापस लेने की मांग करेंगे। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह छूट H-1B वीज़ा पर काम कर रहे विदेशी कर्मचारियों पर भी लागू होगी या नहीं। फिलहाल USCIS ने कहा है कि देश के भीतर रह रहे लोगों को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 196 रन बनाए। 197 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब ने 18वें ओवर में जीत हासिल कर ली। पंजाब के लिए श्रेयस अय्यर ने नाबाद 101 रन की शानदार शतकीय पारी खेली, जिस पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अब छुपाने से क्या फायदा? चेहरा तो हमने आपका देख ही लिया, बहुत खूबसूरत हैं आप। वंदना, एक चुटकी सिंदूर से तुम्हारा सारा जीवन हमारा हो गया। ये धर्म की रीत भी अजीब है ना? लोग कहते हैं ब्याह एक चाह है, निभा है, पता नहीं क्या है। भाई हम तो ये गुनाह कर बैठे, हमारी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ रही होंगी, हमारी समझ में भी नहीं आ रही।

बगैर सोचे समझे जीने में बड़ा मजा है। तुम्हारा दिल धक से रह गया होगा कि तुम्हारा पति शराबी निकल गया। नहीं, हम कभी कभी थोड़ी शराब पीते हैं, सिर्फ 3 पैग, उससे ज्यादा कभी नहीं।

0: सर से पांव तक के नीला रंग, जैसे हाँ जैसे गगन।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: कोयल सी तेरी बोली,
3: आय हाय,
2: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: बदल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

सुरों की शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराधना।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदकर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण भी साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें अधिक प्रगति होगी। भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में चलाए गए एक तलाशी अभियान के दौरान 7 महिलाओं सहित कुल 24 नाइजेरियाई नागरिकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये अभियान खोनी पालवा क्षेत्र में चलाया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक इस इलाके में कथित रूप से अवैध रूप से रह रहे हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में 13 पुरुष, 7 महिलाएं, 3 नाबालिग लड़के और 1 नाबालिग लड़की शामिल है। मिजोरम के प्रभावशाली छात्र संगठन म्यूजो जिलराई पावल MZP ने मुख्यमंत्री लाल दुहोमा पर राजनीतिक धोखे और पक्षपात का आरोप लगाते हुए सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी की विवादित पुनर्नियुक्ति को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। सरकार ने 23 अप्रैल को आदेश जारी कर लाल रोहिंगड़ी को पुनर्नियुक्त करने को

मंजूरी दी थी। वे 23 अप्रैल को वाणिज्य और उद्योग तथा भू विज्ञान और खनन विभाग में अतिरिक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो रही थी और 1 मई से उन्हें पुनः सेवा में लिया गया। अमेरिका के सांसदों और आवर्जन अधिकारी कार्यकर्ताओं ने ट्रंप प्रशासन की नई ग्रीन कार्ड नीति की कड़ी आलोचना की है। इस नीति के अंतर्गत ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अपने गृह देश से ही आवेदन करना होगा। डेमोक्रेटिक सांसदों ने इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि वे अमरीकी नागरिकता और आवर्जन सेवा USCIS के इस निर्णय के खिलाफ हर संभव कदम उठाएंगे और इसे वापस लेने की मांग करेंगे। हालांकि अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि ये छूट H-1B वीजा पर काम कर रहे विदेशी कर्मचारियों पर भी लागू होती है या नहीं। फिलहाल USCIS ने कहा है कि देश के भीतर रह रहे लोगों को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। लखनऊ में IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 196 रन बनाए। 197 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स ने 18वें ओवर में जीत हासिल कर ली। पंजाब किंग्स की ओर से श्रेयस अय्यर ने नाबाद शतकीय पारी खेली, उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: रहा है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं, इसके लिए आप अपने सुझाव 24 अप्रैल तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात।

मंजरों की शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराध्य।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदकर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण भी साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी। भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत की अध्यक्षता में 21 और 22 मई को नई दिल्ली में 11वीं वार्षिक ब्रिक्स आतंकवाद रोधी कार्य समूह CTWG की पूर्ण बैठक और उप समूहों की बैठकें आयोजित की गई। ये बैठकें CTWG की स्थापना के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने उद्घाटन दिवस पर मुख्य भाषण दिया। उन्होंने वैश्विक आतंकवाद से निपटने के लिए ब्रिक्स सदस्य देशों के सामूहिक और एकजुट प्रयासों के महत्व पर बल दिया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान 7 महिलाओं सहित कुल 24 नाइजेरियाई नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह अभियान खोनी पलावा क्षेत्र में चलाया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक इस इलाके में कथित रूप से अवैध ढंग से रह रहे हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में 13 पुरुष, 7 महिलाएं, 3 नाबालिग लड़के और 1 नाबालिग लड़की शामिल है। मिजोरम के प्रभावशाली छात्र संगठन म्यूजो जिलराई पावल MZP ने मुख्यमंत्री लाल दुहोमा पर राजनीतिक धोखे और पक्षपात का आरोप लगाते हुए सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी की विवादित पुनर्नियुक्ति को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। सरकार ने 23 अप्रैल को आदेश जारी कर R. लाल रोडिंगी की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी थी। वे 30 अप्रैल को वाणिज्य

और उद्योग तथा भू विज्ञान और खनन विभाग में अतिरिक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो रही थी और 1 मई से उन्हें पुनः सेवा में लाया गया। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट क्यूआन काउंटी के लियू सेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार तथा दुर्घटना के कारणों की जाँच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 196 रन बनाए। 197 रन के लक्ष्य को पंजाब किंग्स ने 18वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: शाम होगी यादगार, आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराधना।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।

यादों की शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराधना।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित।
1: रंग भवन सभागार, आकाशवाणी दिल्ली, 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे। कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने। हम आप और विदुषी शुभा मुदकर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इससे पहले विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमरीका का दृष्टिकोण साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट इनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और ज्यादा प्रगति होगी। भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत की अध्यक्षता में 21 और 22 मई को नई दिल्ली में 11वीं वार्षिक ब्रिक्स आतंकवाद रोधी कार्य समूह CTWG की पूर्ण बैठक और उप समूहों की बैठकें आयोजित की गईं। ये बैठकें CTWG की स्थापना के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। विदेश मंत्रालय में सचिव CB जॉर्ज ने कार्यक्रम का मुख्य भाषण दिया। उन्होंने वैश्विक आतंकवाद से निपटने के लिए ब्रिक्स सदस्य देशों के सामूहिक और एकजुट प्रयासों के महत्व पर भी बल दिया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान 7 महिलाओं सहित कुल 24 नाइजीरिया के नागरिकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस अधिकारी के अनुसार ये अभियान खोनी पलाव क्षेत्र में चलाया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक इस इलाके में अवैध रूप से रह रहे हैं। चीन के शांसक्सकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। यह विस्फोट क्युआन क्वांटी के शियुलियू शेनू में कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 लोगों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जाँच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। बांग्लादेश में कल खसरा और खसरा जैसे लक्षणों से 13 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पुष्टि और संदिग्ध मौतों की कुल संख्या बढ़कर 512 हो गई है। बांग्लादेश के एक प्रमुख समाचार पत्र की रिपोर्ट के मुताबिक खसरे से पुष्टि मौतों की संख्या बढ़कर 86 हो गई है, जबकि संदिग्ध मौतों की संख्या 426 तक पहुँच गई है। लखनऊ में IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 196 रन बनाए। 196 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स ने 18वें ओवर में जीत हासिल की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।